नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रही हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 अगस्त 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टर पंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850

50 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, आपकी सभी शक्तियां आपके भीतर ही है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये था आज का चिंतन।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए जानते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 291। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। सुनिए श्रृंखला का भाग 9। कलाकार है तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। सुबह 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी, आलेख और स्वर है मंजू द्विवेदी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार में सुनिए अभिनेत्री पार्श्व गायिका वैजयंती पंडित पर आधारित कार्यक्रम। आलेख और स्वर है कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए सेहतनामा, बालों की समस्या और देखभाल। इस विषय पर डॉक्टर रचिता धुरत MD और डर्मेटोलॉजिस्ट से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे से सुरीला सफर। पर सुनिए सदाबहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली। 4 बजे पिटारा में सुनेंगे आप सेल्यूलॉइड के सितारे, अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहयोग झरना सोलांकी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7 बजे जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। 8 बजे हवा महल में सुनिए नाटिका जीवन भय, मूल तमिल लेखन है अनी शेट्टी सुब्रवाव का, हिंदी संपादन है M सूरी का, प्रस्तुति पुरुषोत्तम धर्वेकर की। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 बजे सुनिए आपके लिए। रात 10 बजे सुनिए छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

题。他们 reach

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: नमस्कार। अभी तक हमने श्री कालीनाथ मिश्रा जी से कई प्रचलित ताल उसके बारे में जानकारी हासिल की है, उन तालों को सुना है। गाने बजाने में कुछ अप्रचलित ताल भी हैं, तो मिश्रा जी क्या हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे अप्रचलित ताल हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं और गाने के साथ वाद्य के साथ बजाए जाते हैं, सोलो भी बजाए जाते हैं।
2: दास बाबू, आज मैंने सोचा कि क्यों न पंचम सवारी पेश किया जाए।
1: क्या बात है।
2: कुछ ताल ऐसे हैं जो हम गाते बजाते हैं और कुछ ताल ऐसे हैं जो कभी एग्जाम में बैठ गए, जैसे शिखर ताल, लक्ष्मी ताल
1: जी,
2: अष्टमंगल। लेकिन जो झप ताल, रूपक ताल, तीन ताल, एक ताल, 14 मात्रा, धम्मार, ये सब हम मंच पे श्रोताओं के सामने हम प्रस्तुति देते रहे हैं। और पस्तो ताल, जैसे 15 मात्रे का 2 ताल है, एक है गजझंपा ताल।
1: अच्छा।
2: हाँ जी। धा धिन न क तक, धा धिन न क तक, तिन न क तक, ते टे क त ग दी गन। लेकिन इससे हम बातचीत कब करते हैं, कभी एग्जाम हुआ किसी डांसर के साथ या किसी तबला वाले का एग्जाम हुआ। लेकिन ताल हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हम भी आनंद उठाएं, सुनने वाला भी खाली गिनती न गिनता रहे।
1: बिल्कुल।
2: पता लगा गिनने में हम आधा घंटा व्यतीत कर दिए, हम आनंद नहीं उठा पाए। ताल एक ऐसा चीज है कि आपके दिल की धड़कन है, वो जो धड़कता है वो एक रिदम है, आप चलते हैं वो एक ताल है। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं पंचम सवारी।

0: हमारे फारूक भाई ने जो नगमा इसका रचा है, इसकी आने की गति कैसे है? अब वो जो आ रहे हैं धी धीना,
1: क्या बात,
0: उसी का अंदाज है। ये पंचम सवारी है, अब उसी का अंदाज का एक गजंपा ताल। इस सब तालों में आप सोलो बजा सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आनंद कब लेंगे हम? तो गजंपा ताल है, धा अधिन नक तक, धा अधिन नक तक तिन नक तक तेटे कत गदिगी न आ अधिन नक तक। ये गजंपा ताल है। पंचम सवारी सुनिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि बनारस वाले बाएं में घिस्सी बहुत देते हैं,

0: एक एक इसको कहते खुली मुन्नी का बोल। खुली मतलब जो बाएं को हम ज्यादा यूज करते हैं।
1: अच्छा।
0: और बाएं को कम यूज करें उसे मुन्नी का बोल कहते हैं। खुली मुन्नी का बोल, बंद और खुला हुआ।

0: एक बंदी से प्रस्तुत कर रहा हूँ ना धी धी कत धी धी ना धी धी ना ते कृति ना तेरे के रतो ना कत्ता धी धी ना धी धाते चे दीड़ ना ते चे फिर तक तुम तो नागे ती चे धागे दीगी ना नागी ना धित धित चड़ंग धित ता फिर तक धित ता फिर तक दीड़ ना ते चे ता घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था घिंत था धीना। इसको कहते हैं बादर परण।
1: अच्छा,
0: ये खास बनारस अंग का बाज है बादल परन। तो बादल कैसे घिरता है उसी का है
1: जी।

बहुत से कलाकार इस धरती पे, तबला वादक की बात कर रहा हूँ, अनोखे लाल जी, किशन महाराज जी, गुदई महाराज जी, उनके पुत्र पूरन महाराज जी, हमारे गुरु पंडित मदन मिश्रा, पंडित शंभुनाथ मिश्रा, अब्बा जी का बहुत योगदान रहा, अहमद जान

अगवा का स्टाइल अलग था, हबीबुद्दीन खान साहब, निजामुद्दीन खान साहब। अब एक बोल सुना रहा हूँ निजामुद्दीन खान साहब का, धीना धी धी कर धी धीना धी धीना थिक कृतीना तेरी के तो ना कत्ता धी धीना धी कदा भिना गति कृत कदा तक तक तक धिन धातां था कद तक तक धातां था अधातां।

0: ne saatiin ta. Taha, katika, takatiki, ne saatiin ta. Taha, katika, takatiki, ne saatiin ta. Taha. ये था हमारा पंचम सवारी।
1: मिश्रा जी, बहुत खूबसूरत पंचम सवारी आपने बजाई, लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं जानना चाहूंगा
0: जी।
1: क्योंकि आपने यंत्र संगीत के साथ बजाया है, गायकों के साथ बजाया है और नर्तक और नर्तकियों के साथ भी आपने बजाया है
0: जी।
1: फिल्म में भी आपने कुछ बजाए होंगे जरूर, तो उसके बारे में हमें बताएं।
0: दास बाबू, इंस्ट्रूमेंट के जितने भी आर्टिस्ट आज भारत में हैं, मुझ पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही कि मैंने सभी के साथ साथ संगत निभाया, किया भी। रहा फिल्मों का सवाल, तो कथक डांस में जितने भी कलाकार हैं आज भारत में, महाराज जी से लेकर जितने भी हैं, मुझे मौका मिला स्टेज पर। रहा फिल्म का सवाल, तो फिल्मों में मैंने मुझे बजाने की रुचि बहुत कम रही। हाँ, ये है कि हरिप्रसाद चौरसिया जी से मेरा अच्छा ताल्लुक था, तो सिलसिला में लेके चले गए। उसके बाद हमने सूरज पिक्चर में बजाया, उसके बाद हमने विजय पिक्चर में बजाया, फिर एक पिक्चर का नाम मैं भूल रहा हूँ जिसमें मेरा तबला और पखावत दोनों है, ऋतिक रोशन है, उसमें वो दौड़ते हैं, दौड़ने का फाइट सीन था, ऐसा कुछ करके रेला बजाया हूँ। अभी बहुत पॉपुलर पिक्चर रहा देवदास
1: जी,
0: तो माधुरी जी के साथ, उनके साथ मैंने काफ़ी एल्बम बनाया। जैकलिन के साथ भी मैं बजाता हूँ, लेकिन उनको रियाज करवाता हूँ, अब स्टेज पर वो मौका नहीं मिला। हेमा जी का काफ़ी एल्बम बने किया, हम और भवानी शंकर भी थे उसमें। माधुरी जी का गाना बहुत फेमस है देवदास में
1: जी,
0: धाय श्याम, उसमें कोरियोग्राफ हमारे भारत के बहुत बड़े कलाकार बिरजू महाराज जी ने किया है। दूसरी बात, हमारे कुछ म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो अच्छा अभी भी म्यूजिक देते हैं, लेकिन संजय लीला बंसाली का एक खासियत रहा कि वो जब भी फिल्म को यूज करते हैं तो उसमें क्लासिकल बेस रहना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि एक गाना कोई जिसमें माधुरी जी का डांस है, श्रोताओं को सुनाने का कष्ट करें।
2: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई, और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई, गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक।

नमस्कार, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बसंत बहार फिल्म के इस गाने के साथ। भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का

0: अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्यार का बंधन, इस फिल्म से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल रवि का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, ये दिल किसको दूं, इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, कमर जलालाबादी के बोल और संगीत है इकबाल कुरैशी का।

बल खाता वो झूमता, बल खाता वो झूमता, बल खाता हुआ।

0: ये दिल किसको दूं, इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना। इस गाने को गाया है मोहम्मद रफी ने और इनका साथ दे रही थी उषा खन्ना।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे मुलजिम, इस फिल्म से ये गाना। शकील बदायूनी के बोल, रवि का संगीत।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: कृत कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
4: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
3: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
5: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
3: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

नमस्कार, हमेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तीन देवियां फिल्म के इस गाने के साथ, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: Pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot pot p

मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे गोमती के किनारे इस फिल्म से गाना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे 9-2-11 इस फिल्म से गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गाने, पर इस अंतराल के बाद।

है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। कार्यक्रम का अगला गाना डिटेक्टिव फिल्म से मोहम्मद रफी और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, मुकुल रॉय का संगीत।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप

0: साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉयस एन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: गया यारो अब क्या होगा, यारो अब क्या होगा,
1: वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा, खुदा होगा
0: यारो अब

आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे अब क्या होगा। इस फिल्म से ये गाना सावन कुमार के बोल, उषा खन्ना का संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे दूसरा आदमी। इस फिल्म से गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। इसी के साथ आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेन देन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित

0: उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
1: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का ये सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगी। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरल में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
2: उत्थरादम सिर्फ तिरु ओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरल में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार

0: आज झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच आखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
2: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेन देन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में नेत्रदान की बातें होंगी। वैसे तो शरीर के सभी अंग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी आंखें कुछ अधिक विशेष मानी जा सकती है। ये हमें दृष्टि प्रदान करती हैं और दुनिया की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं। अगर दृष्टि नहीं है तो पूरी दुनिया हमारे लिए अंधकारमय हो जाती है। आंखों में दृष्टि होना ईश्वर का दिया हुआ एक अनुपम उपहार है, किंतु सभी लोगों के पास ये उपहार नहीं होता है। कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। कारण कई होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही दृष्टि बाधित होते हैं। कुछ लोगों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या कॉर्निया की खराबी की वजह से दृष्टि चली जाती है। इनमें से अधिकांश खराबियों का इलाज संभव है और ये संभव हो सकता है नेत्रदान के माध्यम से।

कहा जाता है कि नेत्रदान महादान होता है। नेत्रदान का महत्व अनमोल है। ये दान दृष्टिहीन व्यक्तियों को नई उम्मीद और नया जीवन देता है। ये उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अक्सर लोगों के मन में नेत्रदान को लेकर कई तरह के भ्रम होते हैं। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद नेत्रदान करने की प्रक्रिया में केवल 20 से 30 मिनट का समय लगता है। नेत्रदान में पूरी आंख भी नहीं निकाली जाती, बल्कि आंख के सामने का जो पारदर्शी हिस्सा होता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, वही दान किया जाता है। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। जागरूकता की कमी और सामाजिक बाधाओं के कारण नेत्रदान को अभी तक उतना महत्व नहीं मिल पाया है, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सभी नेत्रदान के महत्व को समझें।

नेत्रदान वास्तव में एक दिव्य कार्य है, किसी को प्रकाश का उपहार देकर और उन्हें रंगों से परिपूर्ण संसार देखने का अवसर देने से बढ़कर और क्या नेक कार्य हो सकता है। जो लोग मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, उन्हें अपनी इस इच्छा को घर वालों को बताना होगा, उसके बाद नेत्र बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा। इस तरह नेत्रदान की प्रक्रिया सरल हो जाती है। नेत्रदान केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है। जब हम नेत्रदान का संकल्प लेते हैं, तो यह कई लोगों के लिए आशा की किरण बन जाता है, जो लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नेत्रदान से दृष्टिबाधित लोगों को अंधकार से निकलकर प्रकाशमय दुनिया में कदम रखने की संभावना मिलती है। ये एक ऐसा अनूठा तरीका है जिससे हम एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जो हमारे जीवन काल के बाद भी कायम रहती है। ये परोपकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के इस गाने के साथ। चिन्मय श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी। मिलो जो अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
1: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं लगान फिल्म से, उदित नारायण और आशा भोसले के साथ साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल या रहमान का संगीत।

0: आप सुन रहे थे लगान फिल्म से ये गाना। वैसे लगान फिल्म बॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का हर एक कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग रहा है, खास तौर से लाखा का कैरेक्टर जो बहुत ही चर्चित रहा। इस रोल को निभाया यशपाल शर्मा ने, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग रही है कि जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शकों में एक उत्साह सा आ जाता है कि अब कुछ दमदार होने वाला है। खैर, एक बहुत ही खास बातचीत, एक खास मुलाकात इस शख्सियत के साथ आज शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए सेल्यूलॉयड के सितारे में अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

चित्रलोक कार्यक्रम के में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ओम शांति ओम फिल्म से ये गाना। केके की आवाज में विशाल ददलानी के बोल और संगीत है विशाल शेखर का।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।

जाने तू या जाने ना, इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना बेनी दयाल और साथियों की आवाजों में, अब्बास टायरवाला के बोल, एआर रहमान का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

चित्रलो कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, चांदनी चौक टू चाइना इस फिल्म से। शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाजों में रजत अरोड़ा के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर।

बला की खूबसूरती और सुरीले स्वर की स्वामिनी विजेता पंडित का संबंध कलाकारों के एक ऐसे नामी घराने से है जिसके सदस्यों में शामिल हैं देश के प्रसिद्ध गायक गायिकाएं अभिनेत्रियां और संगीतकार। आपके पिता पंडित प्रताप नारायण शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित मेवाती घराने के मूर्धन्य गायक थे जिनके दो और भाई पंडित मणिराम और पंडित जसराज की गिनती भी शास्त्रीय संगीत के नामचीन कलाकारों में होती है। संगीत पंडित प्रताप नारायण के बच्चों को विरासत में मिला और बच्चों ने पिता के मार्गदर्शन और अपनी साधना से उसे और भी संवारा और भी निखारा।

फिल्म जगत में पंडित प्रताप नारायण का परिवार शायद अपने आप में इकलौता और ऐसा अनूठा परिवार है जिसमें दो दो अभिनेत्री गायिका हुई, सुलक्षणा पंडित और उनकी छोटी बहन अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित।

विजेता जी चार बहनों और तीन भाइयों के अपने परिवार की सबसे छोटी और सबकी दुलारी सदस्य हैं। विजेता जी के तीन भाई फिल्म संगीत से संबंधित हैं। परिवार में बड़े भाई मंधीर और उनसे छोटे जतिन ने जोड़ी बनाकर संगीत निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म थी सन 1982 में आई दिल ही दिल में। इसी फिल्म का एक गीत रफी साहब के साथ गाया विजेता पंडित ने।

विजेता जी के भाई जतिन पंडित ने बाद में अपने छोटे भाई ललित पंडित के साथ जोड़ी बनाकर कामयाबी और शोहरत का सुनहरा अध्याय लिखा। संगीतकार भाइयों की जोड़ी के संगीत निर्देशन में विजेता जी ने गाया ये।

0: मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे संगीत का नॉलेज रखती थी, वो भजन बहुत अच्छा गाती थी और जब भी घर में कोई पूजा हुई तो वो हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाकर भजन गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं सोचती हूँ मेरी माँ थी, जो हमेशा चाहती थी कि मैं गाना गाऊं और मैं गाना सीखूं। तो क्या है कि माँ बाप का जब तक संयोग नहीं होता, उनका एक प्रेशर नहीं होता, उनकी इच्छाएं नहीं होती कि हमारे बच्चे बने, तब तक शायद मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि इंसान इस हद तक कोई भी चीज को सीखे।
1: बचपन में विजेता जी और उनके अन्य भाई बहनों ने उस दौर की अनेक फिल्मों के गीतों में अपना स्वर दिया था।
2: ए मुन्नी,

0: 1980-81 के आसपास फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को बतौर अभिनेता स्थापित करने के लिए फिल्म बना रहे थे लव स्टोरी, और इसके लिए उन्हें एक नई और खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी, और ये तलाश समाप्त हुई विजेता पंडित पर।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
0: फिल्म लव स्टोरी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और विजेता पंडित रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची।

अभिनेत्री के रूप में विजेता पंडित की चर्चित फिल्में हैं मोहब्बत, वफादार, प्यार का तूफान, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, जलजला, आग के शोले, नाग नागिन, मिट जाएंगे मिटाने वाले, कसम धंधे की, अफसर, फूल और इंसान, मिसाल, वफा और बांग्ला फिल्म आमार सोंगी।

प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित ने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन भी किया। सुनिए उनके गाए कुछ गीतों के अंश।

और अब जो जीता वही सिकंदर फिल्म का वो ट्रैक जो पहले विजेता पंडित और उदित नारायण की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था।

विजेता पंडित का विवाह हुआ सुप्रसिद्ध संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के साथ। उनके दो बेटे हैं अनिवेश श्रीवास्तव और अवितेश श्रीवास्तव। संगीतकार पति आदेश जी के संगीत निर्देशन में भी कुछ फिल्मों के लिए विजेता जी ने पार्श्व गायन किया।

0: विजेता जी के जीवन की दो सबसे दुखद घटनाएं हैं, बहन संध्या की दुखदायी मृत्यु और उसके बाद बेहद कामयाब और प्रतिभाशाली संगीतकार जीवन साथी आदेश श्रीवास्तव का असामयिक बिछोह। पति आदेश श्रीवास्तव का जाना तो जैसे दुखों के पहाड़ का टूटना हो गया। आदेश श्रीवास्तव एक बेहतरीन संगीतकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे पति, वात्सल्य से भरे पिता, एक उदार हंसमुख और मददगार इंसान थे। आज उनकी सुरीली स्मृतियां ही विजेता जी के जीवन का सहारा हैं, संबल हैं।
1: बहुत अच्छे इंसान थे, पूरी इंडस्ट्री पूरी दुनिया जानती है कि उनका नेचर इतना अच्छा था, इतने हंसमुख थे कि आज सब मुझे कहते हैं कि आदेश चला गया, हमारी हंसी चली गई।
0: विजेता जी का बड़ा बेटा अपने महान संगीतकार पिता की तरह ही संगीत जगत में अपने आप को स्थापित करना चाहता है और इस दिशा में बेटे के लिए अभिनेत्री और गायिका माँ विजेता पंडित से बेहतर गुरु कौन होगा।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके उपचार पर बातचीत। आजकल बालों की समस्याएं आम तौर पर नजर आती हैं। इसी विषय को लेकर आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रचिता धूरत को। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुनते हैं बालों की समस्या और देखभाल इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: दोस्तों नमस्कार। सेहत नवा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अमूमन हम अपनी त्वचा को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कई बार अगर कोई समस्याएं हो जाती हैं। और इसी तरह से एक बड़ा हमारा कंसर्न होता है अपने बालों को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रचिता धुरत, जो डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। ये इतने से काम नहीं चलता कि मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट बोल दूं। थोड़ा अपने बारे में, अपनी विशेषज्ञता के बारे में जानकारी दीजिए।
1: मेरी बेसिक विशेषज्ञता ये है कि मैं प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ स्किन डिपार्टमेंट एट LTMG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और साथ में मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है। और बेसिक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ हमारा हेयर और हेयर भी साथ में आता है, जिसमें मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं। और अभी मेरा ग्लोबली नाम हुआ है कि मैं संशोधन करती हूँ, पब्लिकेशन करती हूँ, तो कुछ नए नए तरीके हम हेयर में स्टडीज करते हैं, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत सारा मैंने किया हुआ है।
0: क्या
1: ये माध्यम से
0: तो ये जो बालों को लेके आपकी रिसर्च है ना, ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी है। और हम इसी पर बात करते हैं, है ना। जो इस समय में सोशल मीडिया के जमाने में आप ये देखेंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन सलाह देने की फैक्ट्री बन गए हैं। वो रील्स बनाते हैं और तरह तरह की सलाहें देते हैं कि ये ऐसा कोई मिश्रण बना के बाल में लगा लो, ये तेल, इसमें ये चीजें डाल दो। ये कितना खतरनाक लग रहा है, यहां से बातचीत शुरू करते हैं।
1: बहुत ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछा है
0: लेकिन बतौर विशेषज्ञ ये आपका हक है कि आप लोगों को जागरूक बनाएं और सावधान करें।
1: अगर पूरे भारत में देखेंगे तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट 20,000 से 22,000 है, पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डर्मेटोलॉजिस्ट 1,00,000 के ऊपर है तो उस पर से आप समझ
0: ज्यादा है।
1: यस
0: जी जी।
1: तो हर अपने अपने तरीके से सलाह देता है। आप जो सलाह लेता है और अमल करता है, उसने सोचना चाहिए कि ये सलाह सही है या गलत है, कि बहुत बार फर्क नहीं समझता है कॉमन लोगों को। तो देने वाला कौन है वो देख के आप वो सलाह को अमल कीजिए। कि बहुत बार जैसे जमाल गोटा का बहुत सारा वायरल वीडियो आया था, एक पूरे एक हॉल में 100 लोग बैठे हैं जो एलोपेशिया के एरियाटाइक के शिकार है और जमाल गोटा लगाने के लिए, पर वो नहीं देखते एक पेशेंट को अगर रिस्पांस आया, लेकिन 99% पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर वो आपको 99% के साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा, वो 1% वाला रिजल्ट आ जाएगा वो दिखाएगा। जमाल गोटा एक इरिटेंट है, इरिटेंट के वजह से कभी हेयर ग्रोथ हो सकती है, पर इसका जरूरी नहीं कि सेफ्टी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें,
0: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते,
1: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते।
0: तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि इस तरह की रील्स आप देखते जरूर हैं,
1: हाँ,
0: पर थोड़ा संभाल के।
1: बिल्कुल, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा
0: बहुत संभाल के बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि वो जो आप स्क्रॉलिंग करते चले जाते हो तो आपका ध्यान आता है, अच्छा विटामिन D3 कम है तो ये खाना चाहिए, ठीक है वो ऑर्डर कर लेते हैं, ये खा लेते हैं।
1: सिंपल एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मुहासे जब होते हैं
0: जी,
1: आप रील्स में दिखाएंगे कि गार्लिक लगाई है, वो गार्लिक बहुत इरिटेंट है, तो ये इरिटेंट के वजह से स्किन डैमेज परमानेंटली हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
0: परमानेंटली डैमेज होने का मतलब है नुकसान जो बहुत बड़ा हो जाएगा।
1: यस, काफी बड़ा हो जाएगा
0: जी। आज हम बातें जो हैं वो बालों के बारे में करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ये जड़ा थोड़ा खतरनाक सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विविध भारती जो है वो मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का काम जरूरी तौर पर करता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह के नुस्खे और टोटके नहीं आजमाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं और चूंकि बात बालों की हो रही है तो यहां जाहिर है कि आपको ऐसे गानों की बात करनी है जो बालों से जुड़े हैं, तो वो काम आप करेंगी और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूंगा।
1: बिल्कुल
0: तो बताइए कि पहला गाना कौन सा होना चाहिए, मैं कर दूं?
1: आप कर दीजिए
0: हम सब उस्ताद हैं। फिल्म का गाना है क्या तेरी जुल्फे हैं,
1: हाँ।
0: इस गाने से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।

0: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या
0: क्या तेरी जुल्फें हैं

0: अच्छा बताइए कि इतनी सालों की प्रैक्टिस के बाद अब आज के जमाने में बालों की जो सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रही हैं?
1: हेयर फॉल, हेयर शेडिंग. आजकल की जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज है. मतलब देर रात खाना, देर रात सोना, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से मूवी दिखाता है, लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सब लाइफस्टाइल में गड़बड़ है. और हेयर फॉल इतनी होती है ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाना उनको मुमकिन नहीं होता है. और जब बाल में टक्कल बालनेस दिखाई देता है तभी उनको लगता है अभी डॉक्टर के पास जाना है.
0: जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता
1: तो
0: है।
1: बालनेस कभी दिखाई देता है, 50% ऑफ आपके हेयर जब शेड हो जाते हैं तभी बालनेस दिखाई देता है.
0: ओहो, यानी आधी ट्रेन गुजर गई।
1: बिल्कुल. और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपको बालनेस जब दिखाई देता है तो मेडिकल लाइन थेरेपी से 100% रिकवरी की चांसेस कम हो जाते हैं. तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करें उतना जल्दी बेहतर रहता है.
0: आपने नई पीढ़ी की बात की है सबसे पहले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने नोट किया। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, अमूमन नॉर्मली भी हेयर फॉल होता है, तो ये जो अलार्मिंग हेयर फॉल है उसकी पहचान क्या है?
1: तो अलार्मिंग हेयर फॉल औरत में बताती हूँ तो रफली 30, 40, 50 हेयर्स अगर रोज जाते हैं, एवरेजली एवरेजली ओकेशनली जाना चाहिए, रोज नहीं बोल सकती हूँ, ओकेशनली जाते हैं तो ठीक है. लेकिन उससे ज्यादा अगर जा रहे हैं, अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो 100 अप टू 100 हेयर इज नॉर्मल कहा जाता है. मैं नहीं मानती हूँ,
0: जी
1: क्योंकि 100 हेयर आप रोज अगर जा रहे हैं आपके तो महीने के कितने हो गए, काफी हो गए.
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल.
0: गणित की परीक्षा मत लीजिए मेरी।
1: 3 महीने के कितने हो गए, तो
0: जी
1: 100 हेयर नहीं पकड़ के चलिए,
0: चालीस
1: लगा
0: पचास
1: 40, 50 लगातार जा रहे हैं और उससे ज्यादा जा रहे हैं तो फिर अब नॉर्मल समझना चाहिए. आपका स्काल्प का एनालिसिस करवा के लेना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं.
0: और पुरुषों में
1: पुरुषों में हेयर काउंट नहीं समझ में आता है क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं. और
0: जी
1: जब आप हाथों में शैम्पू करते हो तभी लगता है आपके हाथों में 10-12 बाल आ गए जो पहले नहीं आते थे. कुछ दिन तक आ रहे हैं, महीनों तक आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आ ही रहे हाथों में शैम्पू करने के टाइम पर, तो एबनॉर्मल है,
0: ठीक
1: इसको
0: बात
1: नॉर्मल नहीं कहा जाता है.
0: जी।
1: तो ये पहली कुछ साइंस है कि जो आपको बताता है कि आपके हेयर में कुछ एनर्जी कम है या आपको कोई बीमारी है, जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वेरी बहुत कॉमन चीज है, ये है या नहीं वो हम स्कोप के माध्यम से देखते हैं,
0: ये जो
1: जिसको
0: आपने
1: हम,
0: टर्म यूज की,
1: हाँ,
0: ये क्या है?
1: ये ट्राइकोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेयर के एनालिसिस करता है, मैग्नीफाई करता है कि उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखा जाता है.
0: ब्लू कलर की रोशनी में।
1: नहीं, ब्लू कलर की रोशनी नहीं है, पोलराइज लाइट होती है उसमें, तो उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखे जाते हैं. उससे अनुमान लगाते हैं कि ये आपके जो बालों की पोत है, मोटाई है, इंडिविजुअल बालों की मोटाई वो घटते जा रही है या नहीं जा रही है. दैट
0: जी
1: इज वन ऑफ द साइंस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया. तो ये जो इनिशियल साइन होता है बहुत बार बहुत सारे क्लिनिशियन भी मिस कर पाते हैं और इसके वजह से हेयर फॉल कंटिन्यू. सिंपल चीज है, एक आपने को बकेट दिया है, पानी भरने को बोला है और बकेट में मैंने होल किया है, बकेट कभी भरेंगे नहीं,
0: बिल्कुल
1: तो वैसे ही आपके बाल शेड होते रहेंगे, होते रहेंगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता गंजापन आना है. तो वो आहिस्ता जो आना है वो प्रमाण 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, डिपेंड्स अपन आपका शेडिंग कितना है.
0: जी बिल्कुल।
1: जितना शेडिंग फास्ट उतना जल्दी गंजापन,
0: ये समझने की बात
1: ये
0: है।
1: समझने की बात है. तो इसके लिए वो रोकना जरूरी है. और ये हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूं कि आपका शेडिंग जो है, हेयर शेडिंग, वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है.
0: अब आपने शुरुआत में एक बात बोली कि एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट, तो वो इस तरह के बाल झड़ रहे हैं तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ढूंढ
1: नहीं,
0: के।
1: डर्मेटोलॉजिस्ट को एक सब स्पेशलिटी है, ट्राइकोलॉजिस्ट
0: ओके
1: एक डिग्री नहीं है.
0: जी जी
1: हाँ, अभी क्या होता है कि बाकी के एलोपैथीज लोग भी खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट मानते हैं.
0: ओके
1: तो उस पर मैं भाष्य नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट को पूरा नॉलेज होता है हेयर के बारे में, हेयर के रूट्स के बारे में, हेयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होता है। तो ट्राइकोलॉजिस्ट बोलोगे, प्योर ट्राइकोलॉजिस्ट मे नॉट बी द आइडियल डॉक्टर फॉर योर हेयर,

0: यू हैव टू सी दैट उनको बैकग्राउंड डर्मेटोलॉजिस्ट का है या नहीं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं.
1: जी जी जी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर
1: हाँ
0: साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं, 40 से ऊपर और 40 के नीचे।
1: बिल्कुल
0: तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला
1: नहीं,
0: है?
1: वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है, जो 40
0: जी
1: के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीजें, बाल्डनेस कॉमन चीजें होती है। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें हेयर फॉल क्यों होता है। तो 40 के बाद हम बीपी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, या कुछ अलग बीमारी आ जाती है तो बीमारी के वजह से हेयर फॉल होता है, या अंडरलाइन आपको मैलिग्नेंसी हो रही है तभी भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण के विश्लेषण करने पड़ते हैं कि क्यों बाल झड़ रहे हैं।
0: और अगर आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके तरह तरह के टेस्ट करवा के वो
1: यस,
0: पता लगाते हैं
1: पता
0: कि किसी
1: लगाते
0: विटामिन
1: हैं।
0: की कमी है, मतलब पोषण की कमी भी हो सकती है।
1: बहुत कम लोगों में पोषण की कमी दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में
0: जी
1: आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कमी होता है, उनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारी चीजें महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती हैं। पुरुषों में अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट का कुछ इश्यू है तो विटामिन डिफिशियंसी के चांसेस
0: और उसका असर
1: ज्यादा।
0: बालों पर जाता है।
1: बिल्कुल
0: जी, महिलाओं की बात आपने की तो महिलाओं में हार्मोन्स एक बड़ी भूमिका अलग अलग उम्र में
1: बिल्कुल
0: निभाते हैं, और एक उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल उसके वजह से भी झड़ते हैं, ये क्या मामला है ये
1: हाँ।
0: बताएं।
1: महिलाओं में PCOD नाम सुना है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कॉमन है, साथ में ओबेसिटी भी कॉमन है। तो यहाँ हार्मोनल इम्बेलेंस होता है। अभी तो 20-30 ईयर्स को भी PCOD हो जाता है, ओबेसिटी तो कॉमन हो गई है
0: जी
1: क्योंकि चलना नहीं है, गाड़ी में बैठो, रिक्शा करो, मोटरसाइकिल जो भी है। पहले के जमाने में हम लोग स्टेशन को जाने के चल के जाते थे,
0: करेक्ट
1: रिक्शा के पैसे बचाते थे तो
0: बढ़िया
1: वो
0: बात
1: हमारा
0: बोली।
1: चलना हो जाता था, बात बात पर रिक्शा मंगा लिया और चले गए। वो सब चीजें अभी बहुत बदल गई है। तो PCOD और ओबेसिटी हैंड इन हैंड होता है, और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो के उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीजें पूरी देखनी होती है कि PCOD है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम भी आपने सुना होगा
0: जी जी बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पहले के जमाने में था क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस,
0: नहीं।
1: 40 साल के, 50 साल के लोगों को होता था, अभी उसके कम उम्र वाले लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपने देखा होगा। ये पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया, मेरे दोस्त को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया
0: जी ये
1: कि
0: बहुत आज के जमाने की चीज है।
1: यस। और ऑनलाइन खाना, घर का खाना नहीं है, क्या पता है आप ऑनलाइन जो खा रहे हो वो कितनी बार तेल, वो ही गरम किया हुआ तेल है या नहीं है, पता नहीं।
0: जी
1: जो स्वाद में चटपटा है पर पोषक नहीं है।
0: एक तरह से आप जो हैं वो खान पान को लेकर भी लोगों को सजग बना रही हैं कि भाई
1: यस
0: अगर खान पान ठीक नहीं किया तो
1: नहीं,
0: इसका
1: सभी
0: असर।
1: चीजें, हर एक का रोल है आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर फॉल करने में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गाने के लिए रुकते हैं,

0: जो लड़कियां एक उम्र पर पहुंच रही हैं और युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है, तो वो क्या रीठा शिका काई पता नहीं क्या क्या करती हैं, या फिर एक उम्र तक महिलाएं पहुंचती हैं मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद बाल झड़ते हैं और वो तरह तरह की चीजों दादी नानी के नुस्खे अपनाने
1: यस,
0: लगती
1: दोनों
0: हैं।
1: चीजें अलग अलग है। एक तो
0: जी
1: मेनोपॉज के टाइम पर जो हार्मोनल डिक्लाइन होता है, हमारे एस्ट्रोजन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो वो प्रोटेक्शन रहता है अपने हेयर के लिए, वो कम हो जाता है, वहां हेयर फॉल होता है।
0: उसको कैसे टाला जा सकता है?
1: उसके लिए मेडिसिन होते हैं अलग टाइप के, मतलब वो मेडिसिन अलग है। आप हार्मोन थेरेपी तो नहीं ले सकते, बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टू हार्मोन थेरेपी। आप इस्ट्रोजन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स नहीं, बोलो खाना फूड जो होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उससे हेयर फॉल नहीं रोकेगा। तो उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग से है। पर जो यंग जो होते हैं, जो युवा अवस्था में जा रहे हैं, और वहां उनको सडनली हेयर फॉल शुरू होता है, ये बहुत कॉमन है, जब क्योंकि ये हार्मोनल चेंज हो गया सडन। अगर ये हार्मोनल चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है और बॉडी नॉर्मली स्टेबिलाइज नहीं करती है हेयर फॉल, तो आपको जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, वो समझना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो हाँ नॉर्मल है
0: इस उम्र में तो सबका होता,
1: सबका,
0: हमारा भी हुआ
1: हाँ
0: था।
1: बिल्कुल यही डायलॉग होता
0: जी, तो इसको कैजुअली नहीं
1: हाँ,
0: लेना।
1: इसको कैजुअली नहीं लेना, आपको असेस करना है आपका हेयर शेडिंग कैसा है, वही जो मैंने पहले बताया
0: एक
1: हेयर
0: बार फिर बता
1: शेडिंग।
0: दीजिए, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो उसको पता चल जाए, महिलाओं में 30 से 40 बाल।
1: 30 से 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर रोज हो रहे हैं 30 40 के ऊपर, रोज एक हाथ बार हुआ तो ठीक है, पर रोज हो रहे हैं तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको दिखाना जरूर है डॉक्टर को।
0: बिल्कुल। अच्छा, ये जो घरेलू नुस्खे की बात हुई जो दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें से कौन से नुस्खे जो हैं वो ठीक ठाक हैं और कौन से गड़बड़ हैं? ये जो मेहंदी, रीठा, शीका, काई, चाय पत्ती, जाने क्या क्या, ये चलता रहता है ना
1: नहीं,
0: घरों में?
1: मेहंदी, रीठा, शिकाई ये हेयर के टेक्सचर को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा, हेयर फॉल को नहीं रुकाएगा। ना आपका अनियन जूस, पैस का जूस, लोग सुनते हैं अनियन जूस लगाने से इम्प्रूवमेंट होती है, अनियन जूस के वजह से इरिटेशन होके इनफेक्ट बाल ज्यादा

0: Okay, and my mind says that I'm going to improve. All is well.
1: जी
0: You will improve for temporary period of time.
1: ओके okay, उसके बाद सच्चाई उजागर होने लगेगी।
0: Yes.
1: मुझे लगता है कि यहां पर एक गाने की बारी है।
2: न झटको जुल्फ से पान

0: मुझे लगता है कि महिलाओं के हेयर फॉल की जो बात है उसके एक बड़े हिस्से को कवर किया हमने, लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के बालों की देखभाल को लेकर और कौन सी बातें आप कहना चाहती हैं?
1: बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि क्या कारण होते हैं। हेयर फॉल के बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरी कॉमन चीज जो राउंड राउंड पैचेस गिरते हैं बालों में, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट टोटली अलग है।
0: तो वो पहचानना जरूरी है कि
1: वो
0: बाल गोल
1: हाँ,
0: गोल होके गिर
1: तो
0: रहे
1: वो
0: हैं।
1: गोल गोल होके गिरते हैं, कभी सडनली हेयर शेडिंग हो जाता है, कभी गोली खाने से इतना शेडिंग हो जाता है पता ही नहीं चलता कि आपको इतना जल्दी ज्यादा शेडिंग क्यों हुआ है।
0: कई बार कुछ लोगों को बुखार उखार होता है और वो
1: यस
0: दवाएं खाने के
1: यस,
0: बाद।
1: तो वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो बालनेस से अलग है। तो हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या कोई भी वायरल बीमारी हुई है। पेशेंट भूल जाते हैं, कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन है, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है।
0: ओ हो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे।
1: यस आपको

0: याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था, 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है।
1: जी,
0: तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है।
1: ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा
0: हाँ,
1: मामला है।
0: यस। तो अगर जब एक साइन नहीं दिखता है तो दूसरे साइंस की तरफ हमको बढ़ना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है।
1: तो ये केवल बुखार में जो एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी
0: पर
1: दवाएं खाने से होता है, या अलग अलग बीमारियों की दवाएं इस पर असर करती हैं और
0: सभी
1: बाल झड़ते
0: बीमारी
1: हैं?
0: को नहीं करती है, लेकिन मेन जो है फीवर हुआ है, फीवर की वजह से भी हेयर शेडिंग हो सकती होती है। एंटीबायोटिक भले ही आपने 5 ही दिन लिए, लेकिन फीवर हुआ है उसका असर आपका मेटाबॉलिक जो होता है असर, वो बालों पर गिरता है। इसमें दो चीज मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोगों को थोड़ा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, आप समझ सकते हैं कि आपकी पोनी छोटी होती जाने वाली है, और वो पोनी जब वॉल्यूम कम हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपके वॉल्यूम वापस रीगेन हुए। सिंपल लॉजिक ये है, आपके जब नए बाल आएंगे उनकी ग्रोथ की रेट है 1 सेंटीमीटर पर मंथ। तो
1: हो,
0: मुझे शोल्डर लेंथ के लिए आने के लिए कितने साल लगेंगे, आप काउंट करेंगे?
1: बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगा। 1 महीने में 30 सेंटीमीटर, इसके आगे काउंट नहीं करना मुझे।
0: नहीं नहीं
1: इन
0: नहीं 1 सेंटीमीटर इन अ मंथ, इन
1: अ
0: मंथ, इन अ
1: मंथ है?
0: मंथ,
1: ओ हो, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गए 1 साल
0: बारह
1: में।
0: सेंटीमीटर साल में।
1: हाँ, तो
0: हाँ,
1: 10 साल में?
0: तो आप करिए तो।
1: नहीं, ये
0: हाँ,
1: हिसाब लगाइए तो मतलब बढ़ेंगे ही नहीं ये बाल कुल
0: तो वॉल्यूम
1: मिलाकर।
0: नहीं बढ़ती है,
1: ओ हो,
0: आपका टकलापन ढक जाएगा क्योंकि बाल नए आ रहे
1: लेकिन वो
0: हैं।
1: थिन रहेंगे।
0: वो थिन थिकनेस बढ़ने के लिए 7-8 साल लग जाएंगे। तो जितना बाल आपके गए हैं, मतलब आपकी वॉल्यूम एकदम 50% हो गई है, आपकी वॉल्यूम वो 50% से 100 और 80% में होने में कितने साल लगेंगे?
1: जी
0: तो वही कहना है, वापस शेडिंग को पहले रोकिए।
1: हाँ, मतलब समय पर सावधान हो
0: यस,
1: जाइए।
0: बिल्कुल।
1: बहुत सही बात है, मैं भी सावधान हो गया। यहां पर एक गाने की बारी है, नौनिहाल फिल्म का गाना सुनते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा।
0: यस।
1: बढ़िया गाना, कैफी आजमी का है, तो ये गाना
0: जुल्फ अच्छी
1: सुनते
0: होनी चाहिए
1: हैं।
0: फिल्म
1: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए, ये
0: में।
1: बहुत इंपॉर्टेंट है।

0: ये गाना हमने सुना और हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचिता धुरत। और आप बता रही हैं कि कैसे अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि 2 महीने पहले बुखार तो नहीं आया था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, उम्र का कौन सा मुकाम चल रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, टेंशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो सब भी काम करते हैं।
1: डेली जो टेंशन होती है सभी को होती है
0: जी,
1: अभी डेली टेंशन से आप कितने डिस्टर्ब हो वो जरूरी है। आप डेली टेंशन ले रहे हो और यू आर एंजॉयिंग योर वर्क,
0: मानसिक अवस्था क्या है?
1: हाँ, आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ रही है डेली टेंशन से, तो उसका असर आपके बालों पर भी होगा। अभी सभी डॉक्टर्स को टेंशन होती है, पर सभी डॉक्टर गंजे नहीं है ना।
0: नहीं, आपके बाल तो कितने अच्छे हैं। जी,
1: तो ये देखना जरूरी है कि आपको डेली टेंशन से आप मानसिक अवस्था कितनी बिगड़ रही है, उसके साथ आपका खान पीन, मतलब आप खाना स्किप कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग, इतना काम रहता है, इतने कॉल्स पर रहते हैं, सुबह का नाश्ता खाना भूल जाते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं और सीधा रात को ही खाते हैं। जो हम बोलते हैं रात को कम खाइए,
0: और यहाँ तो
1: उल्टा
0: दिन भर
1: हो
0: का
1: जाता
0: खाना रात को हो रहा है।
1: तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कितने सालों से चलने वाला प्रोसेस है जो आपके गट को खराब करता है। फिर आप बीच में क्या एसिडिटी होती है, तो आप एक तो एसिडिटी के टैबलेट ले लेते हो, एसिडिटी के वजह से गट का इंटरनल फ्लोरा जो होता है, लाइनिंग, वो खराब होने चालू हो जाती है।
0: यस यस, बिल्कुल।
1: हमारे टाइम पर या जो हमारे परदादा ने सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को 6-7 बजे डिनर कर लिया, 10 बजे या 9 बजे सो गए, ये जो रिदम है जो हमारी बॉडी है और जो पृथ्वी घूम रही है, इसके साथ जब ये रिसर्च किया हुआ है, इसके साथ हमारी बॉडी और अर्थ के जो रिवोल्यूशन के साथ जब मैच होती है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, उसके अनुसार हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। जो कॉर्टिसोल लेवल सुबह में रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन ये टाइम पर रिलीज होगा, अगर हम उसको संतुलन ही बिगाड़ दे तो क्या होगा?
0: बिल्कुल।
1: और ये समस्या पहले हम बड़े लोगों में देखते थे 30 या 35 सालों के ऊपर, पर कम उम्र में अभी देखना मिल रहा है। 20 साल के नीचे के बच्चों को कॉमन बाल्डनेस, टकलापन आ रहा है।
0: चिंता की बात है,
1: चिंता की बात, बहुत चिंता की बात है। मतलब अगर मैं सोचूं कि आज 20 साल का ये लड़का है जिसको बाल्डनेस आया है, मॉडरेट ग्रेड है, 10 साल में क्या होगा उसका?
0: जी
1: सोचिए, पूरा गंजा हो सकता है।
0: अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं।

0: कुछ बुरी आदतें लाइफस्टाइल की, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब का असर बालों पर पड़ता है?
1: या स्मोकिंग का काफी असर गिरता है।
0: जी,
1: या
0: और आजकल ये एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसा युवाओं के बीच बनता चला जा रहा है, तो उसका असर आपने देखा, किस हद तक देखा है?
1: बहुत, मतलब सिर्फ बालों पर ही नहीं, पूरे शरीर पर असर गिरता है। स्मोकिंग ऑलवेज इज अच्छी नहीं है। कौन से स्टेट में अच्छी रहेगी वो तो
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: किसी कारण से अच्छी नहीं है ना। इवन पैसिव स्मोकिंग, कोई मुझे बोलता है हाँ मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसके पूरे फ्रेंड सर्कल स्मोकिंग करते रहते हैं। तो पैसिव स्मोकर एज बैड एज योर एक्टिव स्मोकर।
0: बिल्कुल। अभी हाल की एक रिसर्च है जो बताती है कि 30% या कुछ, वो मेरे एक साइंस वाले कार्यक्रम में हमने ये रिपोर्ट शामिल की थी कि पैसिव स्मोकिंग इज टू डेंजरस, है ना, तो उससे भी बचना बहुत जरूरी
1: या
0: है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, आप ये बताइए कि विज्ञापनों में कई बार अखबारों में या टेलीविजन पर हम या सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि गारंटी है, एक जगह एक गंजा आदमी दिखाते हैं, दूसरी तरफ बाल एकदम पूरे, ये जो गारंटी है ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है कि कोई टेंशन नहीं है, बाल तो वापस आ ही जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाता है, ये कितना बड़ा भ्रम है
1: बहुत बड़ा भ्रम है।
0: जी।
1: आपकी लाइफ की गारंटी कोई नहीं दे सकता है,
0: जी
1: तो बालों की गारंटी कैसे दे सकता है? हर एक आदमी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आप कोरोना टाइम में, पैंडेमिक में देखिए, वायरस वही था, सेम वायरस था, जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम थे। एक फैमिली में एक की डेथ होती है, दूसरे को थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और तीसरे को कुछ भी नहीं होता है। क्यों?
0: बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है
1: पर सेम जीन से बंधे हुए हैं,
0: जी,
1: फिर भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो यही है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, भले ही आपके जीन सेम है, पेरेंट्स से है। एक पेरेंट्स को काफी तकलीफ हुई है, एक भाई को कुछ भी नहीं हुआ, तीसरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट
0: तो ये समझने की जरूरत
1: है। या
0: है।
1: तो इसके लिए गारंटी, हम साइंस में गारंटी वर्ड नहीं है, नॉन साइंस में गारंटी वर्ड है।
0: तो जैसे गारंटी आए सावधान हो जाना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: यस।
0: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

श्रोताओ, बालों का स्वस्थ होना और सुंदर दिखना न सिर्फ सुंदरता बल्कि कहीं न कहीं ये हमारे व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रही थी डॉक्टर रचिता धुरत। इनसे बातचीत की थी यूनुस खान ने। आज इस बातचीत का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन इसी समय। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्ड।

0: रख लेगा। 9 बजे की शोरदा आ गई सुबह सुबह। मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
1: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है, जहां उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग इस कार्यक्रम को लेकर आज आपके साथ हूँ मैं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं अल्ताफ राजा के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है जहीर आलम ने, संगीत है मोहम्मद शफी नियाजी का और एल्बम का नाम है तुम तो ठहरे परदेसी।

करेगा कौन? इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन?

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मिश्र संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत। समीर ने इसे लिखा है, ललित का संगीत है और एल्बम का नाम याद पिया की आने लगी।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अदनान सामी के संगीत निर्देशन और उन्हीं की आवाज में सुनिए तेरा चेहरा इस एल्बम का गीत, जिसे लिखा है समीर ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और श्रोताओं आज दिन में 4 बजे सुनना ना भूलें कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। आज आप इसमें सुनेंगे अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग दो, तो जरूर सुनिए ये कार्यक्रम। और चलिए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं अल्ताफ राजा की आवाज में, दिल के टुकड़े हुए हजार, ये एल्बम का नाम है। अरुण भैरव ने इसे लिखा है, अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का संगीत।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं सईद कादरी की लिखा ये गीत। गोल्डी ने इसे संगीतबद्ध किया है। एल्बम का नाम तू ही मेरे रब की तरह है।

आइए अब आपको सुनाते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत। गीत संगीत ललित सेन का, एल्बम का नाम मेरी चूनर उड़ उड़ जाए।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: कभी तो नजर मिलाओ, इस एल्बम का गीत अब सुनते हैं अदनान सामी की आवाज में। रियाज और रहमान सागर ने इसे लिखा है और संगीत है अदनान सामी का।

अदनान सामी के गाए इस गीत के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका।
3: जी नमस्कार, मैं हूँ अजीत। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी ने।
2: लिखते हैं, कठिनाइयाँ रास्ता रोकने नहीं हौसलों को परखने आती हैं। जो हर चुनौती में अवसर खोज ले वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है।
3: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर और लखनलाल देवांगन जी ने बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किया है और वो कहते हैं,
2: माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं। उनका सम्मान, सेवा और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी शिक्षकों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना हमारे जीवन का एक जरूरी कर्तव्य होना चाहिए। सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, पिछले सप्ताह उमंग कार्यक्रम में प्रेरक प्रसंगों का दौर चला
2: जी,
3: तो इस सप्ताह हमारी क्या योजना है?
2: अजीत जी, इस सप्ताह क्यों न चलें भारत के सुदूर कुछ अनूठे गांवों की ओर। मुझे लगता है कि ऐसे गांवों की जानकारी हमारे श्रोताओं को भी होनी चाहिए।
3: जी विमलेश जी बिल्कुल, दरअसल हमारा भारत है ही विविधताओं का देश। यहाँ हर राज्य, हर गांव और हर संस्कृति अपने भीतर कोई न कोई अनोखी कहानी समेटे हुए है।
2: बिल्कुल,
3: सचमुच आश्चर्य होता है जब हम अपने देश की अजब गजब बातों को जानते हैं।
2: जी।
3: तो

0: बताओ, क्या आप किसी ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जो दो देशों में है?
1: जी हाँ, एक ऐसा गांव है जो दो देशों में है। तो श्रोताओं, आज हम आपको भारत के एक ऐसे अद्भुत गांव की यात्रा पर ले चलेंगे जहां एक ही घर का बैठक कक्ष भारत में है और शयन कक्ष म्यांमार में। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। इस अनोखे गांव का नाम है लोंगवा।
0: जी हाँ श्रोताओ, लंगवा गांव भारत के नागालैंड राज्य के मोन जिले में स्थित है। आपको बता दें कि ये गांव भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ
1: जी
0: है। यहाँ दोनों देशों की सीमा रेखा गांव के ठीक बीच से होकर गुजरती है, तो यही कारण है कि इस गांव के कई घरों के एक हिस्से भारत में है तो दूसरे हिस्से म्यांमार में।
1: जी
0: क्यों विमलेश जी, है ना अनूठी और बड़ी मजेदार बात?
1: जी बिल्कुल अजीत जी, सचमुच बात तो बड़ी मजेदार है। श्रोताओं को एक और रोचक बात बता दें कि लोंगवा की सबसे प्रसिद्ध पहचान है आंग।
0: विमलेश जी, लेकिन जरा ये भी तो बताइए कि आंग किसे कहते हैं?
1: अजीत जी, आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है। पहले उसके पास सामाजिक, न्यायिक और राजनैतिक अधिकार भी होते थे, लेकिन आज भी उन्हें सांस्कृतिक और पारंपरिक सम्मान प्राप्त है।
0: जी हाँ, तो श्रोताओं आपको बता दें कि लोंगवा गांव के आंग यानी मुखिया का विशाल लकड़ी का घर दोनों देशों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यदि आंग अपने बैठक कक्ष में बैठे हों तो वे
1: जी
0: भारत में होते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और जब अपने शयन कक्ष में विश्राम करने जाते हैं तो म्यांमार में। श्रोताओं, दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं।
1: साथ ही साथ इस गांव के कई घर ऐसे हैं जो दोनों देशों में पड़ते हैं। भोजन भारत में करते हैं तो शयन म्यांमार में।
0: हाँ।
1: और अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोंगवा में प्रमुख रूप से कोयांक नागा जनजाति निवास करती है। कोयांक समुदाय नागालैंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इनके रीति रिवाज, पहनावा, भाषा और जीवन शैली अत्यंत आकर्षक है।
0: तो श्रोताओं, यदि कभी आपने कोयांक पुरुषों की तस्वीरें देखी हो तो आपने उनके चेहरे और शरीर पर बने पारंपरिक टैटू अवश्य देखे होंगे। ये टैटू केवल सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि ये टैटू साहस, सम्मान और सामाजिक पहचान के प्रतीक माने जाते थे।
1: जी
0: आज नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली अपना रही है, फिर भी बुजुर्गों के चेहरे पर अंकित ये टैटू इतिहास की जीवित धरोहर हैं।
1: कोयांक जनजाति के लोग लकड़ी की उत्कृष्ट नक्काशी, रंग बिरंगे मनकों के आभूषण, पारंपरिक हथियारों और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण में भी निपुण हैं। उनके हस्तशिल्प में प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत मेल दिखाई देता है।
0: श्रोताओं, यदि इतिहास के पन्नों को आप पलटें तो पता चलेगा कि एक समय था जब कोयांक योद्धा हेड हंटिंग अर्थात युद्ध में शत्रु का सिर लाने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय इसे वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता था।
1: लेकिन समय के साथ साथ समाज बदला, शिक्षा का प्रसार हुआ और अनेक सामाजिक परिवर्तनों के कारण ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। आज कोयांक समाज शांति, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
0: तो बता दें प्रिय श्रोताओं को कि लोंगवा गांव का प्राकृतिक सौंदर्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
1: जी
0: चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वन, स्वच्छ वातावरण और बादलों से घिरी घाटियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य विशेष रूप से बहुत ही मनमोहक होता है।
1: यहाँ के लोग आज भी प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। कृषि, पशुपालन और वनों से प्राप्त संसाधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण आधार हैं। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो श्रोताओं, यदि आप नागालैंड की यात्रा करें तो लोंगवा गांव अवश्य जाएं, क्योंकि ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और सीमा पर बसे लोगों के जीवन को समझने का एक अनूठा अवसर है।
0: जी, तो श्रोताओं, लोंगवा गांव हमें ये संदेश देता है कि सीमाएं नक्शों पर तो खींची जा सकती हैं,
1: जी
0: लेकिन संस्कृति, मानवता और रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती। विविधताओं में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: यही कारण है कि हमारा देश अपनी अनगिनत भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है।
0: तो श्रोताओं, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमारी आज की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। कल
1: जी
0: फिर से मिलेंगे भारत के किसी और अद्भुत स्थान की नई कहानी और जानकारी के साथ। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी सीआईटी एनसीईआरटी को लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम
1: सरितपुर की कहानी।
2: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे आगे बच्चों का क्या हो रहा है, हमारे घर के सारे सामान बह
3: गए
2: हैं, हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
3: फसल बह गई।
4: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था, नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी, नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
5: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
3: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
5: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
4: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी, लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है, नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
5: अरे काट काट काट, मेरा भी क्या देख रहा काट।
6: अरे मैंने आज पेड़ काट डाले।
4: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
7: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो, इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो, सुन लो मेरी बात।

0: यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
1: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
2: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
3: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
4: और पैसे कमाने हैं।
1: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
5: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
0: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी में।
1: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
6: अरे अरे हमारे घर का सारा सामान बह जाएगा,
7: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
5: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल
7: फसल बह गई।
6: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
7: सारा
6: सामान
7: जल्दी
6: से ऊपर ले जाना होगा।
7: चलो जल्दी ऊपर,
6: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी, चलो
7: चलो चलो,
6: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
7: ध्यान से संभल कर।
1: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
0: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
8: अभी आप सुने थे कार्यक्रम सरितपुर की कहानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा।
9: इस कार्यक्रम में भारत की महान एथलीट और धाविका पीटी उषा के जीवन और खेलों की दुनिया में उनके अमूल्य योगदानों की चर्चा की गई है। जिनके कारण देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त हुआ है।

0: नमस्कार साथियों, आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक विलक्षण स्त्री की, जिसने सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल जगत की वो एक सितारा हैं, जिसकी चमक से कोई भी अभिभूत हो जाता। वो हैं पीटी उषा। उनका पूरा नाम है पिलावुल्ला कंडी तेक्के परमबिल उषा।
0: कहते हैं कि जब वो दौड़ती थी तो लोग देखते ही रह जाते थे। उनके दौड़ने में बिजली की सी गति और चपलता थी।
1: जहां पुरुष धावकों में दुनिया मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से जानती है, तो वहीं महिला धावकों में पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। वो भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला धावकों में से एक हैं। इनके पिता का नाम ईपीएम पैतल एवं माता का नाम टीवी लक्ष्मी है। बचपन में पीटी उषा का स्वास्थ्य अक्सर बहुत खराब रहा करता था। माता पिता और परिवार के लिए ये एक निरंतर चिंता का विषय था।
0: धीरे धीरे उषा का स्वास्थ्य ठीक होता चला गया। वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी और उनका खेलों की ओर, विशेषकर फर्राटा दौड़ की ओर रुझान बढ़ता चला गया।
1: स्कूल में जब दौड़ प्रतियोगिता होती तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उसमें भाग लेती और सफलता भी प्राप्त करती। चौथी कक्षा तक आते आते उनकी पहचान एक अच्छी धाविका के रूप में होने लगी।
0: उनके स्कूली दिनों में ही एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। उनकी शारीरिक शिक्षा की अध्यापिका ने उन्हें जिले की चैंपियन धाविका से मुकाबला करने को कहा। वो चैंपियन भी पीटी उषा के स्कूल में ही पढ़ती थी।
2: आपने मुझे बुलाया मैम?
3: आओ उषा, मैंने खास बात के लिए तुम्हें याद किया है।
2: जी कहिए मैम।
3: अगले महीने स्कूल का वार्षिक खेल उत्सव होना है। तो तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है भाई?
2: मैम अच्छा चल रहा है।
3: गुड।
2: स्कूल के बाद शाम को भी दौड़ने का अभ्यास करती हूँ मैं।
3: वेरी गुड। देखो अगले सप्ताह हम दौड़ का सामूहिक अभ्यास करने जा रहे हैं।
2: जी मैम।
3: तो तुम्हें एक काम करना है।
2: जी।
3: तुम्हें शोभना के साथ दौड़ना है।
2: शोभना के साथ? लेकिन मैम वो तो जिले की चैंपियन है।
3: बिल्कुल ठीक, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ दौड़ो। तुम्हें भी तो अपनी क्षमता का पूरा पूरा पता चलना चाहिए।
2: जी मैम, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी, मैं मेहनत करूँगी।
3: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी उषा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू मैम।
0: जब मुकाबला हुआ तो सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उषा ने अपने जिले की चैंपियन धाविका को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। उस समय वो सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। इस घटना के बाद उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया।
1: बात सन 1976 की है। केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य था बालिकाओं को खेल प्रशिक्षण देना और जिला तथा राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें तैयार करना।
0: महिला खेल प्रशिक्षण केंद्र के पहले सत्र में कुल 40 लड़कियों का चयन हुआ, जिसमें 12 वर्ष की पीटी उषा भी थी। प्रशिक्षण के बाद पीटी उषा को जिला स्तर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ।
1: वर्ष था 1977 का, जब उन्होंने पहली बार जिला स्तर की फर्राटा दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस दौड़ प्रतियोगिता में श्री ओ एम नंबियार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
0: ओएम नंबियार जाने माने खेल प्रशिक्षक थे और पीटी उषा के जबरदस्त प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी अनुभवी आंखों ने बालिका पीटी उषा में भविष्य की महान एथलीट को देख लिया था। उन्होंने उषा को पुरस्कार वितरण समारोह के बाद मिलने के लिए बुलाया।
4: वेल डन उषा, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा।
2: थैंक यू सर।
4: मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम बहुत आगे जा सकती हो।
2: लेकिन सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैं ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी।
4: तुम उसकी चिंता ना करो, बस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा।
2: आप? धन्यवाद सर, लेकिन
4: अब लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अगले महीने से हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे।
2: सर।
4: और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सरकार से छात्रवृत्ति भी मिल जाए।
2: ओह, थैंक यू सो मच सर।
1: इसके बाद से उन्होंने पीटी उषा को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परिणाम बहुत सुखद रहा। पीटी उषा ने राज्य स्तर पर ढेर सारी जूनियर दौड़ प्रतियोगिताओं में मेडल जीते।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। और फिर आया वो दिन जब उन्हें ओलंपिक में दौड़ना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस का स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेताबी से दौड़ शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।
5: बिल्कुल बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। आज दौड़ में हमारे देश की पीटी उषा जो भाग ले रही है।
6: ऊंचा हो जाएगा।
5: हमारी पीटी उषा सबसे आगे निकल गई। अरे ओ, ये क्या हुआ?
1: उषा बहुत तेज गति से दौड़ी, शुरुआत में पिछड़ गईं, लेकिन जबरदस्त तरीके से वापसी की और प्रतिद्वंद्वी धाविका क्रिस्टियाना कोजोकारू को पीछे भी छोड़ दिया। पीटी उषा का प्रदर्शन इतना शानदार था कि सारी भीड़ ने तालियों और शोर से पूरा स्टेडियम गूंजा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि पीटी उषा को द्वितीय स्थान मिला है।
0: दोनों धाविकाएं लगभग एक साथ विजय रेखा पर पहुंची। पीटी उषा का पैर भी आगे था लेकिन उनके कंधे पीछे थे, इसलिए वो मात्र एक सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक से वंचित रह गईं। यही वो समय था जब उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
1: आप सोच रहे होंगे कि उन्हें दिए गए उड़न परी, गोल्डन गर्ल और क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक्स जैसे सम्मान सूचक विशेषण तो समझ में आते हैं, लेकिन भला ये पयोली एक्सप्रेस क्या नाम हुआ? उन्हें पयोली एक्सप्रेस क्यों कहा गया?
0: इसके पीछे बड़ा दिलचस्प कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पयोली गाँव में हुआ था। पयोली गाँव में जन्म लेने और दौड़ में एक्सप्रेस गाड़ी

0: ऐसी उनकी जबरदस्त क्षमता को देखते हुए उन्हें पयोली एक्सप्रेस का नाम दिया गया।
1: उन दिनों कहा जाता था कि पीटी उषा का किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही पदक प्राप्त करने की गारंटी है। उन्होंने कुल मिलाकर 101 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक हैं।
0: सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण उन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी पुकारा जाता है।
1: महान धाविका पीटी उषा को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से 1984 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान उल्लेखनीय हैं।
0: वो अपने गृह नगर में महिलाओं के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र भी चलाती हैं। राष्ट्र को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए 2022 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
1: देश कृतज्ञ भाव से महान धाविका और प्रेरणा स्तंभ पीटी उषा को नमन करता है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम उड़न परी पीटी उषा। तो हमें अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
3: चेतना,
2: जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: बेवफा से वफा इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। सावन कुमार ने इसके बोल लिखे थे, उषा खन्ना का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

चंदा से चोरी पतंग से डोरी दू रहे दो दू रहे और तुम ना रहना दू हो सा

0: साजन की सहेली इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे उषा खन्ना का संगीत। और साथियों, इस गीत से पहले जो गीत आपको सुनवाया वो था फिल्म लैला से, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। सावन कुमार के ने इसके बोल लिखे थे और उषा खन्ना का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: यादों के महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सावन कुमार का रचा ये गीत। उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम अब क्या होगा।

इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। और साथियों आपको बता दें कि आज आप इस कार्यक्रम में सुन रहे थे सावन कुमार टाक के लिखे हुए या फिर उनके निर्देशित फिल्मों से गीत।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। जी हाँ साथियों, ये वही कार्यक्रम है जिसमें हम एक पहेली लेकर आते हैं इबारत के रूप में। आपको बुझानी होती है पहेलियां और बताने होते हैं वो शब्द जिनसे आज गीत बजने वाले हैं। तो चलिए जान लें एक बार कि कौन सी है वो पहेली और फिर आप बताएंगे वो शब्द। ध्यान से सुनिएगा। बात एक रात की थी, आसमान में चांद निकला था। खिड़की पर बैठी ज्योति अपने साजन का इंतजार कर रही थी। हवा चली तो दिलबर की याद आई, याद आई तो नैना भर आए। तभी दूर से किसी के आने की आहट महसूस हुई। दिल ने कहा वो आ गया, पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि तभी सामने से कोई आया। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में फूल थे, आंखों में प्यार था और लबों पे इजहार था। हाँ, यही तो था वो दीपक जिसका ज्योति को इंतजार था। इस पहेली को लेकर आप सभी ने कई सारी बातें लिखी हैं और उन कमेंट्स को भी आगे हम पढ़ेंगे, मगर एक बात हम आपको आज की इबारत को लेकर बता देते हैं। तो वो बात ये है कि अक्सर हम जब पहेली बताते हैं, कोई पहेली सुनाते हैं या इबारत पढ़ते हैं, तो उसके जो शब्द होते हैं उनसे कोई भी गीत हो सकता है, मगर आज के जो गीत हैं उनसे कहानी बननी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए ना आज के कार्यक्रम में आपको क्या करना है। तो यूं तो अब उदाहरण के लिए आपको मैं एक बताती हूं, जैसे ज्योति शब्द से हो सकता है आप समझे ज्योतिष कलश छल के ये गीत बजेगा, और फूल से शायद आप समझें कि फूल तुम्हें भेजा है खत में ये गीत बजेगा। मगर नहीं, आज जो गीत बजेंगे वो कहानी के रूप में होंगे, यानी कि वो गीत ना सिर्फ शब्दों से जुड़ते हैं बल्कि पूरी पहेली की कहानी से जुड़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का, और पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं काला बाजार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। पहचानिए वो शब्द।
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान।

इस गीत में जो शब्द था, जी हाँ, वो यही शब्द था चांद। और शायद आप समझ गए होंगे कि चांद शब्द से और भी गीत हो सकते थे, मगर चूंकि इनमें नींद ना आने की बात हो रही है, तो ये हमारी कहानी से जुड़ता है, जो कहानी हमने पहेली में बताई है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि दीपक अकेला हो तो बस एक दीपक है, ज्योति के साथ हो तो उजाला बन जाता है। शायद इसी को साथ की खूबसूरती कहते हैं, जहां एक की मौजूदगी दूसरे को अर्थ दे। दीपक और ज्योति हमें यही सिखाते हैं कि किसी की कीमत हमेशा अकेले नहीं आंकी जाती, कभी-कभी किसी के होने से ही हमारी रोशनी पूरी होती है। एक छोटी मगर प्यारी सी बात, दीपक की सुंदरता ज्योति से है और ज्योति की पहचान दीपक से। दोनों साथ हों तो अंधेरे में भी उम्मीद दिखाई देती है। एक साथ ही लिखते हैं, आज की इस लघु कथा का सबसे भावुक क्षण वो है जहां उम्मीद भ्रम में बदलती है। बारिश की बूंदों को साजन के कदमों की आहट समझ बैठना विरह की उस गहरी अवस्था को दर्शाता है, जहां मन हर आवाज में अपने प्यार को ढूंढने लगता है। उस भ्रम के टूटने पर उपजी मायूसी दिल को छू जाती है। जिस तरह दीपक के बिना ज्योति का कोई अस्तित्व नहीं और ज्योति के बिना दीपक अधूरा है, उसी तरह दोनों का मिलन प्रेम की पूर्णता को दर्शाता है। चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं शराबी फिल्म से, किशोर कुमार की और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान के बोल हैं और बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

0: एक साथी लिखती है, इंतहा हो गई इंतजार की। ये गाना इंतजार, सच्चे प्रेम और बेचैनी की भावनाओं का एक बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण है। किशोर कुमार के दर्द भरे और रोमांटिक अंदाज तथा आशा भोसले के जवाब ने इस गीत में जान फूंक दी है। बप्पी लाहिड़ी का धीमा और कर्णप्रिय संगीत शब्दों के असर को और ज्यादा गहरा कर देता है। अमिताभ बच्चन का अभिनय और गाने के बोलों में निहित भरोसा कि बेवफा वो नहीं, इस गीत को एक अमर रोमांटिक रचना बनाता है। आपको बता दें, इस गीत को लिखा अंजान और प्रकाश मेहरा ने।
1: रात प्यार की।
0: एक साथी ने लिखा है, आज का गद्यांश प्रवास जनित वियोग श्रृंगार से संयोग श्रृंगार में संक्रमण को बहुत गहराई से दर्शा रहा है। खिड़की पर सजनी आसमान में चांद को देखते हुए बैठी है और हवा के झोंकों से उसके नैन भर आए हैं। बारिश की बूंदों से आने वाली आवाज से भ्रमित होकर उसे साजन के आने की आहट जान पड़ रही है। वो बहुत उदास है, ये वियोग की तीव्र पराकाष्ठा है और ऐसे में हाथों में फूल, चेहरे पर मुस्कान लिए साजन का आना मानो के अंधकार के बाद मिलन के प्रकाश यानी संयोग श्रृंगार की अनुभूति होने लगी है। सच्ची प्रतीक्षा प्रेम को परिपक्व और गाढ़ा करती है। ऐसे में प्रेमियों का मिलन अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है, जहां उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: तिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।

ब्लू लाइट के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब देखिए साथियों, बैठी है वो खिड़की पर अपने साजन को याद करते हुए और दुखी हो रही है। तो चलिए ये अगला गीत सुनवाते हैं दो बदन फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की रचना और तर्ज बनाई है रवि ने। शब्द पहचानिएगा आप।

0: तो देखिए कहानी बन रही है या नहीं। जैसे जब पहला गीत था लो आ गई उनकी याद, तो हमारी जो नायिका है यानी कि ज्योति, वो अपने दिल ही दिल में कह रही है कि उनकी याद तो आ गई पर वो नहीं आए। तो इसमें याद शब्द था, और इसी तरह ये जो गीत था नैना, इसमें शब्द नैन इन्हें लिया गया था कि अब पिया की याद में उस बिरह में वो रो रही है, आंसू बहा रही है। हमारे एक साथी लिखते हैं, जब हमारी सगाई हुई थी कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी होने वाली धर्म पत्नी अपनी बड़ी बहन के पास अजमेर से जयपुर गई हुई है। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मेरी जॉब के कारण मीटिंग भी जयपुर में थी, पर संस्कारों के कारण मिलने तो नहीं जा सकता था और मोबाइल भी उन दिनों नहीं थे। मीटिंग के बाद मैं ये गीत गुनगुनाया करता था और मन को तसल्ली देता था, खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हम दोनों एक ही शहर जयपुर में हैं पर मिल नहीं पा रहे। जी हाँ, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, और आपने अपनी बात साझा की, हमें अच्छा लगा। आइए अब अगला गीत सुनेंगे, मगर पहले ये संदेश।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: इस संदेश से पहले आपने जो गीत सुना वो था वो कौन थी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, और इसे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने, संगीत था मदन मोहन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हकीकत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, कैफी आजमी ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत। आप बताइएगा कहानी में कौन सा शब्द जुड़ता है।

आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था आहट। और एक साथ ही लिखते हैं, इबारत से उठाए शब्द से गीत और गीतों में छिपी इबारत की कहानी, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। गीत, हर गीत में कहानी होती है, चांद शब्द पर चांद फिर निकला, इस गीत में भी तो कहानी है। इंतजार शब्द वाले आपने चुने गीत के साथ दूसरे गीतों में भी तो कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई दूसरा गीत भी हो सकता है कि यहाँ पर जुड़ता हो। मगर उदाहरण के लिए आपको बताया जाए तो जैसे एक लाइन मैंने आप लोगों को असमंजस में डालने के लिए लिखी थी, वो आ गया और उसे पढ़ा भी इसी तरीके से था ताकि थोड़ा सा मस्ती मजाक किया जाए और आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए, थोड़ा असमंजस में डाला जाए। तो अब चूंकि अगर ये गीत लिया जाता तो जो हमारे प्रोग्राम का जो एक तारतम्यता चल रही है, क्योंकि गीत के भाव अलग हैं, गीत जोश भरा है, तो यहाँ वो फिट नहीं बैठता। तो बस उसी को बताया जा रहा है कि कुछ गीत ऐसे हो सकते हैं, मगर हमने उन गीतों को चुना है जो कहानी में फिट होते हैं। और ऐसे और भी गीत हो सकते हैं, हो सकता है आपने जो बताया वो भी गीत ऐसे ही हो। जैसे कि देखिए, एक साथी ने लिखा है, कहा जाता है कि जो बात होठ तक होठ नहीं कह पाते वो नैना कह देते हैं। किसी के प्रति स्नेह हो, बिछड़ने का दुख हो या मिलन की खुशी, हर भावना सबसे पहले आंखों में झलकती है। यही कारण है कि कवियों ने नैनों को हृदय का दर्पण कहा है। एक साथी ने लिखा है, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, ये वेदना उस नारी की है जो बेबस है, लाचार है परंतु चाहत से लबरेज है। तो आइए इसी तारतम्य में सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है पेंटर बाबू। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों ने, कमर जलालाबादी और मनोज कुमार ने इसे लिखा है, उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना का संगीत।

0: तो इस गीत का शब्द था बरसात, जिसमें नायिका यानी कि ज्योति अपने साजन को बुला रही है कि बरसात में आ, क्योंकि बरसात की जो बूंदे हैं उसी की आहट से तो उसे लगा था कि शायद ये उसी का हमदम है, लेकिन वो तो बरसात की बूंदे निकली। एक साथी ने लिखा है, आहट गजलों का राजा कहा जाता है और इस गीत में उन्होंने संगीत को बहुत ही धीमा और गंभीर रखा है। गीत की धुन में एक अजीब सी खामोशी और ठहराव है जो अकेलेपन के एहसास को और गाढ़ा करता है। वायलिन और गिटार का न्यूनतम उपयोग गीत के दर्द को उभरने का पूरा मौका देता है। हमारे कई साथियों ने इस गीत को लेकर अपनी टिप्पणियां लिखी हैं कि कई दिनों बाद उन्होंने गीत सुना और उन्हें पसंद आया। एक साथी लिखते हैं, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की इबारत में एक लाइन लिखी है, वो ये कि हवा चली तो दिलबर की याद आई। दिलबर की याद है या कोई एसी कूलर पंखा है कि जिसके आते ही हवा चलने का एहसास शुरू हो जाता है? चलिए, ये तो आपने लिखी मजाक की बात, मगर ऐसा है जनाब कि कुछ अनुभव जो होते हैं वो जब आप खुद अनुभव करते हैं तभी समझ आते हैं। चलिए फिलहाल सुनिए ये संदेश, फिर सुनवाएंगे आगे के गीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुँचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: ज्योति की कहानी एक मोड़ लेने वाली है। जैसा कि बात एक रात की थी, आसमान में खोया खोया चांद निकला था। खिड़की पर बैठी ज्योति ने अपने साजन का इंतजार किया, लेकिन इम्तिहा हो गई थी इंतजार की। फिर उनकी याद आई, हवा चली तो दिलबर की याद आई, तो गीत बजा, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। और इसी के साथ याद आई तो नैन भर आए, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। उसके बाद दिल ने कहा वो आ गया, पर उससे पहले तभी दूर से किसी के आने की आहट महसूस हुई, तो जरा सी आहट हुई तो लगा कि वो तुम ही हो। दिल ने कहा वो आ गया, पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि

जवानी दीवानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। अब ज्योति के सामने तो वो आ गया है, अब क्या होगा सुनिए इस गीत में। फिल्म का नाम कभी कभी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत।

चेहरा, ये शब्द इस गीत में था। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में फूल थे, आंखों में प्यार था और लबों पे इजहार था। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, आवाज मोहम्मद रफी की और सूरज फिल्म से ये गीत है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मेरा महबूब आया है। जी हाँ, तो जैसे हमारी कहानी चल रही है ज्योति और दीपक की, तो अब ज्योति का दीपक उसके सामने आ गया है। और इसी के साथ हमारी एक साथी ने लिखा है कि बहारों फूल बरसाओ, ज्योति का दीपक आया है, हवाओं रागिनी संभल कर गाना, क्योंकि ज्योति का दीपक आया है। और हाँ, यही तो था वो दीपक जिसका ज्योति को इंतजार था। इसी के साथ सुनवाते हैं आपको गायत्री महिमा, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, भरत व्यास के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

साथियों, कार्यक्रम का समय हो चला है। सुरीला सफर कार्यक्रम अब हमें ना चाहते हुए भी यहीं पर संपन्न करना होगा। इस गीत को फिर कभी पूरा सुनवाया जाएगा, फिलहाल आप इसका सिर्फ मुखड़ा सुन पाए हैं। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। दीजिए अपनी साथी नेहा अगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से आज्ञा। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में नेत्रदान की बातें होंगी। वैसे तो शरीर के सभी अंग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी आंखें कुछ अधिक विशेष मानी जा सकती है। ये हमें दृष्टि प्रदान करती हैं और दुनिया की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं। अगर दृष्टि नहीं है तो पूरी दुनिया हमारे लिए अंधकारमय हो जाती है। आंखों में दृष्टि होना ईश्वर का दिया हुआ एक अनुपम उपहार है, किंतु सभी लोगों के पास ये उपहार नहीं होता है। कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। कारण कई होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही दृष्टि बाधित होते हैं, कुछ लोगों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या कॉर्निया की खराबी की वजह से दृष्टि चली जाती है। इनमें से अधिकांश खराबियों का इलाज संभव है और ये संभव हो सकता है नेत्रदान के माध्यम से।

कहा जाता है कि नेत्रदान महादान होता है। नेत्रदान का महत्व अनमोल है। ये दान दृष्टिहीन व्यक्तियों को नई उम्मीद और नया जीवन देता है। ये उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अक्सर लोगों के मन में नेत्रदान को लेकर कई तरह के भ्रम होते हैं। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद नेत्रदान करने की प्रक्रिया में केवल 20 से 30 मिनट का समय लगता है। नेत्रदान में पूरी आंख भी नहीं निकाली जाती, बल्कि आंख के सामने का जो पारदर्शी हिस्सा होता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, वही दान किया जाता है। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। जागरूकता की कमी और सामाजिक बाधाओं के कारण नेत्रदान को अभी तक उतना महत्व नहीं मिल पाया है, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सभी नेत्रदान के महत्व को समझें।

नेत्रदान वास्तव में एक दिव्य कार्य है, किसी को प्रकाश का उपहार देकर और उन्हें रंगों से परिपूर्ण संसार देखने का अवसर देने से बढ़कर और क्या नेक कार्य हो सकता है। जो लोग मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, उन्हें अपनी इस इच्छा को घर वालों को बताना होगा। उसके बाद नेत्र बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा। इस तरह नेत्रदान की प्रक्रिया सरल हो जाती है। नेत्रदान केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है। जब हम नेत्रदान का संकल्प लेते हैं, तो यह कई लोगों के लिए आशा की किरण बन जाता है, जो लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नेत्रदान से दृष्टिबाधित लोगों को अंधकार से निकलकर प्रकाशमय दुनिया में कदम रखने की संभावना मिलती है। ये एक ऐसा अनूठा तरीका है जिससे हम एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जो हमारे जीवन काल के बाद भी कायम रहती है। ये परोपकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

0: अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग जी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
4: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
5: मैं फेडेक्स और दिल्ली GMR एयरपोर्ट को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
4: वी वांट टू क्रिएट ग्लोबल स्टैंडर्ड एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
0: एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,00,000,000 अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
6: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं घूंघट फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने, शकील बदायूनी की रचना है और तर्ज बनाई है रवि ने।

अब आपको सुनवाते हैं दुर्गा माता इस फिल्म का गीत एस जानकी की आवाज में। इसे लिखा है साज ने और इसका संगीत बनाया है जी के व्यंकटेश ने।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुझे बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: अभी आपने सुना चश्मे बहादुर फिल्म का गीत, शैलेंद्र आनंद कुमार और ए हरिहरन की आवाजें थी। इंदु जैन ने इसे लिखा था, राजकमल का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं खयाम का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम बारूद।

सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं, जमीन के तारे। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और एस मोइंदर का संगीत। और इस गीत के साथ ही नेहा अगरकर देसाई को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और आरती आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
2: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या हालचाल?
2: बिल्कुल ठीक।
1: मजे में है?
2: बिल्कुल मजे में है और बस एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इस मौसम का।
1: जैसे कि कभी कभी बारिश हो जाती है तो कभी हल्की हल्की धूप खिलने लगती है।
2: बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ धूप को हम मिस कर रहे हैं या कोई हम बारिश को मिस कर रहे हैं, कि दोनों आराम से चल रही है बस लगातार।
1: और विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो और भी आनंद है साथ में।
2: बिल्कुल। और हम बता दें अपने जो श्रोता मित्र हैं उनको कि आज हम कौन कौन से विषय लेकर आए हैं।
1: नेकी और पूछ पूछ।
2: तो हम आज लेकर आए हैं घर या पुराने सामान का गोदाम, जो अक्सर हमारा घर बन जाता है सोनाली।
1: यानी हर घर का यही हाल होता है ना?
2: बिल्कुल।
1: यानी हम थोड़े से ना लालची हो जाते हैं उस वक्त कि अरे ये प्लास्टिक की बोतल है, अरे काम में आ जाएगी।
2: बिल्कुल यही होता है सोनाली, सच बताऊं, अगर जब हम घर साफ कर रहे होते हैं ना, उस समय हम सोचते हैं कि चलो सफाई कर दे, जो बेकार के सामान है वो फेंक देंगे, लेकिन वो चीज जो होती है ना वो हो नहीं पाती है।
1: घर में का कोई एक सदस्य कह देता है रुको रुको फेंको मत,
2: काम का
1: इतना मत। पुराने टायर कह लीजिए, प्लास्टिक की थैलियां तो ऐसी होती है,
2: उन्हें तो हम खास तौर पे संभाल के रखते हैं।
1: हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं फेंकना मत, कुछ फेंकना होगा, कुछ देना होगा, कुछ करना होगा। या फिर जब हम रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो उसके जो प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं वो भी हम जमा करके रखते हैं कि कोई रिश्तेदार आएंगे तो उनको हमें कुछ भर के देना होगा, अगर हमें तो उसमें हम भर के देंगे। तो ऐसे ही हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, पर ये बहुत कह लीजिए कि गलत आदत है, क्योंकि हमारा घर जो है पुराने सामान का गोदाम बन जाता है। तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं ने भी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
2: जी हाँ, तो हम जानेंगे उनका अनुभव क्या है घर का, वो कितने लालची बनते हैं या नहीं बनते हमारी तरह,
1: या फिर वो अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और बिल्कुल तुरंत से सामान फेंक देते हैं।
2: बिल्कुल। और हम साथ में लेकर आए सखी विशेष के अंतर्गत हेमलता अन्नमलय, जो की सह संस्थापक है एमपीआर व्हीकल्स की, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं।
1: और हल्की फुल्की बातें इसमें पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी।
2: अरे ये तो सच में ऐसा विषय है ना
1: कि मजेदार।
2: हाँ, सखा हमारे बताएं, खास तौर पर हम सखाओं से अपने कहेंगे वो बताएं अपने अनुभव की वो कैसी, वो जब सब्जी लेकर आते हैं बाहर से या फल लेकर आते हैं तो घर में क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा उनकी डांट पड़ती है या फिर खुश हो जाते हैं?
1: कल ही तो भिंडी की सब्जी खाई थी, फिर आज भिंडी उठा के लेके आ गए, या फिर करेले सबने खाते तो भी 1 किलो करेले लेकर आ गए। इस तरह से होता है, हर घर का माहौल होता है। और फिर जी को यानी जो घर की जो होती है श्रीमती जी, उन्हें लगता है यार इन्हें फालतू ही कह दिया सब्जी तो लाने के लिए।
2: बिल्कुल। फल लाएंगे तो वो एकदम से मुरझाए हुए से है ना, जो खाते ना बने कि उनको रखो, उनको सहेज के रख भी नहीं सकते,
1: एक भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते।
2: बिल्कुल। तो इस तरीके के आप अपने अनुभव बताइए हमें, ताकि हम भी आपके साथ में वो हंसी को साझा कर सके।
1: वो चटपटे अनुभव होंगे, चुटीले अनुभव होंगे, तो हमें भी बहुत मजा आएगा, हम भी हंसेंगे उन अनुभवों का पढ़ के।
2: बिल्कुल। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की। तो आज हम जो मुहावरा लेकर आए हैं सोनाली, वो है घाव पर नमक छिड़कना।
1: बहुत अक्सर होता है बहुत लोगों में, यानी कि ऐसा होता है ना कि कभी किसी के बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ गया है तो जानबूझ के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ, पता होता है कि उसे थोड़े कम नंबर आए हैं या फिर अनुत्तीर्ण हो गया है। बहुत से लोगों की आदत होती है, पर ये बहुत गलत आदत है। तो आपके अनुभव भी साझा कीजिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है
2: या
1: क्या?
2: आपने तो कभी ऐसा नहीं किया किसी के साथ। जी। तो ये सब हम लेके विषयों पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं गीत से।
1: सुनते हैं गीत।

0: किसकी घर चोरी करने जा रही है चोरनी? हम वैसे घरों में चोरी नहीं करते, हम दिलों की चोरी करते हैं।
1: ये तो आपने बहुत सही बात कही है ना।
0: बिल्कुल। और तो आज हम अपनी एक बहुत ही अच्छी सखी, समझ लीजिए सखी विशेष की हम बात करने जा रहे हैं,
1: प्रेरणादायी।
0: बिल्कुल, जिन्होंने जो प्रेरणा का काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस तरीके से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो और हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि हमें इंतजार रहता है हर बार इस तरह की, जब आप प्रेरणादायी कहानी बताते हैं तो सचमुच हम महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी एक प्रेरक बात होती है।
0: बिल्कुल। और क्योंकि इस तरीके की जो जब हम लोगों के बारे में जानते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं, तो क्या रहता है ना कि हमें भी ये इस बात का एहसास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना।
1: तो आज हेमलता अन्नामलाई जिन जो संस्था सह संस्थापक है एम्पियर व्हीकल्स की, तो आज हम बात कर रहे हैं इनके बारे में जो कि भारत की उन महिला उद्यमियों में से गिनी जाती है जिन्होंने उस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कदम रखा जब भारत में ई मोबिलिटी अपने शुरुआती दौर में थी। और हेमलता का जन्म तमिलनाडु के सलेम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रोफेसर और माँ शिक्षिका थी।
0: बिल्कुल। उनका मानना है कि उनके बचपन का सबसे अच्छा पहलू वो स्वतंत्रता थी जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी। इसी स्वतंत्रता ने उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और हेमलता ने कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है।
1: और इसके बाद हेमलता ने ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IMIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। और हेमलता ने लगभग 27 वर्ष की उम्र में उद्यमिता की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में आने से पहले उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टूर और टिकटिंग और टैलेंट एक्विजिशन जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया।
0: बिल्कुल। और इस कारण उन्हें एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है, यानी उन्होंने बहुत सारे काम पहले करके देखे। ऐसा नहीं कि एकदम से उनको सफलता हाथ लग गई, बहुत सारे कामों को उन्होंने आजमाया, बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने झेला। और उनका कहना है कि उद्यमिता के क्षेत्र में हर नया दिन अपने साथ नई चुनौतियों और विजय को लेकर आता है, लेकिन मिलने वाला अनुभव अनमोल होता है। बाद में जब वो अपने पति के साथ जापान यात्रा पर गई, वहां एक सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों और आंतरिक दहन इंजन के भविष्य पर हुई चर्चा ने उन्हें काफी प्रभावित किया।
1: और उन्हें महसूस हुआ कि भारत में भी कम लागत वाले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बड़ी संभावना है। इसी बात ने उन्हें एम्पियर इलेक्ट्रिक की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना नहीं था, वे एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित करना चाहती थी जो सस्ती, उपयोगी और ग्रामीण के साथ छोटे शहरों के लोगों के लिए भी व्यवहारिक हो।
0: जी। और उनकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटर, तीन पहिया और विभिन्न उपयोगों के लिए लोड कैरियर जैसे वाहन विकसित किए। किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद उन्होंने विकसित किए थे। और कंपनी ने कचरा संग्रहण और अन्य उपयोगों के लिए इलेक्ट्रिक लोड कैरियर विकसित किए।
1: और उनकी उद्यमशीलता की एक खास विशेषता थी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल बड़े शहरों और उच्च आय वाले ग्राहकों तक सीमित नहीं माना। हेमलता का मानना था कि इलेक्ट्रिक वाहन भारत के लिए केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा बचत, रोजगार और सामाजिक विकास का माध्यम भी बन सकते हैं। जब हेमलता ने इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण शुरू किया तब भारत में ईवी उद्योग आज की तरह विकसित नहीं था।
0: बिल्कुल। उनके सामने कई चुनौतियां थीं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सीमित जागरूकता, उपभोक्ताओं का पारंपरिक पेट्रोल वाहनों पर भरोसा, बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की उपलब्धता, निर्माण क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करना, निवेश और पूंजी जुटाना, कुशल कर्मचारियों और टीम का निर्माण करना, ग्रामीण बाजार में नई तकनीकों स्वीकार करवाना।
1: और खास बात तो ये थी कि हेमलता का शुरुआती अनुभव ये था कि गैर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में था, इसके बावजूद उन्होंने निर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया और टीम के साथ तकनीकी ज्ञान विकसित किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं केवल सेवा क्षेत्रों में नहीं बल्कि निर्माण और तकनीकी उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: बिल्कुल। अनुसंधान और विकास प्रारंभ से ही हेमलता की कंपनी की रीढ़ रहा है। इसके अलावा उनकी टीम ने बैटरियों के जीवन को बढ़ाने में उपयोगी एक चिप का भी निर्माण किया है। इस स्टार्टअप का दावा है कि ये तमिलनाडु और केरल में जो दिव्यांगजन है उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने वाली पहली कंपनी है।
1: क्या बात है। और इसके अलावा एम्पियर ने कताई और कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए त्रिशूल नाम का एक विशेष वाहन भी तैयार किया है। उनकी कंपनी ने लगभग लगभग 40% महिलाएं काम करती हैं। उनकी कंपनी के 3 पेटेंट रजिस्टर हो चुके हैं और भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से जुड़े इंडियन वुमेन इन एसटीईएम प्रकाशन ने उन्हें एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर एंड मेंटर के रूप में प्रस्तुत किया गया।
0: इसमें उनके सामाजिक दृष्टिकोण और रोजगार सृजन पर भी जोर का भी उल्लेख है। वो ग्रीन कॉलर और एग्रीटेक सॉल्यूशंस की फाउंडर और वाइस चेयर के रूप में उल्लेखित हुई हैं। उनकी कहानी केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि तकनीक, पर्यावरण, रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी को एक साथ लेकर चलने वाली उद्यमिता का उदाहरण है।
1: और अब लेते हैं एक ब्रेक।

0: हमारा तो दिल यही लगता है.
1: सही बात है, क्योंकि नहीं इतनी अच्छी अच्छी कमेंट, इतनी अच्छी अच्छी से अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते हैं ना जब सारे श्रोता, तो बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के उनके साथ में एकदम उस चीज को साझा करते हुए ना.
0: आज तो आरती मैं सारे श्रोताओं के साथ सब्जी मंडी पहुंच गई हूँ.
1: हाँ सच में कितने अच्छे तरीके से सबने लिखा हुआ है ना.
0: अरे इतने मजेदार कमेंट्स है कि यहीं पे पढ़ते पढ़ते ही मैं हंसकर लोटपोट हो गई. एक हमारे साथी ने लिखा है कि भाई पुरुष और सब्जी की खरीदारी, हमारे घर सब्जी मेरी वाइफ ही खरीदती है, पर कई बार सब्जी लाना हो तो मुझे कॉल करके कहती है इतनी सब्जियां लेकर आना, लेकिन साथ में कौन सी सब्जी और कैसी क्या ये देख कर परख कर लेके आना, इसका पूरा ब्यौरा वर्णन भी करती है. जैसे कि बैंगन छोटे गोल और वजन में हल्का हो ऐसे लाना ताकि अंदर बीज ना हो, होल नहीं होना चाहिए वरना अंदर से सड़ा निकलेगा. टमाटर थोड़े कच्चे थोड़ा पका हो, नींबू पतली स्किन वाले लाना और वो जो भाव का है उतना नहीं देना, थोड़ा कम करवाना. साथ में कड़ी पत्ते की 3-4 डंडी मांगना, वो दे देते हैं. वो बात अलग है कि डर के मारे भाव कम नहीं करवाता और कड़ी पत्ते इसके पास नहीं थे ऐसा कहकर फ्री में नहीं लाता.
1: बहुत अच्छी बात. सब उन्होंने अच्छे से बता दिया सब कुछ. तो अब हम एक और अपने श्रोता का लेते हैं मैसेज. वो कहते हैं कि असली परीक्षा तब होती है जब पुरुष थैला लेकर घर लौटते हैं और घर की होम मिनिस्टर, पत्नी हो या माँ हो, उसका मुआयना करती हैं. सजा की शुरुआत कैसी होती है, ये भिंडी लाए हो या लकड़ी, इतनी कड़क है, ये टमाटर तो आधे गले हुए हैं, और बचाव में क्या तर्क मिलता है, पुरुष तुरंत डिफेंस मोड में आ जाते हैं. अरे वो तो सबसे अच्छी दुकान से लाया था, उसने ही चुन कर दिया है, जबकि सब्जी वाले ने उन्हें आसानी से पुराना स्टॉक थमा दिया होता है.
0: और एक साथ ही कहते हैं मुझे सब्जी लाना पसंद नहीं है, पर सब्जी कोई ला कर दे दे तो मैं अच्छी तरह साफ कर संभाल कर तरीके से रखना बहुत पसंद है. मेरे पति भी सब्जी की बहुत अच्छी खरीदारी करते हैं और बेटा भी करता है. अब मॉल संस्कृति में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है.
1: बिल्कुल सही बात कही. और एक और मैं श्रीतंश लिखते हैं कि पुरुषों के द्वारा साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर ही लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है पूरी सब्जियों को बिना देखे ले आते हैं, जिससे सब्जियां कभी कभार खराब भी निकलती हैं. उसी समय पुरुषों पर बड़ा ही गुस्सा आता है, और साथ ही साथ लगता है कि इसे सब्जी लाने से कहने से अच्छा है कि हम खुद ही सब्जी लेने के लिए चले जाएं. ऐसे मेरे घर में तो कितनी बार हुआ है, और ऐसा जब भी हुआ है मुझे कुछ और ही बनाना पड़ा है. यानी प्लानिंग उन्होंने कुछ बनाने की कर रखी थी लेकिन वो वाली सब्जी आई नहीं, तो कुछ और ही बनाना पड़ा हल्की फुल्की बातों में. पुरुष के द्वारा सब्जी और साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर लेते हैं, मतलब वो इन्होंने इसी चीज को लिखा है वापस.
0: एक साथी कहते हैं कि भाई पढ़ना चाह रही?
1: नहीं, आप पढ़िए.
0: एक साथी कहते हैं सब्जी खरीदने की जिम्मेदारी श्रीमान जी पर है और कभी कभी मुझे भी जाना पड़ता है, क्योंकि एक सब्जी जब बार बार लेकर आते हैं तब उनको बोलना पड़ता है अब इस सब्जी को कुछ दिन पहले ही तो खाया था, अगली बार साथ में चलना. वैसे सब्जी खरीदते हैं, पहले हमारे यहाँ खेत था तो सब्जी बिल्कुल ताजी मिलती थी और इसलिए श्रीमान जी को सब्जी का अनुभव अच्छा है, तो सब्जी अच्छी ही लाते हैं. मैं साथ में हुई तब भी हम पसंद करते हैं, यानी देखिए दोनों मिलके जाते हैं. ये कितनी अच्छी बात है ना कि सब्जी के बहाने दोनों क्वालिटी टाइम बिताते हैं.
1: बिल्कुल. और साथ ही हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पुरुषों के लिए सब्जी खरीदना किसी एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं है, वो पूरी ईमानदारी लॉजिक और वफादारी से सब्जी खरीदते हैं, भले ही घर आकर उन्हें थोड़ी डांट सुननी पड़े, लेकिन ये नोकझोंक की भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के जीवन को खुशनुमा और मजेदार बनाती है.
0: क्या बात है. और एक साथी भी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी, आपको जानकर खुशी होगी कि सखी सहेली प्रोग्राम के सखा यानी मुझे साग सब्जी की खरीदारी में माहिरता है, इसलिए घर की होम मिनिस्टर मेरी धर्मपत्नी ने ये डिपार्टमेंट मुझे ही दे रखा है. साग सब्जी फल अच्छी क्वालिटी के सही नाप तुल के सही बाल भाव और सब्जियों के अनुसार क्वांटिटी की खरीदारी करना, आलू प्याज टमाटर लहसुन और कुछ फल होलसेल रेट में ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी मंडी से लेकर आता हूँ, ताकि सब्जियों और फलों के साथ साथ बजट का भी ध्यान रखते हैं. खरीदना बच्चों को भी यही खरीदारी का तरीका सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ.
1: अच्छा. और साथ ही एक और श्रोता जी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी एक ऐसा विषय है जिस पर हर घर में एक अलग कॉमेडी शो चलता है. ये एक ऐसा घरेलू मिशन है जहां पुरुष अपनी समझदारी का इस्तेमाल तो पूरा करते हैं लेकिन नतीजा अक्सर उम्मीद से अलग होता है. कई बार धनिया और पुदीना में उन्हें अंतर समझ नहीं आता. लौकी और तोरई जैसी सब्जियां चुनते समय वो थोड़ा संकोच करते हैं. वो अक्सर दुकानदार पर ही भरोसा करके थैला भर लेते हैं.
0: एक ने लिखा है कि जेंट्स ये सब्जी मंगवाना तो उन्हें क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता कि कौन सी सब्जी कितनी मात्रा में लेना चाहिए. जो एक पाव चाहिए वो आधा किलो होगी और जो आधा किलो चाहिए वो एक पाव ही लेकर आती है. ये बिल्कुल होता है घर घर में कि घर में करेला बहुत कम लोग खाते हैं और जो कुछ पुरुष उन्हें मालूम नहीं होता एक किलो करेला उठा रहा है, या फिर भिंडी की सब्जी वो पाव भर लेके आ गए, तो भिंडी तो पाव भर में कुछ होना ही नहीं है। पर अब हमें गीत सुनना है।
1: बिल्कुल, गीत सुनना है।

0: तो आप किनका किन की बात लेने जा रही हो
1: हाँ,
0: सोनाली?
1: आपके हाथ में है, कुछ कमेंट्स पढ़ दीजिए।
0: तो हम एक श्रोता है जो लिखते हैं कि मैडम जी तो सब्जी खरीदने कभी बोल रहे हैं कि मैं तो सब्जी खरीदने कभी नहीं जाता हूँ, डर लगता है सब्जी थोड़ी भी गलत आ गई तो डांट पड़ेगी। मतलब ये बता रहे हैं कि इनको डांट के डर से ये कभी लेने जाते ही नहीं है सब्जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर के ठीक नीचे कुछ सब्जियों की दुकान लगी हुई है और मेरे इतनी उम्र का अनुभव मुझे ये कहता है कि हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी कोई भी घर की स्त्री हो कि पुरुष हो, सब लोग सब्जियां चुन चुन कर ही खरीदते हैं, लेकिन अंत में शाम के 7-8 बजे तक जब वो ठेले वाला अपने घर लौटता है तो उसके ठेले में एक भी सब्जी एक भी फल नहीं बचा होता है। तो कभी कभी मुझे इस बात से बहुत अचरज मालूम होता है कि मुझे अनूठी भी लगती है ये बात कि जब लोग चुन चुन कर फल सब्जियां घर ले जाते हैं तो आखिर में जो कुछ फल और सब्जी जिनका जिनको जिनका सभी ने अस्वीकार किया हो वो छूट जानी चाहिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है और सब कुछ बिक जाता है।
1: चलिए, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे एक साथी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी। भाई एक समय था जब पिताजी के साथ साग सब्जी खरीदने के लिए मंडी में जाया करता था। मंडी कुछ ही दूर पर थी और थोक मूल्य पर 2.5 किलो से कम सब्जी सट्टी में मिला ही नहीं करती थी, इसलिए हर तीसरे दिन जाना पड़ता था और वहीं से जो यात्रा मंडी की शुरुआत हुई वो आज तक कायम है। पिताजी तो नहीं रहे लेकिन उनकी सीख रह गई, जबकि फुटकर में बहुतेरे मोल भाव हुआ करते थे। एक साथी कहते हैं कि साग और सब्जी खरीदने का अनुभव तो बचपन से ही था कि 1974 में दूर संचार विभाग में नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं और मेरा सहकर्मी हम दोनों किराए के रूम में पार्टनर थे। उस रूम के साथ एक किचन भी हमें उसी रेंट में साथ में मिला था। उसका उपयोग करते हुए हम खुद रसोई बनाने लगे थे। हमारी ड्यूटी रोटेशनल हुआ करती थी, एक ड्यूटी सुबह की होती थी तो दूसरे की शाम की ड्यूटी एडजस्ट कर लिया करते थे। सुबह सब्जी मंडी से साग और सब्जी खरीद लेकर आते, शाम की ड्यूटी वाला दोपहर के और सुबह की ड्यूटी वाला शाम की रसोई बना लेता था। कितनी अच्छी बात है,
1: बिल्कुल मिलजुल कर। और साथ ही एक और श्रोता जो कहते हैं कि पुरुषों द्वारा साग सब्जी की खरीदारी करना एक मजेदार और अनोखा अनुभव होता है जिसमें उनके स्वभाव की सादगी और उलझने दोनों साफ दिखती हैं। पुरुष घर से सब्जी मिली सब्जी की लिस्ट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो पर्ची पर लिखी हर चीज को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। लिस्ट के बाहर की कोई नई सब्जी वो खुद से नहीं चुनते। मनपसंद चीज न मिलने पर वो तुरंत घर में फोन करते हैं कि भाई ये चीज नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं।
0: ये अच्छा ऑप्शन है ना,
1: बिल्कुल
0: डांट खाने से अच्छा ऑप्शन है,
1: पहले बात कर लीजिए आप।
0: एक साथी कहते कि पुरुष और साग सब्जी खरीदना, हमारे घर में पुरुष वर्ग ही ज्यादातर सब्जी खरीद के लाते हैं और पूरे मार्केट घूम घूम के सब्जी खरीदना, अच्छी सब्जी लाना पुरुष वर्ग बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। हम महिलाएं भी करते हैं पर मेरा अपना मानना है कि पुरुष वर्ग अच्छी खरीदारी करते हैं, मैं ऊब जाती हूँ।
1: अच्छा, बिल्कुल। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी साग सब्जी खरीदना घर की महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है। आज पुरुष भी पूरी उत्साह से सब्जी मंडी या बाजार में साग सब्जी खरीदते हुए नजर आ जाते हैं। पुरुषों की सब्जी खरीदारी का अपना ही अंदाज होता है। कोई दुकानदार से भाव ताव करने में माहिर होते हैं तो कोई बिना मोल भाव किए बस अच्छी सब्जी लेकर घर लौट आते हैं। कुछ लोग मोबाइल पर घर से आई लंबी सूची को देखकर सब्जी खरीदते हैं तो कुछ पुरुष अपने हिसाब से बढ़िया सब्जी खरीद लाते हैं।
0: तो चलो अच्छा है कि भाई कुछ भी हो पर सब्जी खरीद कर लाना है और उसे साफ धो के घर में पकाना है, तभी तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ मनोरंजन के लिए गीत भी जरूरी है।

0: हैरानी साहिबा बताइए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है हाँ। कि जब मैं सब्जी लेकर आता हूँ तो मेरी पत्नी बहुत क्रिटिसाइज करती है, तो रानी है ना वो।
0: इसीलिए
1: और वैसे भी कहा है ना कि निंदक नियरे राखी है, तो भाई ऐसे क्रिटिसाइज होते होते होते बहुत अच्छी सब्जी लेकर आने लगेंगे आप,
0: बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। और अब हम अपने अगले विषय पे आ जाएं, जो है घर को हम पुराने सामानों का गोदाम ना बनाए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, घर या पुराने सामानों का गोदाम विषय तो बहुत अच्छा है। अक्सर हम घर में इतनी ज्यादा पुराने सामान जमा कर लेते हैं लेकिन हमारे घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई पुराना सामान आपकी जरूरत का नहीं है तो उसे किसी जरूरतमंद को देना बिल्कुल सही है। आप चाहे तो उसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या उससे कोई नया सामान बना सकते हैं जो आपके काम आए। इससे भी घर पुराने सामानों का गोदाम नहीं बनेगा, घर में भी पुराने सामान जमा नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका सामान भी उपयोग में आ जाएगा। इसलिए अगर सामान ज्यादा पुराना हो गया है तो आपके काम का नहीं है तो आप इसे किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या रिसाइकलिंग करवा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जी लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम इस विषय पर हमें आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है। यह विषय हमें समय समय पर अपने घर की सफाई करते रहना चाहिए। जो सामान यानी पिछले साल से एक साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे दान कर देना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। घर को यादों और सुकून का मंदिर होना चाहिए, ना कि पुराने सामान का गोदाम।
1: क्या बात है। एक साथी कहते, इंटीरियर और सजावट के जानकारों के अनुसार जरूरत से ज्यादा सामान फ्लैट या घर को सुंदर दिखने के बजाय एक खिचड़ी या कबाड़ खाने जैसा बना देता है। ज्यादा सामान होने पर घर के कोने कोने के नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे धूल गंदगी और कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। ये तो बात बहुत सही लिखी है उन्होंने।
0: और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि घर में अनावश्यक और टूटा फूटा पुराना सामान जमा करने से हवा और रोशनी का आवागमन रुकता है, जिससे घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अनुपयोगी चीजों को घर से जो चीजें होती है वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, इससे मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। ये साइंटिफिक बात भी है, क्योंकि जब आप बहुत सारा सामान रखेंगे जमा करके तो धूल मिट्टी भी जमा होगी, कोनों में जाले भी लग सकते हैं, तो उससे क्या हुआ पूरा
1: कॉकरोच हो जाएंगे,
0: कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और बुरा असर पड़ता है।
1: जी, एक साथ ही लिखते हैं, घर को साफ सुथरा रखने के बजाय उसे पुराने सामान का गोदाम बना लेना मानसिक और वातावरणीय दोनों दृष्टियों से नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो वस्तुएं पिछले एक साल से इस्तेमाल में नहीं आई है उन्हें या तो बेच दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। नियमित डिक्लॉटर घर को व्यवस्थित रखने के लिए महीने में एक बार बेकार पड़े सामान की छटनी जरूर।

0: करें।
1: बिल्कुल। और हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम ये विषय में बहुत कुछ दिखाता है, और साथ ही हमारा घर धीरे धीरे कब सामान के गोदाम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। छोटी सी कोई चीज हाथ लगती है तो मन कहता है इसे फेंकना नहीं, कभी तो काम आएगी। जाने कितनी चीजें इसी उम्मीद में संभाल कर रख ली जाती हैं लेकिन वो कभी आता ही नहीं। सामान बढ़ता जाता है, अलमारियां भरती जाती हैं और घर गोदाम बन जाता है। सामान संभाल कर रखना बुरी बात नहीं है लेकिन हर चीज को बचा कर रखना भी समझदारी नहीं है। जो चीज वर्षों से काम में नहीं आई है उसे विदा करने में संकोच ना करें, शायद वो किसी और के लिए उपयोगी हो जाए और घर घर बन जाए।
0: एक साथी लिखते हैं कि घर घर होता है, गोदाम गोदाम होता है, लेकिन बहुत सारा बेकार सामान घर में इकट्ठा होने लगे तो घर को गोदाम बनने में जरा भी देर नहीं लगती। पहले के जमाने में उपयोग में नहीं ले जाने वाली कुछ वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता था, भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके, और घर भी बड़ा हुआ करता था, उसमें स्टोरेज करने की पर्याप्त जगह मिल जाती थी। आज उससे सब कुछ उल्टा है, न घर में इतनी बड़ी जगह है, न पुराने सामान का उपयोग है। आज यूज एंड थ्रो का जमाना है, जमाने के साथ चलने में ही समझदारी है। हमने देखी उन घरों की महकती खुशबू, बेकार की चीजें इकट्ठा कर इसे गोदाम का नाम ना दो।
1: वाह, इन्होंने तो गाना ही बना दिया। और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि बरसात के दिनों में घर की दीवारों, छतों के किनारों पर ढेर सारे जंगली पौधे भी उगाते हैं, इनमें भी जहरीले जो जीव जंतु रहते हैं वो रहते हैं। अगर आपको लगे कि पौधे फालतू हैं तो उन्हें वहां से हटा दें, उखाड़ कर फेंक दें। खासकर पीपल बरगद के पेड़ ये बड़े होकर दीवारों को भी कमजोर करते हैं। अगर आपके पास जगह है तो इसे उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। फेंकने के बजाय आप किसी दूसरी जगह पर लगा दीजिए जहां पे इसको ज्यादा जगह मिल सके उगने के
0: जी।
1: लिए।
0: एक साथी लिखते हैं कि अभी हमारे घर में यही चल रहा है, सब हटाओ, और हमने बहुत हटाया है, हम हर साल हटाते हैं, फिर कुछ जमा हो जाता है। पर एक बात हमारी अच्छी है, जब कुछ नया लेते हैं तो पुराना किसी जरूरतमंद को दे देते हैं ताकि उसका भी काम चल सके। जैसे हमने नई बेडशीट ली तो अब नहीं बिछा रहे, वो हमने अपनी मेट को दे दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही
1: बिल्कुल,
0: करते रहना चाहिए कि घर को अपने गोदाम बनने से हमें खुद ही बचाना है। और अब क्या करना है
1: एक
0: आरती,
1: गीत सुनना है।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो अब हम अपने एक श्रोता है, उनका कमेंट ले लेते हैं, जो लिखते हैं कि सभी पुरानी चीजों को स्टोर करना तो ठीक नहीं है, पर मैंने अपने जो दादी जी हैं उनके टाइम का जो तांबे का, जो पीतल के जो सामान होते थे, उनको हमने अच्छे से रख लिया है। तो इस तरीके से मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है, बताते हैं कि इस तरह की चीजें उनको रखनी है। ये इस तरीके की चीजें तो आप रख सकते हैं।
1: ये ना बहुत
0: हाँ
1: उससे जुड़ी भावनाएं भी होती है
0: हाँ
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जो
1: रखना
0: बर्तन
1: भी
0: होते हैं पुराने
1: चाहिए।
0: दिए
1: और
0: उनके।
1: अब तो ऐसा हो रहा है ना चलन, कि अब पुराने जमाने की जो चीजें है ना उसका ही महत्व बढ़ गया है, कि पहले हम तांबे के बर्तन में पानी पीते थे,
0: हाँ
1: बीच के समय में हम बहुत ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करने लगे थे, अभी अभी तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे, पर अब फिर से लोग उसी की ओर बढ़ रहे हैं, फिर से तांबे पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे
0: बिल्कुल, ये तो
1: हैं।
0: चीजें अच्छी हैं, इनको आप मत हटाइए, लेकिन बस आपको जो पुरानी जो इस तरीके की चीजें
1: खासकर
0: हैं,
1: प्लास्टिक की
0: प्लास्टिक
1: थैलियां,
0: प्लास्टिक
1: प्लास्टिक की
0: बिल्कुल भी आप
1: बोतलें,
0: बिल्कुल मत रखवाइए।
1: रद्दी रद्दी के जो पेपर हैं, उसके
0: हाँ
1: बाद में जो खराब टायर होते हैं उसे
0: हाँ
1: भी हम सहेज कर रखते हैं। होता यूं है कि बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता है, छत का पानी भर गया और फिर डेंगू मलेरिया होने लगता है।
0: बिल्कुल
1: तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि भाई हमें सफाई भी इस तरह से करें कि हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारा।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि कबाड़ वाली जगह पर धूल और नमी जमती है, जिससे कई तरह के जीव जंतु, सांप बिच्छू भी वहां पर डेरा जमा लेते हैं। लकड़ी के सामान में नमी के चलते फफूंद लग जाती है और कई तरह के बैक्टीरिया उसमें पनपने लगते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। बचपन से हम देखते हैं जैसी बारिश खत्म होगी, लोग अपने अपने घरों की सफाई करने लगते हैं और दिवाली के पहले पुराने सामानों को कबाड़ी को बेच दिया जाता है और जरूरतमंद को दे दिया जाता है। तो मतलब आप पुराने कबाड़ को मत रखिए, उसको निकाल
1: यानी
0: दीजिए।
1: दिवाली तक इंतजार मत कीजिए, हर 2 महीने में भी साफ किया तो बहुत अच्छा होगा, इससे हमारा ही अच्छा होगा।
0: बिल्कुल, घर भी साफ रहता है थोड़ा, जब देखेंगे ना बहुत भरा भरा जो घर रहता है ना, वहां पे थोड़ा सा तनाव सा बना रहता है। आप खुद देखिए, अगर जितना हल्कापन रहेगा घर में, उतना ही ज्यादा आपको अच्छे मानसिक शांति और सुकून रहेगा।
1: और ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा अपना समय, बहुत ज्यादा एनर्जी उन सब कामों में लगाते हैं, कि भी सामान बढ़ा लिया, फिर उसको पोछना है, उसको धोना है, उसे साफ करना है, उसे सुखाना है, उसी में लगे रहते हैं। और इसके कारण हम अपने कुछ क्रिएटिव काम, जैसे हमें पढ़ाई करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ अच्छी बातें सीखने का हमें मौका ही नहीं मिलता, और हम इन्हीं सभी कामों में
0: बिल्कुल
1: उलझे
0: उन्हीं
1: रहते
0: पे
1: हैं।
0: लगे रह जाते हैं।
1: तो हमें इन सभी बातों को
0: बिल्कुल
1: ध्यान देना
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, और घाव पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए।
1: हाँ, ये तो बात बिल्कुल
0: ये
1: सही
0: बार बार
1: कही आपने,
0: कहेंगे क्योंकि
1: कि
0: हम
1: जब
0: लोग
1: हम
0: ये
1: खाली रहते हैं ना तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं, और हम ऐसे करते हैं कि कोई भी हो, किसी के भी अगर जीवन में कुछ दुख है तो हमें उसे बार बार कुरेदना नहीं है, उस दुख की उन्हें याद नहीं दिलाना है, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। एक मुहावरा है, घाव पर नमक छिड़कना, ये मुहावरा पूरी तरह से व्यावहारिक जीवन के अनुभव पर आधारित है। पुराने समय में और आज भी जाने अनजाने में अगर किसी कटे हुए स्थान पर नमक लग जाए तो इससे पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। इसी भौतिक सत्य को इंसानी व्यवहार और भावनाओं पर लागू किया गया है। जब कोई व्यक्ति पहले से ही किसी मानसिक या सामाजिक कष्ट में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऐसे ताने मारे, ऐसी बातें करे जिससे उसका दुख बढ़ जाए, तो उसे घाव पर नमक छिड़कना कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: ये बात हमारे साथी ने लिख कर भेजी है,
0: अच्छा, तो ये मतलब कितने अच्छे तरीके से उसको उन्होंने बताया है ना,
1: समझाया
0: वर्णन किया
1: जी।
0: है। तो हमारे एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि मुहावरा घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ है किसी के दुखी या परेशान व्यक्ति को और अधिक कष्ट देना या उसकी तकलीफ को और बढ़ा देना, दुखी व्यक्ति को और अधिक परेशान करना, किसी पुरानी या ताजा पीड़ा को अपनी बातों या हरकतों से और उसको ज्यादा गहरा कर देना। ये मुहावरा वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है। अगर शरीर के यही जो आपने जैसे तरह से बताया, तो वही बताने हुई बात को किस तरह से मानसिक पीड़ा होती है इस तरह से करने थे, तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए इस तरीके की बातों करने से, कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना वैसे भी अच्छा नहीं होता ना। कहते हैं मुस्कुराहटों को बांटना चाहिए,
1: बिल्कुल सही
0: दुखों को
1: कहा।
0: नहीं, दुखों को, ये किसी को पीड़ा देने से अच्छा है किसी को आप मुस्कुराहट दीजिए।
1: हाँ, तो अब क्या करना है,
0: एक गीत
1: गीत
0: सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं, गीत

0: हाँ तो सोनाली, क्या आप बताने जा रही थी मुहावरों के
1: आप
0: बारे में?
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना भाई बहुत ही प्रचलित मुहावरों में से एक है, जिसके फलस्वरूप इस मुहावरे को इस प्रकार भी कहा जाता है कि जले पर नमक छिड़कना। इसका मतलब है किसी के दुख से दुखी नहीं होकर उसके दुख रूपी घाव पर शब्द बाण जैसे नमक का मौका देखते ही छिड़काव करते हुए अपने सहानुभूति को नहीं प्रकट करना ही है। क्या बात है।
0: और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़क यानी मुहावरा हमें ये सीख देता है कि संकट के समय लोगों को सांत्वना और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी के दुख को कम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कड़वे वचनों या व्यवहार से उसे और अधिक बढ़ाना भी नहीं चाहिए। ये मुहावरा भाषा को गंभीर, सटीक और मारक बनाने की क्षमता रखता है।
1: एक साथी कहते हैं कि दोनों बातें किसी दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख या कष्ट देती है। नौकरी छूट गई हो इसके बाद अगर मकान मालिक किराया लेने आए तो ये घाव पर नमक छिड़कने जैसी ही बात
0: बिल्कुल
1: होगी। और ये बहुत सारे साथियों ने इसी तरह की बातें लिखी है। कहते हैं कि कटे पर नमक छिड़कना और घाव पर नमक छिड़कना हिंदी का मुहावरा आम बोलचाल की भाषा में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। इन सभी का अर्थ एक है, किसी दुख या परेशान व्यक्ति के दुख को और अधिक बढ़ा देना। जब कोई इंसान पहले से ही किसी मुसीबत,
0: जी
1: दर्द या सदमे में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उस पूरी स्थिति में ताने मारकर, आलोचना करके, बुरी बात बोलकर उसे तकलीफ को और बढ़ा दे तो इसे ये मुहावरा कहा जाता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: अगर कोई दुखी है तो उसके उसके ऊपर आप अपने शब्द बाण चला के उसे दुखी और मत
1: बल्कि
0: करिए।
1: मरहम का काम करे अपने
0: बिल्कुल
1: शब्दों के माध्यम से। और
0: जी,
1: अब गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो आरती, हम श्रोताओं को, सखियों को धन्यवाद कहेंगे कि उनके इतने सुंदर कमेंट्स के कारण इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर सी समृद्धि आ गई और
1: बिल्कुल.
0: बहुत मजा आया उनके कमेंट्स पढ़ के. और आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा.
1: बिल्कुल, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए आप.
0: और
1: और
0: विविध भारती सुनते रहे. और हमें दीजिए इजाजत. आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार.
1: नमस्कार.

0: बीते हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत ममता सिंह ने की थी और बातें अधूरी रह गई थी, तो चलिए इन बातों को आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत के इस दूसरे और आखिरी भाग में।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है, वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ है उनकी शरीके हयात

0: प्रतिभा शर्मा जी। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: नमस्कार, नमस्कार।
1: शुक्रिया।
0: श्याम बेनेगल साहब के साथ प्रतिभा जी आपने कुछ फिल्में की हैं, हरी भरी।
2: यशपाल ने भी की है। हाँ, मैंने हरी भरी की थी।
0: तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, श्याम बाबू के साथ काम का अपना अनुभव साझा कीजिए।
2: मुझे याद है जब उन्होंने मुझे बुलाया था पहले, मतलब वो रोल बिल्कुल छोटा सा रोल था लेकिन उन्होंने मुझे उस तरह से समझाया और उस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि जैसे कि वो मेन रोल है फिल्म का।
0: जी जी जी
2: ये उनकी खासियत थी। तो हर एक एक्टर को ना वो इस तरह से ही करते थे कि जैसे कि उस एक्टर का ये रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना मेन रोल है इस फिल्म का कि मतलब बस इस एक्टर के बिना ये फिल्म नहीं हो सकती।
0: जी बिल्कुल। एक पाठशाला के रूप में जाने जाते हैं श्याम बाबू।
2: यस।
0: तो आपको क्या कुछ मिला उनसे, क्या पाया सीखने के लिए कुछ भी?
2: मतलब बहुत सहज इंसान थे, बहुत ही सहज। अपना ऐसे नहीं कि मतलब एक डायरेक्टर का वो कोई चोला पहन के वो काम करते थे, बहुत ही आम लोगों में बैठना उठना और बहुत सहज थे वो।
0: जी
2: और वो ऐसे सहज लोगों के साथ काम करते करते आप भी खुद इतने सहज हो जाते हो।
0: बिल्कुल। अब बात सहजता की चली है और हम चलते हैं असहजता की ओर। यशपाल जी ने बचपन की बहुत सारी यादें साझा की
2: जी,
0: तो आप बताइए अपना बचपन, आपका बचपन कैसा था?
2: हाँ ऐसे ही हमारा वही आम की गुठलियां वगैरह, हम भी खेलते थे वो सारी चीजें गलियों में जब कीचड़ से सन जाते थे सारा, और वो जो एक सलाई होती थी उसको ऐसे गाड़ना और उस
0: मिट्टी में
2: वो वाला खेल तो
0: अच्छा।
2: हम खूब खेले। खो खो, संगीत कुर्सी, ये सारे खेल हम खेलते थे।
0: तो घर पे डांट नहीं पड़ती थी क्योंकि उस समय तो
2: अरे मार
0: की
2: पड़ती
0: मनाही
2: थी,
0: बहुत
2: डांट
0: होती थी।
2: किधर पड़ती थी
0: तो बताइए ना वो एक आध किस्सा, किसी दिन दौड़ के खेल के आई हो और मार पड़ी हो।
2: स्कूल के लिए मुझे ना साइकिल सीखनी थी, कुछ पैसे देके साइकिल सीखनी पड़ती है। तो वो साइकिल मैं सीख रही थी तो मेरे पापा ने ना देख लिया मुझे, तो मैं गिर गई साइकिल से और सुबह तक मेरा पैर इतना
0: सूजा था।
2: तो मैं मतलब सुबह मैं जब उठी तो पापा ने देखा मेरा पैर इतना बड़ा सूजा हुआ है, तो उन्होंने बोला क्या हुआ इतना बड़ा क्यों सूज गया पैर? तो मैंने कहा वो मैं गिर गई थी वहां पे, वो पत्थर था, कुछ ऐसे झूठ बोल दिया। तो वो ना सीधे उस सूजे हुए पैर पे खड़े हो गए और मुझे बोल रहे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मतलब इतना मतलब कि झूठ नहीं बोलना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: इस तरह का
0: नैतिकता बहुत
2: सिखाई जाती
0: थी।
1: माँ बाप दोनों टीचर थे।
0: अच्छा,
2: मेरे
0: कौन से गांव की बात है
2: ये? जलगांव के पास एक गांव है कासोदा, वहाँ गांव की बात है।
0: तो अपने माता पिता से फिर वो नैतिकता की शिक्षा लेकर आई, अपने बच्चों को सिखाया, कितनी मुश्किल पड़ी?
2: मोबाइल की जनरेशन है ये, यहाँ नहीं सिखाई जा सकती नैतिकता की बातें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही मेरी उनको, मतलब जैसे मैं स्पिरिचुअल चीजों में थी तो मैं उनको लेके जाना वहां पे मेडिटेशन, ये वो सारी चीजें थोड़ा मैंने दिया वो सब कुछ उनको।
0: जी तो कौन सा गाना यहाँ पर आना चाहिए?
2: गुलजार साहब की जो वो फिल्म है मेरा कुछ सामान,
0: तो सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद फिर यशपाल जी की ओर चलते हैं।
1: मेरा कुछ सामान गाने में एक लाइन है, 116 चांद की रातें वो लौटा दो, तो गुलजार साहब के चार नाटक मैंने किए हैं लिखे हुए, तो वो हमारे साथ रहते थे इसलिए बहुत करीब रहे। तो लखनऊ में शो था उर्दू एकेडमी में, तो उसके बाद डिस्कशन थी, तो एक शरारती था, तो किसी ने पूछा गुलजार साहब से कि सर वो जो गाना है इजाजत में मेरा कुछ सामान, उसमें एक लाइन है 116 चांद की रातें, सर वो 116 ही क्यों है? तो गुलजार साहब बोले कि बेटा वो 117 थी, मुझसे गलती हो गई। भाई इतना ठहाका हॉल के अंदर और इतने हंसी, क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है बाप रे गुलजार साहब का।
0: ऊपर से जितने गंभीर दिखते हैं, हमने सुना है गुलजार साहब काफी ह्यूमरस बातें भी करते हैं।
2: नहीं नहीं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, कमाल
0: जी। आपके बहुत सारे किरदार में, कहीं बेबसी है, कहीं एक इंस्पेक्टर है बेबस है, कहीं लाचारी भी है, और कहीं नकारात्मक किरदार निभाया है, और कहीं कॉमेडी है, तो ये जो किरदार की विविधता है, इन सारे किरदार की विविधता को कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे आप भीतर तक ले जाते हैं, कोई राज की बात बताइए, हमारे बहुत सारे श्रोता सीख रहे होंगे। जो
1: देखिए कई बार ना एक रिजिडिटी आ जाती है ना एक्टर के अंदर अगर, और वो बाहर की चीजें ग्रहण ना कर पाए तो फिर वो मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, हर रोल में एक जैसा दिखता है
0: जी।
1: तो रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, आपको एक पात्र की तरह, घड़ा एक पात्र है जैसे, खाली रहना बहुत जरूरी है, सरेंडर करना, मतलब आपके कोई करेक्टर आए तो आप अपने आप को यशपाल को सरेंडर कर दो थोड़ी देर, जितना हो सकता है कोशिश करना चाहिए, वैसे तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो क्योंकि यशपाल के बॉडी है, आवाज है, हाव भाव है, इतने साल हो गए, उसकी कुछ आदतें हैं, वो तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन स्क्रिप्ट बता देती है कि आपको क्या करना है
0: जी।
1: तो इसलिए जो कहानी है और स्क्रिप्ट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी कैमरामैन के लिए, ना कि कोई स्टार, क्योंकि स्टार को देख करके कई लोग डर जाते हैं या अपने आप के आइडियाज चेंज कर देते हैं ना, वो बहुत गलत है।
0: बिल्कुल
1: स्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ स्टारों की फिल्में बर्बाद होती हुई देखी हैं इसी चक्कर में कि स्टारों के प्रभाव में डायरेक्टर और कैमरामैन आ जाते हैं, तो उस चक्कर में वो फिल्म बर्बाद हो जाती है
0: जी। क्या
1: अगर वो बिल्कुल अपनी कहानी पे रहें और अपना करें, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं ऐसे, चाहे कितना ही बड़ा स्टार आ जाए, मेरी कहानी ये है तो यही रहेगी, तो वो सफल भी है, वो अच्छा काम भी करते हैं, और ज्यादातर लोग तो ये विविधताएं जो है करेक्टर्स की, ये स्क्रिप्ट देती है, आपको स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल जाता है कि ये किस ओर जा रही है, ये कॉमेडी की तरफ जा रही है, ये वेलकम टू द जंगल टाइप है, या ये गंगा जल टाइप है, या लगान टाइप है, या इसका जॉनर क्या है
0: जी।
1: तो वो सारा पता चल जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आदमी फिर उसी दिशा में काम करता है
0: जी,
1: बाकी दिशाएं सब छोड़ भूल जाता है
0: जी। वेलकम टू द जंगल का जिक्र किया, तो ये इसके बारे में जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मल्टी स्टारर फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव और हाँ जैकी श्रॉफ और फरीदा जलाल, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी और रवीना टंडन और मुकेश तिवारी और कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और दलेर मेहंदी, और बाप रे बहुत लोग हैं इसमें।
2: राजपाल
0: राकेश देशमुख हैं, आपकी कैसी
1: हमारी भूमिका हमें भी नहीं पता अभी तक, वो देखने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि सच में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी बनी है, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि ये फिल्म कैसी बनी है, क्योंकि इसमें ना कोई कहानी ऐसा कुछ हमको नहीं सुनाया गया, बस हमको खड़े हो जाओ, यहाँ पे ये करना है, ये मूव करना है, ये बोलना है, हमने बोल दिया, बस खत्म।
0: अच्छा,
1: और इसमें ऐसा कुछ करेक्टराइजेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस धमाका है और धमाकेदार फिल्म है, और अक्षय कुमार ने फिर से एक बार वर्सटाइलिटी की है एक्टिंग, बड़ी वैरायटी है उसकी एक्टिंग में, और बड़ा अच्छा मुझे सुनील शेट्टी के साथ भी, इनके साथ एक नया अच्छा काम करने को मिला, काफी देर तक परेश रावल जी के साथ, बड़े सीनियर एक्टर हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये 26 जून को रिलीज है, अहमद खान डायरेक्टर हैं इसके, और वेलकम दो तो आ चुकी है, एक और दो, तो ये वेलकम थ्री है मान लो, वेलकम टू द जंगल
0: जी। अब आपकी उन फिल्मों का हम जिक्र करते हैं जो काफी चर्चित हैं और जिसमें आपने खास तरह की भूमिका निभाई है, वो है अब तक छप्पन, जिसमें आप इम्तियाज सिद्दीकी सब इंस्पेक्टर
2: मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है।
0: क्या बात है, प्रतिभा जी की फेवरेट फिल्म। और फिल्म धूप है, इंस्पेक्टर राम सिंह मलिक बने हैं। आजा नचले इंस्पेक्टर साहेब, टशन में एसीपी कुलदीप सिंह बने हैं आप। वेल्डन अब्बा में पुलिस कांस्टेबल बने हैं। और इतनी बार पुलिस की,
1: ये आपने सारी पुलिस पुलिस वाली उठा ली फिल्म।
0: हाँ बिल्कुल, तो हम वही आ रहे हैं। हम ये नहीं जानना चाहते कि पुलिस की भूमिका निभाई तो कैसे मिली, ये नहीं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस की भूमिका हर फिल्मों में क्यों चुना गया, एक बात। दूसरी बात कि इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी?
1: तो सारी फिल्मों में तो नहीं, वेल्डन अब्बा धूप वगैरह में तो ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी क्योंकि इट वॉज वेरी इजी फॉर मी। लेकिन हाँ, अब तक 56 और एक कालकूट है वेब सीरीज, उसमें जो विजय वर्मा के साथ मैं पुलिस में हूँ, वो पूरी पुलिस की ही कहानी है एक्चुअली। तो इन फिल्मों में मुझे बहुत काम किया मैंने, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ी। और क्योंकि ये करेक्टराइजेशन था, उसमें नाना पाटेकर थे सामने, तो आप अपने आप को बहुत बुढ़ा चढ़ा करके ओवर करोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए उसमें मैंने बहुत सब्ज्यू करके किया। कोशिश की मैंने पूरी फिल्म के अंदर कि मैं बहुत लाउड ना हूं और जेन्युइन रहूं जितना हूं, और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ।

0: तो नाना पाटेकर ने भी बुद्ध फिल्म देख के मुझे बहुत पीठ थपथपाई, गले लगाया और बोला कि तुम जान हो फिल्म की, रियली तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं किसी और से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये रोल कि कोई कैसा करेगा, बड़ा डर रहा था मैं, बट यू हैव डन ब्रिलियंट जॉब। तो उन्होंने किया, फिर बाद में हमने अपहरण भी किया, तो इसमें क्या तैयारी करनी पड़ी मुझे बाकी।
1: तो राम गोपाल वर्मा के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, उनसे जुड़ी हुई कोई किस्सा बताइए, बहुत सारे किस्से हैं आपके पास।
0: बहुत ज़्यादा किस्से नहीं हैं अब तक। छप्पन में एक मेरी डेथ का सीन था, जो वो करने वाले थे डायरेक्ट, तो शमित अमीन को बोला कि मैं इसको कुछ करता हूँ देखता हूँ, तो हमने कुछ जंगलों में जा करके वो सीन शूट किया था बरसात में, और वो स्पॉन्टेनियसली हुआ था, लिखा हुआ नहीं था वो सीन, वो बस ऐसे ही बोले कि चलो करते हैं देखते हैं क्या होता है, और ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि यशपाल यू विल बिकम ए वेरी बिग स्टार आफ्टर दिस फिल्म, देन विल यू डू माई फिल्म ऑल्सो अगेन, मतलब कुछ ऐसा बोला, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब
1: स्टाइल भी
0: मेरे साथ दोबारा काम करोगे। मैं बोला सर काहे टांग खिंचाई कर रहे हैं, अभी अभी जुम्मा जुम्मा तो मैं खड़ा हुआ हूँ एज एन एक्टर, बस हो जाए फिल्म हिट, हो जाए फिल्म अच्छी बन जाए, मैं तो इसी में खुश हूँ। तो एक बार मुझे हैदराबाद में मिले, फिर तो एक प्रोड्यूसर के साथ बैठे थे, तो बोले यशपाल, मैंने कहा हाँ जी, अरे अरे, मैं कहा कहाँ,
1: जी
0: बुलाया उन्होंने, एक फाइव स्टार कोई होटल था उसी में बैठे थे हम, तो वो नीचे बैठे थे तो मैं क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने बुलाया एक प्रोड्यूसर, मीट हिम, ही इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री,
1: क्या
0: तेलुगु
1: बात है।
0: इंडस्ट्री। मैंने कहा नमस्कार जी नमस्कार, ही हैज डन अब तक छप्पन विद मी, यू शुड सी दैट फिल्म, व्हाट अ
1: क्या बात है,
0: परफॉर्मेंस ही हैज डन,
1: क्या बात है।
0: मतलब इस तरीके से मिले, आई थिंक इन दिस फिल्म यू विल बी देयर, ऐसे बोल के चले गए, बाद में कभी बुलाया नहीं।
1: क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनाए।
0: है तुमको तूने कहा था तुझसे नहीं रूठेंगे, क्या कौन सा गाना है, बिगनिंग क्या है इसकी,
2: क्या

0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया प्रतिभा जी आपने। ये बताइए क्या हुआ तेरा वादा, कभी कोई वादा तोड़ा है यशपाल जी ने आपका? बहुत
1: इन्होंने मेरा
0: सारे
1: बहुत बार दिल तोड़ा
0: बताइए ना कुछ अंदर की बातें, क्योंकि हमारे श्रोता उत्सुक है सुनने के लिए।
1: हाँ, 6 6 महीने शूटिंग चलती थी और मैं इधर अकेली रहती थी बहुत
2: अगर ये
1: समय
2: बोल रही
1: तक।
2: है कि बहुत बार दिल तोड़ा है, तो फिर वो गाना हो जाए, एक दिल के टुकड़े
1: बहुत
2: हजार
1: ज्यादा पुराना
2: हुए,
1: गाना है
2: कोई
1: वो
2: यहाँ गिरा कोई। अरे लेकिन
1: यहाँ
2: गाना कमाल है
1: गिरा।
2: ये।
0: नहीं,
1: हाँ
0: अच्छा चलिए ये बताइए हमें, यशपाल जी की कौन सी बात आपको नापसंद है?
1: वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है पर्टिकुलर कि मुझे ये ना पसंद है। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो तो उसको सिरे से लेके
0: वो
1: पैर
0: तो
1: तक पसंद
0: पसंद तो
1: करते
0: शादी के
1: हो।
0: पहले होता है, शादी के कुछ साल तक, उसके बाद तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं हर पति
1: नहीं,
0: पत्नी
1: वो
0: में।
1: लड़ाई वड़ाई तो हमारी आज भी चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, मैं सोच नहीं सकती
2: अब हम क्या
1: उनके
2: उससे ऊपर उठ चुके हैं।
0: बारे
2: पहले शुरू में प्यार रहा, फिर खूब लड़ाइयां हुई, खूब लड़ाइयां हुई, फिर लड़ाई कर करके जब थक गए, फिर दोबारा से प्यार हो गया। तो अभी हम वो वाली स्थिति में चल रहे हैं।
0: अच्छा एक आध लड़ाई वाला किस्सा बता दीजिए, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि इतने झगड़े के बाद फिर वापस प्यार होता है।
2: अरे हम लड़ते हैं तो सुबह उठते गुड मॉर्निंग बोलते हैं, भूल चुके होते हैं कल क्या हुआ था।
0: अच्छा बहुत
2: कभी ऐसा
0: बढ़िया।
2: हुआ ही नहीं कि हम उसको लेकर के जिंदगी भर गांठ बांध करके चलें, नहीं तो जी नहीं पाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाते हैं ऐसे। सब लोगों के लिए है ये बात, हमारे लिए ही नहीं। भूलना बहुत जरूरी है लड़ाइयों को, गलतियों
1: रात
2: को।
1: गई बात गई।
2: हाँ गई बात गई,
0: बिल्कुल
2: क्योंकि आपको जिंदगी बितानी है, बच्चे हैं अभी, हम कितनी जो उम्र बची है इसमें भी अब लड़ झगड़ के बिता देंगे तो फिर क्या बचेगा।
0: बिल्कुल, और ये समय होता है एक दूसरे का हाथ थाम के चलने
2: बिल्कुल
0: का।
2: बहुत जरूरी है।
0: अब जरा प्रतिभा जी बताइए कौन सी बात नहीं पसंद करती हैं?
1: ये मुझे ये पसंद नहीं है कि ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते
0: बिल्कुल, और कोई बात, घर घरेलू चीजें जैसे कोई चीज रखने की, इधर उधर
1: नहीं
0: रख
1: नहीं
0: देना।
1: ये बहुत तरीके से रखते हैं हर चीज
0: अच्छा
1: घर में, उल्टा ये ज्यादा तरीके से रखते हैं, मैं जबकि इतर बितर करके रखती हूँ
0: अच्छा
1: चीजों
0: क्या
1: को।
0: बात है, बहुत
1: मैंने
0: बढ़िया।
1: इनसे बहुत कुछ सीखा है वैसे।
0: और आप बताइए यशपाल जी, प्रतिभा जी की कौन सी बात आपको पसंद नहीं है?
2: इसकी यही चीज पसंद नहीं है कि खाना खा के बर्तन वहीं पड़े रहते हैं, कपड़े चेंज किए तो कपड़े वहीं फेंक दिए। कुछ चीजें मतलब मान लो एक कोई फोटो है, वो कैंची से काटे हैं तो उसे कटे हुए कतरने वहीं बिस्तर पे पड़ी हैं, कैंची वहीं पड़ी है। फिर लाइट बुझाना नहीं, बिल बढ़ता रहे, कोई लाइट जलती रहे, उसको भूल जाती है लाइट बंद करना, ये वाली चीजें जो है ना ये बहुत बेकार
0: सच बोल
2: बात
0: रहे
2: है।
0: प्रतिभा जी चलिए मान
1: हाँ
0: लेते
1: करती
0: हैं।
1: हूँ मैं
0: बताइए
1: ऐसे।
0: अब एक दूसरे का पसंदीदा रंग कौन सा है? आप बताइए यशपाल जी को कौन सा रंग पसंद है?
1: यशपाल तुमको कौन सा रंग पसंद
0: नहीं नहीं आपको अपने से
2: जो
0: बताना
2: कुर्ता, जो
1: है
2: कुर्ता हमेशा पहनता हूं।
1: जबकि मेरा भी पसंद का कलर ब्लू ही है
0: क्या बात है, आप बताइए प्रतिभा जी की पसंद
2: नहीं
0: का रंग।
2: इसका जो चॉकलेट कलर का जो एक सूट था NSD में, वो जो उसमें लगती थी ना, वो आज तक किसी भी ड्रेस में नहीं लग पाई है।
0: ओहो क्या बात
2: वो ड्रेस
0: है
2: में सोच रहा हूँ, और वो यूनिक मतलब जैसे एंटीक पीस नहीं होते जो
0: जी
2: राजस्थान के या
0: हाँ
2: किसी फोक देसी टाइप की, जो इंडियन ड्रेस, वो ड्रेस इसके ऊपर इतनी फबती थी, और इसके बाल भी ऐसे काले काले मोटे मोटे लंबे लंबे, सारी मतलब दुनिया रश्क करती थी,
0: क्या बात
2: और इसकी जो बिंदी लगाती थी सांप जैसी ऐसे घुमा फिरा करके काली सी, अभी भी लगी है देखो। अच्छा वो
0: क्या
2: टीवी
0: बात
2: नहीं है, रेडियो है
0: है
2: कि अरे नहीं रेडियो में कैसे दिखेगे, पर
0: हाँ।
2: लगा रखी है, मैं बता रहा हूँ।
0: श्रोता सुन रहे हैं वो
2: हाँ
0: इमेजिन
2: हाँ
0: कर
2: हाँ हाँ हा, तो
0: रहे
2: वो वाली ड्रेस जो उसके, मेरा फेवरेट कलर तो जो इस पे
0: हैं।
2: फबता है वही है कोका कोला कलर का।
0: इतनी सारी आपकी तारीफ खूबियां बता दी यशपाल जी ने, अभी आप सोच के चुन के बताइए क्या खूबी है यशपाल जी के, कोई खास याद हो NSD वाले दिन और या फिर अपनी जिंदगी में।
1: यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: भूल
1: वैसे
0: जाते हैं
1: मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है कि मैं फॉरगिव कर पाती हूँ, मतलब
0: मतलब आप गांठ रख लेती हैं मन में।
1: हाँ थोड़ी।

0: इसी में तो रख लेती हूँ।
1: अमूमन पुरुषों में ये बात आती है कि महिला जब कहीं समानांतर चल रही है तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी ग्रो करती है आगे जाती है, तो पुरुषों में ये बात आती है यशपाल जी
2: अरे
1: हिमाचल
2: बेकार
1: से।
2: में बदनाम है पुरुष, काहे को ऐसे है। मैंने तो जितनी जगह भी देखा है, हर जगह बेचारे पुरुष भीगी बिल्ली की तरह ही रहते हैं हमेशा। और हमेशा पत्नी को सम्मान ही देते रहते हैं, हमेशा मतलब महिलाओं का सम्मान ही करते हैं, बोलते भी हैं करते भी हैं, फिर भी बेचारे बदनाम है। बताइए,
1: देखिए यहाँ
2: सारी
1: दुल्हन
2: उंगलियां एक जैसे नहीं होती, सारी महिलाएं एक जैसे नहीं होती, वैसे सारे पुरुष भी एक जैसे नहीं होते। हमने ये भ्रांतियां बना ली हैं, तो इसीलिए हमको इंसान को पहचानना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप जाति भेद भाव धर्म इन चीजों को लेकर के हम किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और
1: जी
2: हम तो कलाकार हैं, तो कलाकारी ही सबसे बड़ा धर्म है हमारा।
1: बिल्कुल सही बात है। अब वापस फिल्मों की ओर आते हैं यशपाल जी, बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, और अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी सब फिल्मों में से कोई 5 पसंदीदा फिल्मों का नाम लीजिए, तो क्या याद कर पाएंगे, बताएंगे 5 या 6
2: हाँ हाँ
1: फिल्में,
2: बिल्कुल, क्यों नहीं।
1: और उससे जुड़ी कोई खास बात, कोई खास याद साझा करना?
2: अब तक 56 इज माई फेवरेट फिल्म, और अपहरण, गंगा जल, लगान, और एक है वेलकम टू सज्जनपुर श्याम
1: श्याम
2: बेनेगल
1: जी,
2: की।
1: जी,
2: ये ऑलमोस्ट मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी फिल्में हैं। और दास कैपिटल प्रतिभा के साथ हमने की थी, और मेरी एक फिल्म है दादा लक्ष्मी,
1: जी,
2: जो कि आई थिंक इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें हर पहलू, परफॉर्मेंस हो, डायरेक्शन हो, म्यूजिक हो, गाने हो, लिरिक्स हो, कैमरा हो, सारी
0: उसमें मैंने भी
2: बहुत।
0: छोटा सा
2: उसमें
0: रोल किया
2: प्रतिभा ने
1: था।
2: भी एक
1: जी
2: रोल किया,
1: जी
2: बहुत ही
1: जी
2: बढ़िया हरियाणवी बोली है इसने, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है। और 107 अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में उसको,
1: जी,
2: कांस में भी मैंने बताया था, नेशनल अवार्ड भी मिला है उसको, तो
1: बिल्कुल,
2: बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म है वो। उसका पार्ट 2 बनाना है अभी, बाकी है अभी,
1: जी
2: पार्ट 1 तो बन गया है, 2.5 घंटे का है,
1: जी
2: 5 साल लगे बनाने में,
1: क्या बात है,
2: लेकिन
1: बहुत
2: बनाई,
1: बढ़िया
2: अच्छी बनाई। अल्टीमेटली आई एम हैप्पी कि जो सोचा था वो हुआ।
1: जी। आपने डायरेक्ट भी की है
2: जी, डायरेक्ट भी मैंने की है, को
1: और
2: प्रोड्यूस भी की है।
1: तो ये विचार कहाँ से आया डायरेक्शन का? तो
0: मुझसे आया
1: जी
2: था ये तो खैर है ही, इंस्पिरेशन हमेशा से, लेकिन पर्टिकुलरली इस फिल्म का जो आइडिया है वो, एक फिल्म देखी थी मुझे, नट सम्राट, नाना पाटेकर की,
1: जी
2: उसमें कहानी थी, एक्टर की कहानी थी, जो कि बहुत ही सच्चा होता है, और वो अपने बच्चों को
0: बहुत
2: सब कुछ दे
0: फेमस प्ले
2: देता
0: है
2: है।
0: मराठी का नट सम्राट।
2: हाँ, तो उस फिल्म को देख के मुझे लगा कि एक हरियाणवी एक्टर की अगर स्टोरी की जाए, और बाय चांस उसी वक्त मेरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, और राजीव भाटिया ने डायरेक्ट की थी, मेरा क्लासमेट था। फिर सतरंगी, जो मैंने मेन रोल किया था, उसको भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला,
1: जी,
2: नेशनल अवार्ड, संदीप शर्मा ने डायरेक्ट की थी। इसको सोच करके मुझे लगा कि हरियाणवी फिल्मों का एक दौर चलना चाहिए, क्योंकि अभी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था उस वक्त। मैंने सोचा हरियाणवी में बनाते हैं कोई फिल्म, तो हमने फिर पता किया कि कोई एक्टर है, तो राजू मान जी ने बताया हमें कि एक एक्टर हैं जो लीजेंड एक्टर हैं हरियाणा के, उनको हरियाणा का शेक्सपियर बोला जाता है,
1: जी,
2: पंडित लक्ष्मी चंद। तो फिर मैंने उस पे काम शुरू कर दिया, रिसर्च की, 17 किताबें पढ़ी मैंने, और उनका बहुत बड़ा नाम था, उनका बहुत बड़ी कविताएं थी, उनके कमाल के वो इंसान थे, कमाल की कहानी थी। तो फिर हमने उस पे फिल्म बनाना शुरू कर दी। बाद में पता लगा कि इनको 2 घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल है, कम से कम भी 6-7 घंटा चाहिए, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत है,
1: जी
2: गाने भी बहुत हैं। तो उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया,
1: जी
2: और मैंने फिर इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाने की सोची, और एक पार्ट में जहां तक मैं नहीं हूं, मेरे आने से पहले, और एक पार्ट मेरे आने के बाद,
1: जी
2: जहां मैं नहीं हूं वो हो चुकी है, और अभी मैं जिसमें आऊंगा मेन, उसमें अभी आना है,
1: तो ये दूसरा भाग अब बनेगा
2: दूसरा भाग बनेगा अभी, थोड़ा सा
1: जी।
2: बरेली के बच्चन से थोड़ा सा फ्री हो जाऊं।
1: जी, तो शुभकामनाएं बरेली के बच्चन के लिए, तो शुभकामनाएं हमने दी है, और इस फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं। तो अब बताइए यहाँ कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को?
0: बा

0: राउडी राठौड़ में एक आपने किरदार निभाया है, उस किरदार के बारे में बताइए।
1: राउडी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था और मजबूर इंस्पेक्टर था, जिसकी वाइफ को ये उठा के ले जाते हैं गुंडे लोग और विलेन लोग, और जिसमें मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वहाँ की पुलिस शहर की सब सारा सिस्टम बेकार हुआ पड़ा है। तो ये बात जब नया नया इंस्पेक्टर आता है अक्षय कुमार, उसको पता चलती है, तो फिर वो जाकर के सबको मारता पीटता है और वही वाइफ को छुड़ा के लाता है और फिर वो सिस्टम को चेंज करता है धीरे धीरे। इस टाइप की कहानी है कुछ ये, तो बड़ा अच्छा लगा, मज़ेदार था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी, और बहुत ही कमाल की लोकेशन थी। अगर आप देखें उसमें पहाड़, बड़े बड़े पत्थर और ये लोकेशन बहुत कमाल की थी, इसलिए वो वहाँ पे शूटिंग की गई थी, तो वहाँ गए थे शूट करने। अच्छा रहा।
0: यशपाल जी, फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताइए, आप लोग फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं।
1: जी हाँ, प्रतिभा उसकी फाउंडर मेंबर है, मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ, और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नाम से होता है, अभी 7वां साल चल रहा है, और हम हर साल करते हैं, पूरी दुनिया से फिल्में मंगवाते हैं, फिल्म फ्रीवे के जरिए या ऐसे डायरेक्ट भी, तो उसमें शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में और गाने, वीडियो सॉन्ग्स और एआई फिल्में भी इस बार ऐड किया है
0: जी।
1: तो इस तरीके स्टूडेंट फिल्म, मोबाइल फिल्म, ये सारे कैटेगरी होती हैं, तो पूरी दुनिया से फिल्में आती हैं, तकरीबन 300 के आसपास फिल्में आ जाती हैं टोटल, जिसको हम देख करके सेलेक्ट करते हैं उसमें से तकरीबन 100 के आसपास, फिर उस वो 100 फिल्में हम नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टरों को देते हैं, जूरी फिल्म मेकर्स को, जूरी को, कि आप फीचर फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप शॉर्ट फिल्म्स का रिजल्ट दीजिए, आप लॉन्ग शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्री का, इस तरीके से हम देते हैं और वो फिर रिजल्ट देते हैं, फिर जो वो रिजल्ट देते हैं वो हम अनाउंस करते हैं और 3 दिन का फेस्टिवल रखते हैं, 2 या 3 दिन का, अब 3 दिन का हो गया है, तो वेदा कुंभा में बॉम्बे में हर दिसंबर को हर साल तो होता है फेस्टिवल, और उसमें फिर हम सम्मानित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं, और कुछ सेलिब्रिटी भी बुलाते हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा आ गए क्लास के लिए, रघुवीर यादव आ गए, और अनुभव सिन्हा की फिल्म दिखाई थी इस बार ओपनिंग फिल्म, तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं, देखते हैं।
0: जी जी, बात अनुभव जी की, चलिए अनुभव जी से कोई आपकी मित्रता या उनसे मुलाकात।

0: फैन रहा हूं, प्रतिभा भी, हम दोनों उनकी फिल्मों के, क्योंकि उनकी सारी फिल्में किसी न किसी मुद्दे पे होती हैं
1: जी जी
0: और बड़ा अच्छा वो करते हैं, तो इसीलिए
1: समाज को।
0: प्रतिभा ने ही सलाह दी थी कि अनुभव सिन्हा को बुलाओ ना, उनकी फिल्म दिखाते हैं। तो फिर थप्पड़ फिल्म दिखाई थी हमने, और ओपनिंग फिल्म, और
1: बेहतरीन फिल्म थी थप्पड़।
0: जी जी तो उसमें फिर हम मिले थे।
1: जी प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है आप दोनों के माध्यम से और आप भी फाउंडर हैं, तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए। यशपाल जी ने अपना अनुभव साझा किया और आप बताइए इसके बारे में, आपका क्या अनुभव होता है कि एक बड़े फलक पर ये काम कर रही हैं, और अमूमन ये काम महिलाओं के खाते में कम ही आता है,
2: हाँ,
1: तो कैसा एक्सपीरियंस होता है इतनी सारी फिल्मों को अपने पास बुलाना और एक एक मुखिया की तरह करना?
2: एक्चुअली ये मैं और मेरा एडिटर, हमारी फिल्म आमो आंखा एक से, ये मैंने काफ़ी साल लगे थे मुझे इस फिल्म को बनाने में, तो वो हम लेकर फिल्म फेस्टिवल में गए थे एक बार नासिक में, तो इतना मिसमैनेजमेंट वहाँ था, और दादा साहब फाल्के के नाम से वो फेस्टिवल करते हैं, और इतना मिसमैनेजमेंट और ये था, तो फिर मुझे वो मेरा एडिटर था उस, प्रतिभा जी आप तो ऐसे 10 फिल्म फेस्टिवल कर सकते हो,
1: क्या बात है।
2: तो मैंने कहा चलो फिर करते हैं, है ना, तो वो बात आई गई हो गई थी। और फिर मैं एक फिल्म लिख रही थी, उसके बीच में मुझे मेरी एक असिस्टेंट थी, वो मुझे कह रही थी कि आप क्यों नहीं करते कोई फिल्म फेस्टिवल, आपको करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, ये बात मुझे काफी 2-4 लोग अभी तक कह गए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इशारा है, तो मैंने सोचा कि फिर चलते हैं, करते हैं। शुरू किया हमने, और टाइटल भी बिल्कुल आसानी से मिल गया हमें, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जबकि मुझे लग रहा था नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुके होंगे या कहीं तो ये होगा टाइटल रजिस्टर्ड, पर अनुमन ऐसा हो गया कि हमें बिल्कुल आसानी से मिल गया, और बहुत खुश हुए हम लोग कि चलो ये टाइटल का ही तो मेन खेल होता है ना फिल्म फेस्टिवल में। तो वो सब कुछ मतलब हम कर रहे थे, फिल्म फ्री वे से भी फिल्में आ रही थी, और पहले ईयर में हमें 250 फिल्में मिली
1: जी जी,
2: और जबकि वो कोरोना का पीरियड था,
0: लॉकडाउन था
1: जी,
2: लॉकडाउन था और कहीं आप कर नहीं सकते थे, ऑनलाइन हमने फिल्म फेस्टिवल किया था, पहले 2 साल हमने ऑनलाइन किया, तो भी हमें इतना ह्यूज रिस्पॉन्स ऑनलाइन में भी रहा,
1: और अब वेदा कुनवा में
2: ऑफ कोर्स अब तो फिजिकली करते ही
1: तो बहुत बढ़िया है, और जो भी हमें लगता है श्रोता सुन रहे होंगे वो इसमें शामिल होना चाहेंगे तो शामिल भी हो सकते हैं,
2: बिल्कुल होना ही चाहिए।
1: और प्रतिभा जी, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन आपने किया है, जिसमें यशपाल जी भी,
2: यशपाल जी मेरे प्रोड्यूसर है,
1: अच्छा वो प्रोड्यूसर है, तो उनको डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला आपको?
2: नहीं नहीं कभी नहीं मिला, हालांकि वो चाहते है, कभी मुझे बोलने भी थे, तो मुझे सोच के कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते ना
1: कोई रोल दे दो हमें भी ऐसा बोला तो उस शॉर्ट फिल्म के निर्देशन का अनुभव आप साझा कीजिए, कुछ फिल्मों का नाम बताइए।
2: एक पिज्जा एमएमएस है मेरी फिल्म, एक नई अम्मी है
1: जी,
2: एक खुली खिड़की है, फिर आमो आंखा एक से है, है ना, ये सारी फिल्में YouTube पे अवेलेबल है, लेकिन पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो,
1: जी,
2: नो
1: जी।
2: एडिटिंग, एक ही कट है वो 16 मिनट का।
1: अच्छा क्या बात है।
2: हाँ, तो वो फिल्म का हम लोग एटलीस्ट हफ्ता भर रिहर्सल किए थे, और उसके बाद वो एक कट करने के लिए एटलीस्ट पूरा दिन लग गया था फाइनल कट आने तक।
1: अब एक गाना सुनते हैं फिर थोड़ी सी बातें और करते हैं
2: जी।
1: एक गाना बताइए, कौन सा सुनवाए?
2: कुहू कुहू बोले कोयलिया।

0: थोड़ी देर पहले जब आपकी निजी जिंदगी की बातें हो रही थी तो यशपाल जी ने आपकी बड़ी खासियत बताई, खूबसूरती को बयां किया। आप भी कुछ ऐसा वर्णन कीजिए ना, बताइए यशपाल जी की कौन सी बात आपको बहुत पसंद आती है और उनकी क्या चीज देखकर आप फिदा हुई थी?
1: उन्होंने मैं तो, इनकी तो एक्टिंग ही देख के बहुत फिदा हुई थी।
0: और बाकी
1: मुझे ऐसा लगता था कि बस ये मतलब एक शानदार एक्टर का, एक कमाल का एक बंदा है और कमाल का पर्सोना है।
0: उनकी एक्टिंग वाली कौन सी फिल्में हैं जो आपको हर वक्त याद आती हैं और जिसका
1: लगान तो ऑफ कोर्स मेरी बहुत ज्यादा
0: और कुछ फिल्मों के नाम
1: है, और अब तक छप्पन और मुंबई से आया मेरा दोस्त, इनकी बहुत ही मतलब ये बिल्कुल इसमें प्रिंस जैसे लगते हैं बिल्कुल।
0: क्या बात है।
1: हाँ
0: और कभी उनकी आलोचना भी करती हैं उनकी एक्टिंग की कि ये एक्टिंग
1: हाँ,
0: ठीक
1: मैं
0: नहीं?
1: बोलती हूँ उनको कि ये थोड़ा सा वही वही वही वही तुम कर रहे हो।
0: तो उनकी जब आलोचना करती हैं तो क्या रिएक्शन होता है यशपाल जी का?
1: बिकॉज हम लोग क्लासमेट्स हैं और बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सीरियसली लेते हो मेरी चीजों को, ऐसे नहीं लेते कि हाँ इसको क्या समझ में आता है टाइप्स।
0: जी जी और आप महाराष्ट्र की मराठी भाषी, वो हरियाणा के हिसार के, वो हरियाणवी, तो आपने हरियाणवी सीखी, उन्होंने मराठी सीखा, एक दूसरे को भाषा आदान
1: हाँ
0: प्रदान
1: मुझे
0: हुआ?
1: तो हरियाणवी तो सारी समझ में आती है, इन्होंने लेकिन एक ही वाक्य सीखा मराठी का,
0: कौन सा?
1: माझे भाई को मराठिया है।
0: दो चार वाक्य सुना देती है, सिखा देती है ना जो कुछ।
2: देखो मैं ना मराठी समझ जाता हूँ अब।
0: हाँ।
2: मैंने समझने की कोशिश बहुत की क्योंकि मैं ससुराल में जाता था, सब मराठी बोलते थे। इसके दोस्त लोग आते थे कोई मराठी, सब मराठी दोस्त बोलते थे मराठी। फिर इसकी सहेलियां आती थी मराठी, वो मराठी बोलते थे। इसका मतलब जो भी आता था मराठी बोलते थे। तो मैंने कहा मुझे समझ में कहीं मेरी चुगली उगली तो नहीं कर दें। तो हुआ क्या कि ये NSD में जब थे तो मुझे ना बड़े प्यार से बोलती थी, माझा शेमड़ा, माझा गाढ़ो, माझा पता नहीं क्या क्या बोलती थी। तो मैंने एक दिन पूछ लिया अभय कुलकर्णी से कि भैया ये शेमड़ा और गाढ़ो का मतलब क्या होता है? बोले गाढ़ो का मतलब गधा, शेमड़ा का मतलब जिसका नाक बहता रहता है। मैं बोला वो तेरा भला हो जाए। अब ना मैं एक्सप्रेशन पे नहीं जाऊंगा, मीनिंग पे जाऊंगा। एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे थे, माझा शेमड़ा और माझा गाढ़ा, और मतलब मीनिंग कुछ और। फिर मैंने सोचा मराठी सीखना बहुत जरूरी है, बोलो चाहे ना बोलो, समझना बहुत जरूरी है।
0: तो ये जो मराठी में आपको बोला करती थी, आपने कभी हरियाणवी में इनके लिए कुछ नहीं बोला ऐसे?
1: मैं तो सब समझती हूँ।
2: मेरे को वैसे वाला प्यार आता नहीं है, बाबू सोना। हाँ बस बेटा जरूर बोलता हूँ, नहीं बेटा ऐसे नहीं। ऐसे ही प्यार से बस, बाकी मुझे कुछ क्या बोलते तरीके, हाँ एक नॉन रोमांटिक बिल्कुल, ना मनाना ना तारीफ करने की मुझे अकल है कुछ। मैं बिल्कुल अखड़ आदमी हूँ बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता बेचारी ये किसे सहेली, बड़ी सालों बाद इसको भी समझ में आया कि ये है ही ऐसा। हाँ नहीं तो पहले तो उन्हीं बातों पे लड़ाई की, कोई बात बोल दी, कोई मजाक कर लिया मान लो तो बुरा मान गए। और मैं सोचू यार मैंने तो जोक मारा था, ये तो नाराजी हो गई। तो इसीलिए जोक भी थोड़ा सोच समझ के मारना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा ठीक हुआ है। अब हम एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, अपना समझते हैं कि यार हर चीज में हर बात पे नाक चढ़ा के बोलना जरूरी नहीं है, रिएक्ट करना हर चीज को जरूरी नहीं है। जिंदगी में मैंने तो देख लिया अगर पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है तो डाउट होता है।
0: बिल्कुल सही, ये आपने बहुत सही बात कही।
2: और पति पत्नी में पति को बहुत जरूरी है कि खुद की गलती ना भी हो, सामने वाले की भी गलती हो, तो अब तुम खुद बोलो कि नहीं मेरी गलती है, तब रिश्ते बिल्कुल ठीक रहते हैं। मैंने वो सीख लिया है। तो इसलिए जब ये भी गलती करती है तो मैं अपना नहीं मेरी गलती है मैं बोलता हूँ, तो हम सुधर रहे हैं बिल्कुल
0: सही रहते हैं। ऐसा
2: कभी कुछ होता नहीं
0: कि आपकी गलती हो और ये मानते हैं कि हमारी गलती
1: है। नहीं नहीं इतने भी शरीफ नहीं है।
0: ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लोग एक साथ आए और ये दोनों की पोल खुल रही है, नहीं तो पता चलता कि अच्छी अच्छी बातें यशपाल जी बता जाते हैं और फिर हम भ्रम में रह जाते। तो बहरहाल यहाँ पर एक ऐसा गाना होना चाहिए आप दोनों साथ में गाए एक दूसरे के लिए, कभी विवाह के बाद या विवाह से पहले एक दूसरे के लिए गुनगुनाया होगा जाहिर सी बात है।
2: हाँ।
0: तो
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल

0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सचमुच बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं, हमारा तो दिल कर रहा है कि और बातें करती जाऊं, लेकिन अब कुछ चीजें छोटी छोटी जानना चाह रहे हैं कि गाना एक साथ गाते हैं फिल्मों में, आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आप हरियाणा के, ये महाराष्ट्र जलगांव के गाँव के पास, खान पान का कल्चर तो काफी थोड़ा सा अलग है। हरियाणा में बहुत सारा दूध, मट्ठा, दही, तो वो खान पान का मेल जरा बताइए, दोनों लोग बताइए अपने अपने स्वाद और अपने पसंद।
1: मैं तो बोलता रहता हूँ भाई ये बना दो, जो मेरा जब देसी कढ़ी चावल हो गया या वहाँ का राजमा चावल हो गया या आलू गोभी की सब्जी होगी पंजाबी स्टाइल में। लेकिन अभी मैंने क्या है कि अभी मैं मराठी खाना भी सारा, क्योंकि दिल्ली में ही इसने जब रेपेट्री में थे तो मराठी खाना बनाती थी, हम साथ रहते थे जब, तो मेरी आदत पड़ गई थी और मैं उसका कायल हो गया था, क्योंकि मैं सबसे पूरी रिपेट्री में सबसे अच्छा खाना इसी का होता था और सब लोग यही वेट करते थे कि आज प्रतिभा क्या बना के लाएगी।
0: क्या बात है,
1: और हमारा ही खाना
0: वाह।
1: हमारे ही नसीब में नहीं होता था, बाकी सब थोड़ा थोड़ा देख खा जाते थे।
0: अच्छा, तो आपको हरियाणवी खाना बनाना आता है?
1: हाँ बिल्कुल बनाना आता है, बना
0: बना के
1: लेता हूँ।
0: खिलाया आपने प्रतिभा जी को?
1: हाँ बिल्कुल कई बार खिलाया है।
0: सच है प्रतिभा जी? अच्छा
2: खिलाते हैं।
0: जी, तो चलिए ये स्पष्ट हो गई कि दो तरफा बातें हो रही। आप हरियाणा की कुछ बातें और बताइए यशपाल जी, पिताजी की, माँ की। आपने बताया था कि बहुत शरारतें बताई थी, वैसी कोई बात है तो चलते चलते बताइए हमारे श्रोताओं
1: नहीं
0: को।
1: नहीं बस ये तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था, जो कि एक मुझे ड्रीम की तरह लगता है अब, क्योंकि वो जो वैल्यू थी ना चीजों की उस वक्त, वो जैसे हमने पूरे परिवार ने पैसे इकट्ठे किए, तकरीबन 750 रुपये इकट्ठे किए। मेरी मदर स्वेटर बुनती थी, सिलाई करती थी कपड़े,
0: ओहो
1: और बड़ा भाई जो है वो एक लेमन की बोतलें सप्लाई करता था इधर रिक्शा पे। तो इकट्ठा कर करके हमने तकरीबन 750 रुपये इकट्ठे किए और साइकिल
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: आनी थी उस दिन, और मेरे बड़े भैया साइकिल लेने गए थे और हम पूरा परिवार, क्योंकि 6 भाई बहन थे उस वक्त, और सब लोग पहले मैं चलाऊंगा, पहले मैं चलाऊंगी, पहले मैं चलाऊंगा, और अंदर बाहर कभी इधर कभी उधर थोड़ा सा बैठे फिर उठ जाए, मतलब इतनी बेचैनी कि कब आएगी साइकिल। फिर वहां से दूर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, 20 मकान थे हमारा बीच में था, उस दर से 10 मकान उधर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, भैया आए चलाते चलाते हरे रंग की हीरो साइकिल, और फिर जैसे ही आए हमने जकड़ ली और फिर एक एक करके कैंची फैंची चला चलू के, इतना मजेदार दिन था वो कि मैं बता नहीं सकता। कट्टू बॉम्बे में गाड़ी खरीदनी थी, पहली गाड़ी थी हुंडई एक्सेंट, और ड्राइवर हमने पहले ही रख लिया था क्योंकि वो एक टैक्सी वाले से बात की थी, तो उसने ड्राइवर दे दिया था यूपी का घनश्याम, तो उस घनश्याम को हमने भेजा और उसके मोबाइल पे हमने फोटो मांगी कि हमको फोटो दिखाओ कौन कौन सी गाड़ी है, तो गाड़ी के कलर दिखाए उसने, मैंने कहा ये वाली लेनी है, और फिर ले आए और फिर पेमेंट हो गई। मेरे दिमाग में दिल में बिल्कुल भी हमारे एक्साइटमेंट नहीं था गाड़ी खरीदने का। तो ये थी वैल्यू एक चीज, पैसे की वैल्यू, चीजों की वैल्यू। आज लाखों रुपए की चीजें आ जाती हैं, कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहती, बच्चों में खासकर।
0: जी बिल्कुल,
2: आजकल के
1: हम तो
0: एक खिलौना बहुत कीमती हुआ करता था।
1: हम तो 20-20 पैसे 10-10 पैसे कैसे संभाल के खर्चते थे, क्या क्या आ जाता था उन दिनों, आज तो लाखों रुपए अभी बच्चे खर्च देते हैं तो पता नहीं चलता।
0: चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से, बहुत सारे श्रोता जो हैं एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, आपके हरियाणा से, हिसार से, और देश के तमाम जगहों से आना चाहते हैं।
1: नहीं, मैं
0: जी अपने
1: तो
0: आप बताइए।
1: सबको यही कहना चाहूंगा कि ऑडिशन देते हो या कहीं भी कुछ जाते हो, कोई भी नाटक करते हो, कोई भी कहीं भी कुछ करते हो, तो कभी भी दिखावा मत करो। हमने दिखाते बहुत हैं, देखो देखो मैं हंस रहा हूं, देखो देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो देखो मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूं, देखो मैं रो रहा हूं, देखो नहीं दिखाओ, रोवो हंसो, अपने आप पता चल जाएगा लोगों को। और दूसरा, आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जो आपको पता नहीं होता, जैसे हनुमान के अंदर थी, जामवंत ने याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तुम उड़ सकते हो, इतने योजन पार कर सकते, तो वो चीजें आपके अंदर हैं। आप ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई गुरु होना चाहिए जो आपको सही दिशा दे, क्योंकि हम अपनी पोटेंशियलिटी का 30% ही यूज करते हैं मैक्सिमम, बाकी सारी अंदर दबी रहती हैं और हम यूज ही नहीं करते उसका। कुछ इनहिबिशन होती है, कुछ डर होते हैं, कुछ खौफ या कुछ शर्म लड़कियों में खास कर कि हम खुल करके अपने आप को नहीं कर पाते इजहार।
0: जी बिल्कुल,
1: तो मुझे लगता है कि वो चीजें आपको करनी चाहिए और आप खुल करके करेंगे और दिल से करेंगे, अंदर से करेंगे, आप रोएंगे वाकई में तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप रो रहे हैं, और आप हंसेंगे तो पता चल जाएगा कि आप हंस रहे हैं, खुश हैं तो खुशी पता चल जाएगी। तो इसीलिए उसको दिखाने की बजाय होना चाहिए, बी देयर।
0: जी बिल्कुल,
1: करो मत, हो जाओ।
0: बिल्कुल प्रतिभा जी, आप ये बताइए हमें कि कोई ऐसी तमन्ना है, कोई ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया जिसे पूरा करना चाहती हैं। महिलाओं के साथ अक्सर होता है, बहुत सारे ख्वाब देखे जाते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं, कई बार परिस्थितियां नहीं साथ देती हैं, कई बार परिवार, तो ऐसे कभी कोई नौबत आई है समझौते की?
2: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ना शादी पहले नहीं कर लेनी चाहिए, पहले करियर कर लेना चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। मैं सभी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि जो भी लड़कियां अगर इस फील्ड में आना चाहती है, अगर उनको कुछ लाइफ में कुछ करना है तो पहले खुद करियर कर लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
0: बिल्कुल,
2: हमारे वक्त तो ऐसा वक्त था, तो परिस्थितियां भी ऐसी थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर आजकल अगर कोई लड़की अगर इस फील्ड में आती है और इस फील्ड में अपना काम करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, तो सबसे पहले अपना मुकाम हासिल करो और उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
0: बिल्कुल सही बात है, और एक लाइन गुनगुनाइए दोनों लोग। बस यहाँ पे हम अब एक हैप्पी नोट पर खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
0: क्या बात है यशपाल जी और प्रतिभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
2: बहुत स्वीट, बहुत प्यारी यादें आपके साथ हमने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: बहुत शुक्रिया।
3: ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे
1: एक सौ दो दशमलव सात एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के पांच बजे हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों, हमारे देश की धरोहरें केवल पत्थरों से बनी इमारतों या पुराने स्मारक नहीं है। इनके साथ हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे पूर्वजों की यादें जुड़ी हुई हैं। किले, प्राचीन भवन, प्राचीन स्मारक, ऐतिहासिक स्थल, लोक कलाएं और पारंपरिक विरासत हमें यह बताते हैं कि हमारा अतीत कैसा था और हमने कितनी लंबी यात्रा तय की है। इसीलिए राष्ट्रीय धरोहरों की सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं दोस्तों, बल्कि हम सभी का दायित्व है। अक्सर हम ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने जाते हैं, तस्वीरें लेते हैं और उनकी सुंदरता की तारीफ भी करते हैं, लेकिन कभी कभी वहीं दीवारों पर नाम लिख देते हैं, कूड़ा छोड़ देते हैं या फिर स्मारक को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी लापरवाही हम इससे बचें। हमारी छोटी छोटी सी लापरवाही हमारी साझा विरासत को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, जिसे हम पहले की तरह ठीक नहीं कर सकते। दोस्तों, हम अपने आसपास मौजूद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को उनके महत्व के बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ विरासत संरक्षण के संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम और संरक्षण अभियान में हम हिस्सा ले सकते हैं, उसमें अपनी भागीदारी दे सकते हैं। दोस्तों, धरोहर की सुरक्षा का मतलब केवल किसी इमारत को बचाना नहीं, हमारी लोक भाषाएं, लोकगीत, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला या स्थानीय संस्कृति भी हमारी विरासत है। हमें इनके बारे में सीखना और अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाएं, तो वहाँ स्वच्छता बनाए रखें, किसी वस्तु को नुकसान न पहुँचाएं और नियमों का पूर्णतया पालन करें। अगर कोई व्यक्ति धरोहर को नुकसान पहुँचा रहा है तो उसे रोकें, जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को जानकारी दें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, हमारी धरोहरें हमारे अतीत से हमें जोड़ती हैं और भविष्य को पहचान देती हैं। दोस्तों, अगर हमने इन्हें आज सुरक्षित रखा, तभी आने वाली पीढ़ियां इन्हें अपनी आंखों से देख और अपनी विरासत पर गर्व कर पाएंगी। इसीलिए धरोहरों की रक्षा करना वास्तव में अपनी पहचान की रक्षा करना है। दोस्तों, आंखें हमारे जीवन की सबसे अनमोल इंद्रियों में से एक है। हम अपने आसपास की खूबसूरत दुनिया, अपने प्रिय लोगों के चेहरे और अपने सपनों को आंखों के माध्यम से ही देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों के लिए यह अनुभव संभव नहीं होता। ऐसे लोगों के जीवन में नेत्रदान उम्मीद की एक नई रोशनी बन सकता है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हमें इसी मानवीय जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करने का अवसर देता है। दोस्तों, नेत्रदान को

लेकर समाज में आज भी कई तरह की गलत धारणाएं और भ्रम देखने को मिलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान बहुत कठिन प्रक्रिया है या फिर इसे शरीर के अंतिम संस्कार में परेशानी होती है। वास्तव में नेत्रदान एक महान सामाजिक सेवा है, लेकिन इसके बारे में सही जानकारी अधिकृत स्वास्थ्य संस्थानों और विशेषज्ञों से लेना अति आवश्यक है। दोस्तों, बतौर युवा हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लोगों को जागरूक भी करें। युवा स्वयं सही जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को भी जागरूक कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कोई अपुष्ट जानकारी यानी कि अधूरी जानकारी साझा करने के बजाय नेत्रदान से जुड़ी प्रमाणित जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है और साथ ही साथ सामाजिक संगठन के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम भी हम शामिल कर सकते हैं और लोगों को इससे जोड़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नेत्रदान केवल किसी एक व्यक्ति की मदद नहीं करता, बल्कि समाज में संवेदना और मानवता की भावना को मजबूत करता है। किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी उसकी आंखों के माध्यम से किसी दूसरे के जीवन में रोशनी की उम्मीद उत्पन्न हो सकती है। यह विचार अपने आप में बहुत भावुक और काफी ज्यादा प्रेरणादायक है। दोस्तों, इस पखवाड़े का यानी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का उद्देश्य सिर्फ लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करना नहीं, बल्कि इससे जुड़े भ्रम दूर करना और साथ ही साथ सही जानकारी देना भी है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि मानव जीवन में सबसे बड़ी सेवा वही है जिससे किसी दूसरे के जीवन में उम्मीद उत्पन्न हो। इसीलिए जागरूक बने, सही जानकारी लें और दूसरों तक भी सही संदेश पहुँचाएं।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: दोस्तों पानी के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, यह आप भी जानते हैं। हमारे खेत, हमारे घर, उद्योग और पूरा पर्यावरण पानी पर ही निर्भर है। लेकिन बढ़ती आबादी, बदलती जीवन शैली, भूजल का लगातार दोहन और अनियमित बारिश के कारण कई क्षेत्रों में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। दोस्तों ऐसे समय में जल संचयन यानी कि बारिश के पानी को बचाकर उसका उपयोग करना बेहद जरूरी है। हम अक्सर बारिश के दौरान छतों और सड़कों से पानी बहते हुए देखते हैं। सोचिए अगर इस पानी का कुछ हिस्सा भी हम बचा लें और उसे जमीन में पहुंचाने या भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित करने की व्यवस्था करें तो कितना बड़ा लाभ हो सकता है। जल संचयन किसी बड़े शहर की ही जरूरत नहीं, गांव और छोटे कस्बों के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम छोटी छोटी अपनी कोशिशों के माध्यम से इस क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। गांवों में तालाबों, कुओं और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण के लिए अभियान चलाए जा सकते हैं जिसमें हम अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। खेतों में पानी रोकने के छोटे छोटे उपाय अपनाए जा सकते हैं। वर्षा घरों में भी वर्षा जल को एकत्र करने और भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था की जा सकती है। दोस्तों सिर्फ बारिश का पानी बचाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें रोजमर्रा के जीवन में पानी की बर्बादी रोकनी होगी। नल खुला न छोड़ें, जरूरत के अनुसार पानी का आप इस्तेमाल करें, घर में पानी के रिसाव को तुरंत ठीक करा लें और इस्तेमाल किए गए पानी के उचित पुनः उपयोग जैसे छोटे छोटे कदम काफी मददगार हो सकते हैं जल संरक्षित करने में। दोस्तों जल संचयन को हमें किसी एक अभियान तक सीमित नहीं रखना चाहिए, यह हमारी रोज की आदत और सामूहिक जिम्मेदारी बननी चाहिए। गांव का एक तालाब, शहर की एक छत और घर का एक छोटा सा प्रयास भी पानी बचाने में बड़ा योगदान दे सकता है। दोस्तों आज हम पानी बचाएंगे तभी कल हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। इसीलिए जल संचयन केवल पानी बचाने का तरीका नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित रखने का संकल्प भी है।

दोस्तों, चलते चलते एपीजे अब्दुल कलाम जी के इस विचार के साथ, जो कि समय की कीमत क्या मायने रखती है, हमें सिखाता है। विचार है, समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। जिसका अर्थ है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, इंसान को हर परिस्थिति में विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज कार्यक्रम युववाणी का सफर यहीं तक। अब अपनी रेडियो हमसफर रानी राष्ट्रीय को कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घरनी।

सब बहन लोगन के जीरा बहन का राम राम। और देखा सब बहन लोगन, आज हमार घरनी कार्यक्रम में बहुत बहुत आप लोगन का स्वागत करत है। और देखा जब हमन के अपने कार्यक्रम में आई लाना हो तो सबसे पहले जो न कि बहन लोगन से देखा हालचाल पूछल जाला हमन के। और हमार बहन लोगन ठीक ठाक हुई हैं हम देखा ऐसा उम्मीद करत ही ला। वैसे तो हमके यह मालूम है कि सभी लोग कुशल मंगल से हुई हैं, लेकिन ए समय देखा जौन बरखा बुन्नी भी होत बा उससे चारों तरफ देखा हरियाली देख के तो मन बड़ा प्रसन्न होत बा। लेकिन बारिश ऐसने में हमन के अपने घर परिवार के लिए भी देखा विशेष ध्यान देवे के चाहिए। काहे से कि ये समय बारिश भइले के बाद जौन उमस होत वाला गर्मी होत बा वो देखा ओकर असर सीधा अपने स्वास्थ्य पे होत बा। और तरह तरह के देखा बर बीमारी हो जात बा। और हमन के ऐसने में बच बचा के रह के पड़ी। नहीं तो कहल गया ना कि मौसम के अनुसार देखा ज़्यादातर लोगन के खांसी जुखाम बुखार माने तमाम तरह के बीमारी इस समय होत हो। तो इसे अगर हमन के देखा निजात पावे के बा तो अपने घर गृहस्थी के जौन काम बा ओके करी और सचेत रही। और देखा ये समय लोग इतना ज़्यादा अपने अपने माने तैयारी में लगल हैं। आज से देखा 2 दिन बाद जो ना रक्षाबंधन पड़ी तो बहन बिटियन का आना जाना भी शुरू जाना का राखी के बादे जई हैं। तो आपन आवत हैं उन लोगन के देखा हम लोगन के खुशी खुशी स्वागत करे के चाही। और देखा जब हम सब लोग जुटी ला ना तो तरह तरह के बातचीत भी करी ला और बढ़िया बढ़िया देखा जानकारी भी सुनल जाला। तो आज जौन जानकारी हमन के सुनल जाई

0: देखा बहुते बढ़िया है, और जानकारी सुनल भी जाए तो ओकर फायदा भी हमन के उठाना जरूरी है, लेकिन एकरे खातिर का करे को ही जाना तो जागरूक होए पड़ी। तो देखा आजू के दिना राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा शुरू होता, और ये देखा ये 8 सितंबर तक चली। और देखा हमार कहे का मतलब ये कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो ना हर बरिस जो ना कि 15 अगस्त से 8 सितंबर तक मनावल जाला, और ताकि दुनिया भर में दृष्टिहीन का संख्या देखा इस समय काफ़ी अधिक है, और कई लोग देखा जन्मजात से ही दृष्टिहीन होलन, और ब्लड कैंसर जैसन बीमारी के कारण भी कई लोगन की जो ना कि अपन आँख गंवावे के पड़ेला। तो हम तो ये कह सब लोगन से कि आँख के महत्व के समझी, जेकर सुरक्षा भी हमन के बड़ा पैमाना पे करे के पड़ी। लेकिन राष्ट्रीय नेत्रदान के जौन शुरुआत भइल देखा वो 1885 में भइल रही, लेकिन नेत्रदान के यही उद्देश्य बा कि सब लोग जो है कि माने देख सके, माने जे इस माने इसे दृष्टिहीन से शिकार भइलन, तो इनके देखा हम लोग वंचित भी नहीं कर सकीला। और एक नज़र डालें ये भी कि अगर एकरे लिए प्रोत्साहित करे के बाद तो राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा का जौन लक्ष्य बा कि मृत्यु के बाद लोगन के अपन आँख दान करके प्रोत्साहित करी, और लोगन के शिक्षित करें कि मृत्यु के बाद नेत्रदान से कोनो नुकसान नहीं है, और नेत्र प्रत्यारोपण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान का जौन की प्रसार करी, और नेत्र प्रत्यारोपण की आवश्यकता के बारे में मने जो न कि ध्यान देवल जाए कि मृत्यु के बाद अगर कोई भी अपन आँख दान कर सकेलन और मृत्यु से मने हो गई बा, तो ओकरे खातिर आपके जो ना कि 4 से 6 घंटा के भीतर ही आँख के केवल एक पंजीकृत चिकित्सक और या तो हटा सकेलन और या तो फिर अस्पताल ले जाके हटवाई, ताकि जो ना कि कल गले एकरे लिए संपर्क ये करे को कि आँख हटावे के लिए नेत्र बैंक टीम के पास मतलब जाए की पड़ी, या मृतक के घर आके जो ना कि वो एक काम कर सकेलन, और पूरी प्रक्रिया के दौरान जो ना कि इमित देरी ना करें, और ना ही तो अंत्येष्टि कल गलर की जो वादा आवेला तो उनमें किसी भी प्रकार के संचारी रोग के नियंत्रित करे के लिए थोड़ी मात्रा में रक्त दिखा लेवल जाला, और साथ ही जो ना कि दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के पहचान रखल जाला। और बहन लोग देखा हमन के ई जो जानकारी होए की चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे एड्स, हिपेटाइटिस बी और सी, रेबीज और उसके बाद सेप्टिसीमिया, तीव्र माने ल्यूकेमिया, टिटनेस, हैजा और मोनिनाइजेशन और संक्रमण रोग से अगर पीड़ित हैं तो आँख के दान नहीं कर सकलन। ए लिए देखा ई पखवाड़ा के दौरान हमन के सबके जागरूक करें, और खुद भी जागरूक रहें और बढ़ चढ़ के हिस्सा ली, ताकि जो है कि हम लोगन के आगे जो दूसरे के रोशनी मिली, दूसर कोई दुनिया देखी तो मन खुश हुई। बहन देखा बात बत कही तो आगे हम लोगन के होते रहे, लेकिन जो नेत्रदान के बात करत है हम वही से संबंधित देखा आज जानकारी है, कार्नियल अल्सर या पुतली में घाव से बचाव, एकरे बारे में प्रदीप डॉक्टर प्रदीप सिंह जो नेत्र सर्जन स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय लोढ़ी सोनभद्र से हैं, इनसे अपन बतासा बहन बातचीत कैले, तो हम तो कहते बिना देर के लिए चलाए के सुनल जाए।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आंखें हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो हमें यह सुंदर और रंगीन दुनिया देखने में मदद करती है। इनके बिना जीवन की कल्पना बहुत ही कठिन होता है। आंखें शरीर का मुख्य संवेदी अंग है, जिसकी देखभाल हमें हमेशा ठीक ढंग से करना चाहिए। जाने अनजाने थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी परेशानियों का कारण बन जाती है। आंखों से संबंधित समस्याएं कुछ मामूली तो कुछ गंभीर होती हैं। इन्हें स्वस्थ रखने के लिए कौन से जरूरी उपाय करने चाहिए, बात करते हैं डॉक्टर प्रदीप सिंह जी से, जो नेत्र सर्जन है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय लोढ़ी में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: और आकाशवाणी ओबरा के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत नमस्कार मेरे श्रोतागण और आकाशवाणी के लोगों को कि जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया।
1: जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम सबको ये बताएं कि आंखों में क्या क्या समस्याएं आती हैं।
2: आंख एक बहुत ही अभिन्न अंग है, आंख नहीं तो कुछ भी नहीं
1: जी।
2: आंखों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती

0: जिसको बहुत लंबे समय से कोई स्टेरॉइड की दवा चल रही हो,
1: अच्छा,
0: जिसको और बीमारी हो जैसे HIV, जिससे इम्यूनिटी लोगों की खराब हो,
1: जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो
0: कम
1: जाती
0: बहुत
1: है
0: कम हो,
1: जी,
0: कोई भी घास का पत्ता लगना
1: आंखों में लग जाए।
0: लग जाए, तो उसको बहुत इम्पोर्टेंट है
1: जी
0: उसका ध्यान देना, एक विशेषज्ञ के पास जाके इसका इलाज बहुत ज़रूरी है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, इसके होने का लक्षण कैसे पता करें कि ये, मतलब चोट लग जाती तो वैसे ही आंखों में लाली आ जाती है, इसके अलावा और क्या-क्या लक्षण प्रतीत होते हैं?
0: अगर किसी को पुतली का घाव हो गया, जो
1: जी
0: मैं फंगल की बात कर रहा हूँ, यह बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, हम बेसिकली प्रमुख लकड़ी से जो चोट लगती है वो फंगल मानते हैं।
1: अच्छा, और बैक्टीरिया जो होता है?
0: बैक्टीरियल होता है उसमें पुरलिन डिस्चार्ज, जैसे पीले रंग का हरे रंग का डिस्चार्ज होने
1: पानी
0: लगता,
1: आंखों से गिरना।
0: आंखें पानी कीचड़ आने लगता
1: जी
0: है,
1: जी
0: इसमें सफेद रंग का एक फफूंद सा लगता है,
1: अच्छा
0: ये फर्क है। पुतली का घाव हो गया, उसमें लालपन होना, आंसू आना बहुत ज्यादा,
1: अच्छा
0: लाइट से बहुत ज्यादा परहेज, जैसे हमें लाइट बहुत चुभती
1: चुभती
0: हुआ
1: होगी।
0: आंखें में,
1: जी
0: बहुत ज्यादा दर्द असहनीय, और आंख की लाली बढ़ती जाएगी दिन पे दिन,
1: अच्छा
0: और कई जब बढ़ जाता है रोग तो हमें एक उड़ती हुई चीजें भी दिखने लगती हैं,
1: अच्छा
0: और धीरे धीरे हमारी रोशनी कम हो जाती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जब ये घाव इस तरह के हो जाते हैं और इस तरह के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं, तो इसको बचाया कैसे जाए? इसको बचाव के उपाय हम क्या करें, कौन
0: जो
1: कैसे
0: भी
1: क्या करे?
0: खेत में काम करते हो या जिनका ऐसा काम हो जो कि वेल्डिंग हो या कोई चीज़ काम कर रहे हैं जिसमें आँख पे चोट लगने की जो समस्या हो,
1: जी
0: ये प्रमुख कारण कि एक सफ़ेद कलर का पूरे आँख को ढकने के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लासेस आते हैं,
1: जी
0: जैसे मोतियाबिंद के काले ग्लास आते हैं वैसे ही सफ़ेद ट्रांसपेरेंट ग्लासेस आते हैं,
1: अच्छा
0: वो सस्ते से मार्केट में 50-100 रुपए के किसी को कहीं से भी आप ले सकते हैं,
1: जी
0: उसको लगा के काम करें, एटलीस्ट कोई भी छींटा पड़ेगा हम खेत में कर रहे हैं तो
1: जी
0: हमारे आंख में नहीं जाएगा।
1: हमारी महिलाएं भी साफ सफाई, घरों में झाला साफ करना होता है, पंखे
0: बिल्कुल
1: साफ करना
0: बिल्कुल
1: होता है,
0: बिल्कुल,
1: कई।
0: एक सफेद चश्मा लगा ले तो वो प्रिकॉशन, हमारे बीच में एक जो बीमारी की चीजों से और
1: जी
0: हमारे बीच में एक पर्दा बन जाएगा,
1: जी
0: तो इससे हमारे चोट लगने की समस्या कम हो जाएगी,
1: जी
0: इन्फेक्शन होने की समस्या कम हो जाएगी,
1: जी
0: आखिर काम तो हमें करना ही है, काम तो छोड़ नहीं सकते।
1: जी बिल्कुल। अच्छा, उपचार या फिर इलाज के दौरान परहेज किस तरह का होना आवश्यक है?
0: सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें मरीज को जैसे ये लक्षण आने लगे,
1: जी
0: कीचड़, पानी
1: पानी आना,
0: आना, बहुत दर्द होना, लाली ना जाना,
1: जी
0: तो ये तुरंत अपने किसी भी नजदीकी चिकित्सालय, जो कि हमारे जिले में तो चिकित्सक की कमी बहुत है,
1: जी
0: चिकित्सालय जो नजदीकी हैं, डॉक्टर आंख के स्पेशलिस्ट
1: जी
0: अलग होते हैं,
1: बिल्कुल
0: वो जिला अस्पताल है या रॉबर्ट्सगंज में कुछ जगहों पे हैं,
1: जी
0: तो जिला अस्पताल में आप आके तुरंत, कभी किसी को ऐसा याद है कि नहीं कीचड़ लग गया, डंडे से चोट लग गई, कांटा लग गया, पत्ता
1: जी
0: लग गया, तुरंत अस्पताल में पहुंचे,
1: जी
0: आंखों में अनावश्यक कोई भी दवा ना डालें किसी भी दुकानदार से लेके।
1: जी
0: तीसरी बात, आप आंखों में पानी डालना छोड़ दे, पानी एकदम ना डालें, क्योंकि
1: पानी जैसे नहाते वक्त भी पड़ जाता
0: नहाते
1: है
0: वक्त
1: कभी।
0: आंखों से पानी नहीं
1: जी
0: जाना
1: कभी कभी
0: चाहिए,
1: लोग मुंह में पानी भर के भी आंखों को साफ करते हैं कि उससे आंख की रोशनी बढ़ती है, तो
0: नहीं
1: ये
0: ये
1: बिल्कुल ना
0: इस
1: करें।
0: बीमारी में करना,
1: जी
0: वो क्योंकि हमारा फंगस जो है वो ग्रो ही करता है पानी में,
1: अच्छा
0: पानी नहीं जाना चाहिए।
1: जी तो डॉक्टर साहब, घाव की जल्दी रिकवरी के लिए और दैनिक दिनचर्या में मरीज और उनके परिवार वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए?
0: सबसे पहले इसमें स्टेरॉयड बिल्कुल आग में घी का काम करता है, जितने भी लोकल दुकान वाले होते हैं
1: जी
0: वो DX करके एक दवा आती है, सिप्लॉक्स DX,
1: जी
0: मॉक्सी DX, ऐसी करके दवा जिसमें DX लिखा हो
1: जी
0: वो दवा तो बिल्कुल ना डालें, क्योंकि ये हम जितना डालेंगे वो उतना ज्यादा फैलता है,
1: अच्छा
0: तो DX नहीं डालना।
1: अच्छा
0: मोतियाबिंद की दवा अलग होती है, पुतली के घाव की दवा टोटली अलग होती है,
1: अच्छा
0: और उसके लिए एक चिकित्सक जो है आंख के उनके पास जाना जरूरी है, अगर सुविधा हो रही है तो जिला अस्पताल सबसे अच्छा है,
1: जी
0: आप आए वहां पे आपका, और ये जितनी जल्दी इलाज होगा उतना ही जल्दी ठीक
1: ठीक
0: होगा।
1: होगा। अच्छा, क्या ये परेशानी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है डॉक्टर साहब?
0: ये परेशानी उम्र से देख के नहीं आती, ये तो चोट लगने की वजह से होती है
1: अच्छा
0: या बाहरी फंगस वाले जो मैंने पहले बताया, तो
1: जी
0: ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है।
1: अच्छा तो डॉक्टर साहब, ये पुतली का घाव ठीक होने में कितना समय लग जाता है लगभग?
0: अगर शुरुआती दौर में जैसे हमें 2-4 दिन पहले चोट लगी और आप आए, तो 15 दिन से 1 महीने के अंदर पूरी तरह से आप ठीक हो
1: अगर
0: जाते हैं,
1: सावधानी से इसका इलाज
0: सावधानी से
1: किया
0: इलाज
1: गया?
0: 15 दिन से 20 दिन में ठीक हो जाता है अगर शुरुआती है।
1: जी
0: अगर ये घाव बिगड़ गया है, कहीं से आप

0: ने दवाइयां ले ली हैं और जो भी, और घाव बिगड़ने की स्थिति, तो
1: जी
0: इससे 3 महीने से 6 महीने तक भी, साल भर तक भी दवा
1: लग
0: चलती है।
1: सकते हैं जी। अच्छा, जिन लोगों की आंखों में लेंस लगा हो डॉक्टर साहब, क्या ये समस्या उनको भी हो सकती है?
0: देखिए, पुतली हमारी सबसे बाहरी हिस्सा है और
1: जी
0: लेंस हमारा इसके पीछे होता है।
1: अच्छा
0: तो मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है उसमें हम लेंस डालते हैं,
1: अच्छा
0: और ये घाव हमारी पुतली का है, बाह्य हिस्से का है। पुतली
1: वाह,
0: सबसे पहला बाह्य हिस्सा है
1: अच्छा
0: हमारा,
1: जी
0: हमारी आंख का।
1: जी
0: तो ये पुतली की बीमारी है, लेंस
1: अच्छा
0: हमारा बहुत पीछे है। तो
1: अच्छा
0: लेंस और
1: उससे
0: पुतली
1: कोई
0: से
1: संपर्क
0: हमारा
1: नहीं है।
0: संपर्क नहीं है,
1: जी
0: तो ये
1: जी
0: किसी में भी हो सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, देखें आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अच्छा, चलते चलते सभी श्रोताओं से उनको अपनी आंखों की सुरक्षा हेतु क्या सलाह देना चाहेंगे? और
0: अगर कभी भी, हमारे काम तो ऐसा है कि हमें खेती बाड़ी तो करना ही पड़ेगा,
1: जी बिल्कुल
0: दिन रोजमर्रा की जिंदगी का जीवन यापन के लिए कार्य तो करना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल, हमारा देश
0: आंखों
1: ही
0: कृषि
1: कृषि प्रधान देश है।
0: प्रधान है। तो हम तो यही, बहुत एक छोटी सी चीज है, एक चश्मा पहन लें
1: जी
0: और फिर काम करें।
1: जी
0: और नहीं तो अगर मान लीजिए आपको कहीं से बाई चांस चोट लग गया, तो नजदीक के अस्पताल में जाके तुरंत दिखा लें। उसको इग्नोर ना करें कि मेरी खेती खत्म हो जाए फिर मैं करूंगा, देर
1: जी
0: नहीं करना है।
1: जी संपर्क सूत्र बता दे डॉक्टर साहब।
0: जी, अगर मुझसे जिला अस्पताल में मिलना है तो नेत्र रोग विभाग है,
1: जी
0: कमरा नंबर 34, पुराना अस्पताल है, पहले वाले में ही, वहाँ पे कमरा घुसते ही पहला कमरा है। वहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को आके आप कभी भी किसी समय दिखा सकते हैं।
1: जी तो श्रोताओं, आज हमारे साथ मेहमान थे डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, जो कि नेत्र सर्जन हैं स्वशासकीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय लोढ़ी में। श्रोताओं, आंखों की समस्या अगर मामूली भी हो तो इसका इलाज खुद से बिल्कुल ना करें, तुरंत अच्छे डॉक्टर से मिलें और अपनी समस्या का निदान करें। याद रखें, समय रहते किया गया इलाज आंखों की ज्योति बढ़ा और बचा सकती है, तो नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें और जागरूक बने अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। और डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: धन्यवाद।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: बहन लोगन, दिखाई संदेश रहा। संदेश से पहले जो हम उनकी जानकारी सुन ली है कि कार्नियल अल्सर पुतली में घाव से बचाव, एकरे बारे में डॉक्टर प्रदीप सिंह जो नेत्र सर्जन स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय लोढ़ी सोनभद्र में बा, वो तो ये जानकारी दिखाई इतना बढ़िया दिलन बतासा बहन, इतना फरिया फरिया के बतियेलिन, बिल्कुल कल गल कि आँख दीदा रहेला तभी जो है कि माने काम धंधा आदमी कर सकाला। लेकिन जेकर माने कल गल कि अगर पैदाइशी ऐसी बात तो उनके तो नहीं, कोई कोई का अगर घटना दुर्घटना में जो है कि माने आँख चल जाला तो उनके लिए जो है कि अंदर से जो घुटन होला, जो तकलीफ होला, वो देखा बहुत ही जो है ना कि पीड़ादायक होला। तो देखा ये जानकारी बढ़िया रहला, और ये जानकारी के सुनने के बाद अब देखा मन मनसायन भी होए के चाहिए, और देखा सावन का महीना चलते हला तो हम तो कहबला कि अब बिना देर के लिए जोन कीर्ति बहन गौले हैं गीत अपन कजरी, वो के चला सुन लेवल जाए।

बहन लोगन दिखाई कजरी रहल, कजरी सुन के तो एकदम तबीयत खुश हो गल। लेकिन जे लोग झूला झूला थे कजरी गावत थे उ लगन के लिए दिखाई समय बहुत अच्छा है। कल गल ना कि यही एक समय मिलेला एक महीना के, कि जेमे कल गल सावन का महीना पावन होला, बोलबम का भी समय चला थला, मंदिर में जाके लोग दर्शन भी करत हन, और साथे साथे अपने गांव गिहार में लड़की बिटिया जब इकट्ठा होलिन तो एक दूसरे का हाल चाल पूछा लिन, तो वो अपना जो है ना कि ओपे ध्यान दे लिन। तो हम तो कहावला कि देखा आज आपके एक बात और हम बता दें, यानी कल 26 अगस्त के जो ना मदर टेरेसा जयंती है, जो उनकी हर साल 26 जनवरी के मनावल जाला। और 26 जनवरी के मनावे का कारण ये है कि 26 अगस्त माने 1910 में इनकर जन्म जो है कि भइल रहल, और ये अपना पूरा जीवन भारत और दुनिया भर के गरीब बीमार लाचार लोगन के सेवा में समर्पित कर देलिन। और इनकर देखा कुछ मुख्य बात ये भी है कि इनके जो है कि तरह तरह के पुरस्कार से सम्मानित भी कैल गेल, और अंत में जो है इनका निधन भी देखा जो ना कि 5 सितंबर 1997 के भेल। पर इनके जयंती में यह महत्व मानल जाला कि दिन उनके लिए परोपकारी कार्य और मानवता का संदेश के याद करे का अवसर देला। और जो लोग माने कल गला कि अगर दिखावा करत हैं तो उनकर बात छोड़ दे, लेकिन इनकर सोच यही कि करुणा और प्रेम के मार्ग में चले का संकल्प लें, और इन्हीं के तरीका से जो

कि दूसरे का मदद करे का कोशिश करें, तो हम देखा बातचीत जो ना कि अभी आगे करब, लेकिन मन यही कहा था कि अभी जी देखा गीत से भरल नहीं है, एक और गीत जो पूर्वी वाला ओके चला, एक कीर्ति बहन के गाँव वाला सुन लेवल जाए।

सुन के तो मन खुश हो गया, चुनर मुर धानी। और गीत के साथे साथे चलत चलावत आप लोगन के हम ये भी बता दें कि जोन गाजर के गुड़ बा, सबके घर में देखा गाजर होला और गाजर सब लोग बहुत प्रसन्न से खालन, तो हमन के लिए तो गाजर के गुड़ ये बा कि आँख के लिए बहुत फायदेमंद है। कल गल कि गाजर में बीटा कैरोसिन टीन और विटामिन ए का प्रचुर मात्रा मिलेला जोन आँख की रोशनी के सुधारेला। और कल गल कि उम्र से जुड़ल जोन आँख के कमजोरी है ओके भी देखा रोके में मदद करेला। तो हम तो यह कहबला कि अगर इतना बढ़िया जब गाजर में फायदा है तो कोशिश यही करें लोग कि ज्यादा से ज्यादा अपने सलाद में या इसे ही गाजर की जो ना कि खाएं। और एक चीज और बता दें कि अगले बैठकी में तो जब हमारे भेंट मुलाकात हुई तो और बात करब। और चलत चलावत ये भी बोला तीला हम कि माने कि अब जो ना कि अपन बैठकी समझने का समय हो गया, अगले बैठकी में फिर भेंट मुलाकात हुई तो सब बहन लोगन के राम राम।

अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घरनी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के आज 10 बरिस पूरा भइले पर कहले कि राष्ट्र एह डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय के गर्व होके के चाहिए। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में वहां के कहने कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होकर भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहल हो। प्रधानमंत्री देशवासियों से यूपीआई के साथे अपन अनुभव साझा करे के कहने। यूपीआई के शुरुआत अजुए के दिन ने बरिस 2016 में भइल रहे। एगो रिपोर्ट।
1: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एगो सोशल मीडिया पोस्ट में कहले कि यूपीआई का जत्रा आज भारत के डिजिटल सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता का वैश्विक पहचान बन चुकल हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में कृषि विभाग का नौका चुनल गयी 3,446 प्राविधिक सहायकन और 126 मंडी सचिवन के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल भेल हैं। यह मौका पर अपना संबोधन में मुख्यमंत्री कहलन कि 6 महीना के भीतर 1,00,000 नौजवानन के सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिहल जाए।
2: मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1,00,000 सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए, 1,00,000 यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी? यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है।
0: प्रदेश के 2 दिवसीय दौरा पर पहुंचल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज

0: लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बूथ लेवल अधिकारियन बीएलओ के साथ बतकही कैले। इस मौका पर मीडिया से बतियावत वहां के कहने कि बूथ लेवल अधिकारी भारत के लोकतंत्र का नेई हम है।
1: हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है, बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं, इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और इतना अच्छा वो काम करते हैं और कुछ उनके सुझाव भी थे, उन सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए हमने लखनऊ आए भी थे।
0: बाराबंकी जिला में मसौली थाना इलाका के बिंदोरा चौराहे के लगे आज दिने में तेज बरखा के पीछे एगो डंपर और कार के आमने सामने से भयल टक्कर में चार जने का मौत हो गई। टक्कर के बाद पुलिस के मदद से कार में फसल पांच जने के बाहर निकाल गई, जिसमें से तीन जने के ओजुक में मौत हो गई है। वहीं एगो मनई इलाज के दौरान दम तोड़ दिलस, जबकि हादसा के शिकार एगो और मनई अस्पताल में भर्ती बाटे। बिहने ईद मिलाद उन नबी मनावल जाये। यही कड़ी में सिरत उन नबी के जलसन आ महफिलन का सिलसिला आज से शुरू हो रहा हो। एक देखत इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया का चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली लोगों से सेंटर की ओर से जारी दिशा निर्देशन का पालन कैले का अपील कैले हमें।
2: पूरे तरीके से डिसिप्लिन का ख्याल रखें और इन जलसों में जो अदब और लिहाज महफूज रखना चाहिए उसका भी पूरा लिहाज रखा जाए, और सड़कों पर नौजवान बिल्कुल भी मोटरसाइकिल स्टैंड ना करें। ये मुबारक रात है, इसका एहतराम करना लाजमी और जरूरी है।
0: मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं भारी से लेकर ढेर भारी बरखा का ऑरेंज अलर्ट जारी कैले हो। विभाग बिहने आ 27 अगस्त के एह अंचल में भारी बरखा का चेतावनी देले बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब एक नजर आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुना जा सकेगा रात 10 बजे। आपकी बात, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10:23 पर। भोले बिसरे गीत कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात 9:15 का।

सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8 बजे, और रात 8:23 पर भी आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात 8:15 का। सबरस कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर।

श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण का प्रसारण समय रहेगा रात 10 बजे का। रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज की बात। रात्रि 9:30 पर सुना जा सकेगा कार्यक्रम आपके लिए। पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन सकेंगे रात 9:15 पर।

सब रस कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 7:31 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम
1: राम
0: राम।
1: राम। और भोला भैया का हाल चाल बा?
0: हाल चाल भैया, इसमें देखत हुआ सावन के महीना चलत हो,
1: हाँ हाँ
0: इसने झमाझम बारिश भी रह रह के हो रहा हो,
1: एकदम
0: और इसने में जौन बाकी शिव जी के मनावे खातिर लोग मंदिर मंदिर जौन बाकी परिक्रमा भी कर रहा हवन भैया। यही क्रम में देखा भैया जौन बाकी इस समय कई तरह के प्राकृतिक आपदा से भी बचने की जरूरत है, कैसे कि नदी नाला पार होके गांव ग्राम में आदमी आवाला जाला, और पता चल कि आराम से आदमी जात बा और नदी के ऊपर जौन बाकी वर्षा बेस हो गई है, और पता चल कि औचक जौन बाकी बाढ़ आ गई, और जौन बाकी हम अभी सफर तय रह गई पार होके भैया।
1: बिल्कुल सही बात कहता। लेकिन एक बात और है
0: हाँ भैया,
1: भैया, जौन तुहु चुल चाल करे से बाज नहीं आवत हुआ भैया। भैंस खोलबा आ ले चल जी बा ओहर नदी ओरी
0: भैया ये तो पैसा हो, हम लोग
1: पे, बात वो
0: ग्रामीण
1: नहीं
0: बच्चा
1: कहत
0: के।
1: है
0: हाँ
1: भैया। नदी में बाढ़ बाय माला एको भैंस बहायल
0: हम्म,
1: भैया। हम 4 दिना बदे चापाकल से भैया चापा
0: बिल्कुल
1: चलाए
0: अभी
1: के उनके
0: नहा
1: धोए
0: दे,
1: धाए नहीं के फिट नहीं के रखा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कहले के
0: बिल्कुल,
1: मतलब देखा अब उम्र बढ़त है। अब
0: हाँ
1: भैया
0: हाँ हाँ
1: टियूर देखा होता कमजोर
0: बिल्कुल
1: मोटका
0: बिल्कुल,
1: लेंस लगल ना
0: हाँ हाँ
1: भैया।
0: हाँ
1: बड़ा
0: हाँ
1: मोबाइली में देखा तला पढ़ तला है बड़का वाले पर भैया। मौसम का ज्ञान लेवे बदे अब भैया देखा कहल जला भैया देखा डॉक्टर भैया कहा ना
0: हाँ
1: कि भैया हो एक समय होला वो समय के बाद खान पियन में भी परहेज आदमी नहीं कर पौता और जो प्रोटीन का मात्रा है वो एक उम्र बढ़ने के बाद कम हो जाला तो रोशनी धीरे धीरे कम हो ले।
0: बिल्कुल भैया
1: और
0: बिल्कुल,
1: ओकरे साथ अगर भैया आंखी के साथ है तो छेड़छाड़ करें के ना चाहिए भैया। अगर रोशनी कम हो डॉक्टर भैया के देखावा अपन चश्मा लगवाएला।
0: भैया देखा
1: और
0: आंख का
1: वही में
0: तबीयत आम है। हाँ
1: जबरदस्ती भैया अगर वो कैला ना तो गैल भैंसिया
0: हाँ
1: पानी में।
0: पानी में भैया देखा मुदहु आँख कताऊँ कुछ ना है,
1: हाँ
0: आँख अगर बंद हो गई भैया तो संसार कुछ नहीं है, ऐसे जोन बाकी देखे खातिर आँख के हो बड़ा जरूरी
1: भैया
0: है।
1: देखा आंख जवन है अनमोल प्रकृति का चीज ईश्वर का देवल एक धरोहर है। जैसे देश दुनिया हर चीज का आप भैया आकलन

0: करेला, देखेला, सुनेला, भैया ओके समझेला।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: आ देखा यही बात पर अपने कविता बहन के भी देखले हुआ ना।
1: हाँ हाँ हाँ। अरे भैया देखते हो कि सब कोई जोन बाकी स्वास्थ्य पर जे ध्यान नहीं दे उतना।
0: हाँ
1: इस समय देखा सभी लोगों के बुखार आओत हो है। तो अब मौसम जिसन हो तो ओकरे अनुसार खान पान रहन सहन भैया सब सुधारे के बदले के पड़ाला। अब पता चल कि जौन गर्मी में खेली हो बरसातों में भैया तो हमें तो तबियत खराब होबे करी।
0: भैया जब जागा तब सवेरा भयल तो पहले तो एमे उम्मे चुल चाल में रहे, लेकिन अब कविता बहिन देखा गांव गांव डुगडुगिया भी पीटनी।
1: क्या बात हो
0: कि भैया बरखा बुन्नी में मवेशी लेके नदी नाला नहीं जाए के। आ भैया दूसर बात भैया नेत्रदान
1: महादान
0: महादान।
1: आज भैया देखा 25 तारीख हो, नेत्रदान सप्ताह भी चल रहा हो
0: बा भैया।
1: अब आज से समझ लिया शुरुआत हो राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। हर साल जौन बाकी 25 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक मनावल जाला। और काहे बदे भैया
0: काहे बदे
1: ये खाते कि जौन बाकी आप अपने जिंदा रहले में नेत्रदान के खातिर एक जौन बाकी शपथ पत्र भर सकल। और कुछ लोग बहुत भयभीत से होलन भैया कि सब अखिये जौन बाकी ओके निकाल देलन, लेकिन वो बात नहीं है भैया। अगर खाली कारनिया निकाल जाला पते न चली कि हमें से कुछ निकल लो है। तो ऐसे भैया जौन बाकी सब लोग के सतर्क जागरूक करे खातिर डुगडुगी बजाला।
0: देखा भैया जौन बड़ा अच्छा सुझाव देला भैया, वो आदमी से पूछा जे दुनिया नहीं देख पावत।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चाहे कौनो आपदा के वजह से, चाहे भैया जन्म जात बहुत लोग, लेकिन भैया ऐसा भी बहुत लोग होना जे कि इस समाज में ऐसा जे दुख भरल जेकर समस्या बाय ओके भैया दुनिया देख ले। अगर परिवार का कोई सदस्य या कोई ए तरह का लोग जवन है अपने से भैया जात हुआ तो लोग नेत्रदान कह देना कि भैया अब हमार तो मतलब कोनो रह नहीं गए।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन भैया एक छोटा सा कारनिया निकाल के डॉक्टर भैया दूसरे में स्थापित कर दी हाँ, तो भैया के दुनिया देखे के समझे के आगे बढ़े का एक मौका हो।
1: सबसे बड़ बात भैया यो हो भले हम अपन शरीर सहित दुनिया न देख सकी, लेकिन कम से कम हमार कारनिया जोन बा की दूसरे के नेत्र में होकर के देखत बा दुनिया कम योगदान नहीं है भैया।
0: बोला भैया बहुत बड़ा पुण्य का काम है गांव घरे में का है भैया। अगर ये तरह का कोई होगा तो आदमी जवान है बोली छीटा कसी भी कर भैया ऐसे भी निजात मिली। तो सबसे बड़ा चीज भैया साथी हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ावले का जरूरत है काम बढ़ावा आगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो देखा नेत्रदान है जीवन का महादान। ये विषय पे बातचीत हुई बा डॉक्टर एस के गुप्ता भैया मिल गिर रास्ते में। और बतौलन कि भैया आज से जौन तिथि शुरू होत हो न पखवाड़ा, तो एक बारे में हम भी पूछ ली भैया कि ये कैसे कैसे अगर का महत्व हो भैया तो बतौले हन
0: भैया बैठ गया लगत है भैया। तो भैया का बतियोले हुआ हम तो यह कहते कि हमन का तो बात बत कही हुई।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन भैया पहले सुनल जा तू बतियोला का डॉक्टर भैया का कहत हुआ।
1: श्रोताओं वैसे तो हम लोग रक्तदान प्रतिदिन सुनते रहते हैं कि आज वहाँ अमुक स्थान पर हो रहा है और वहाँ जो है कि रक्तदान बैंक भी है, लेकिन आज हम ऐसे शरीर के अंग से आपको रूबरू कराना चाहेंगे जिससे कि बिल्कुल व्यक्ति जो है कि इस दुनिया को देख सकता है, उसे महसूस कर सकता है कि किस रंग का किस प्रकार से जो है कि कौन मोटा पतला ऊंचा नीचा आसमान कैसा है धरती कैसा है इसका महसूस कर सकता है। बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि नेत्र से ही यह संभव है, लेकिन जिस व्यक्ति के नेत्र नहीं है उनसे आप अगर पूछिएगा कि आप क्या महसूस कर सकते हैं तो केवल वो सुन सकते हैं समझ सकते हैं लेकिन रंग महसूस नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए आँख कितना महत्वपूर्ण अंग है। आज नेत्रदान के बारे में हम बातचीत करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुधी में है और यहाँ हमारी मुलाकात नेत्र चिकित्सक श्री एस के गुप्ता जी से हो रही है। आपसे हम जानेंगे कि नेत्र दान किस प्रकार किया जा सकता है, कौन व्यक्ति कर सकता है, इसका प्रक्रिया क्या हो सकती है, शेष बातचीत के दरमियान बातें आएंगी। तो डॉक्टर साहब आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
1: चूँकि ये नेत्र की बात आती है सर, निश्चित रूप से अब चूँकि हम लोग को तो प्रकृति ने क्या खूबसूरत बनाया है।
2: जी जी
1: एक

0: के शुरुआत से लेकर के अभी तक सभी प्रकार के रंगों का पहचान हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेत्र से दिव्यांग होते हैं जिनका जन्म से ही नहीं होता है, या तो फिर बाद में किसी कारणवश जो है कि उनके नेत्र की रोशनी चली जाती है, वे भी पुनः अपना इस संसार को देखना चाहता है। तो क्या ऐसे कुछ प्रक्रियाएं हैं जिससे कि नेत्रदान कर सकता है कोई व्यक्ति और उनको नेत्र फिर लग सकते हैं? जी
1: जी, एकदम है, पूरा पूरा प्रक्रिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेत्रदान का भी एक कार्यक्रम चलता है, एक पखवाड़ा चलता है,
0: जी जी जी
1: जो कि अप्रैल के महीने में ही चलता है।
0: जी
1: और सबसे बड़ी बात है कि नेत्रदान तो महादान,
0: जी बिल्कुल।
1: मुझे लगता है कि एक रक्तदान होता है तो दूसरा है नेत्रदान, और नेत्रदान तो महादान है। और इसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं
0: जी
1: कि जिस व्यक्ति को आँख से संबंधित कोई समस्या है, जैसे मान लीजिए अगर जन्म से ही वो नहीं देख पा रहा है,
0: जी
1: जन्म से ही वो नेत्र विकलांग है, या फिर कभी चोट वोट लग जाता है, बाद में एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो उसके कारण से भी आँख खराब हो जाती है,
0: जी
1: तो आँखों में खराबी आ जाने से व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। और ये दिखाई ना देना सबसे बड़ा आँखों का कारण होता है कॉर्निया,
0: जी
1: कि अगर कॉर्निया मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो आँखों का सबसे बीच वाला काला पार्ट होता है उसी को कॉर्निया बोलते हैं हम लोग,
0: जी जी
1: जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है,
0: जी
1: उसमें आर पार देखा जा सकता है। लेकिन कभी कभी चोट लगने से या कोई दुर्घटना हो जाने से, आँखों में चोट लग जाए, दुर्घटना होने से उसकी जो ट्रांसपेरेंटी पारदर्शिता है
0: जी
1: वो ख़त्म हो जाती है या ख़राब हो जाती है, जिसके कारण से किसी भी व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है या कम दिखाई देता है।
0: जी जी
1: तो नेत्रदान में सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे व्यक्ति जिनको कोई इलाज नहीं है, सिर्फ उनको आँख लगवाना ही जरूरी हो जाता है, या मैंने अपने ही गांव में ही सुना था कि नई आँख या आँख लगवाया जाता है,
0: जी जी जी
1: तो ये वही चीज़ है, नेत्रदान में वही चीज़ें आती हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेत्रदान बहुत बड़ा दान है
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: इसे हर व्यक्ति को करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, इसमें जैसे रक्तदान तो प्रत्येक व्यक्ति 4 महीने में उसके बाद या इस प्रकार से जीवित रहने पर सब करते रहते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: क्या नेत्रदान की भी प्रक्रिया यही
1: जी
0: है
1: जी नेत्रदान
0: या?
1: की प्रक्रिया है, लेकिन उससे अलग प्रक्रिया है
0: जी
1: और टोटली अलग प्रक्रिया है।
0: जी जी
1: नेत्रदान करने का प्रोसीजर क्या है मैं बता दूं,
0: जी
1: जैसे कोई भी व्यक्ति अगर नेत्रदान करना चाहता है तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर हैं। जैसे अगर उनको नेत्रदान करना है तो हमारे देश में या हमारे स्टेट में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, प्राइवेट भी हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट की बात करूंगा।
0: जी जी जी
1: जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में एक सीतापुर है, वहाँ पर भी नेत्रदान होता है और वहाँ इसका एक नेत्र बैंक होता है
0: जी
1: जहाँ पर आँखों को सुरक्षित रखा जाता है। और अलीगढ़ में एक डॉक्टर मोहनलाल मेमोरियल गांधी आई हॉस्पिटल करके है, वहाँ भी आई बैंक है,
0: जी
1: वहाँ पर भी जा करके आँखों को नेत्रदान भी कर सकते हैं और आँख को लगवा भी सकते हैं। तीसरा, हमारे वाराणसी BHU में भी नेत्र बैंक है, आई बैंक जिसे बोला जाता है, वहाँ पर भी ये सब प्रोसीजर होते हैं। और भी तमाम हैं लेकिन ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
0: जी
1: लेकिन अब मैं आता हूँ इस टॉपिक पे कि क्या कोई व्यक्ति अगर नेत्रदान करना चाहे तो उसको क्या करना
0: बिल्कुल
1: पड़ेगा।
0: बिल्कुल
1: तो उसे ये तो पहली बात तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। दूसरा चीज़ ये कि अगर वो नेत्रदान करना चाहता है तो उनको जो मैं अभी संस्थाएं का नाम लिया
0: जी
1: या जो मैंने अभी नेत्र हॉस्पिटल का नाम बताया, जैसे मैंने सीतापुर बताया, अलीगढ़ बताया, BHU बताया, तो
0: जी
1: वहाँ कोई भी व्यक्ति जा करके एक फॉर्म होता है जिसको वहाँ जाके भरना पड़ता है, उसमें आपको एक कमिटमेंट करना होता है, एक वहाँ अपना एक सहमति देनी पड़ती है कि वो फॉर्म में लिखा रहता है कि जैसे आपका नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी,
0: जी
1: प्लस उसमें ये लिखा रहता है कि क्या आप नेत्रदान करना चाहते हैं कि नहीं।
0: जी
1: आपने कहा कि हाँ हम नेत्रदान करना, तो आप प्रोसीजर करेंगे। फिर इसके बाद उसमें क्या होता है कि आपका सहमति के साथ उसमें आपका साइन, आपका आधार कार्ड भी लग सकता है,
0: जी
1: ये सब प्रक्रियाएं होती हैं, वहाँ फॉर्म भरा जाता है। और वो सब प्रक्रियाएं करने के बाद आपको शायद जहां तक मुझे अभी नॉलेज है कि एक नंबर वहां से उपलब्ध कराई जाती है
0: जी,
1: कि जिसके माध्यम से आप वहां पे जब आपको नेत्र दान करने का समय आ जाएगा
0: जी,
1: तो आपको एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट करने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके, पहली बात तो एक चीज मैं और बता दूं इसमें, ये तो बात की बात हो जाएगी कि नेत्रदान के लिए जब आप फॉर्म भर देते हैं
0: जी,
1: तो लोगों में थोड़ा एक डर भी रहता है, यार ये नेत्रदान जो होगा मेरी आंखें कब निकाली जाएंगी, कैसे होंगी। तो उस फॉर्म में भी लिखा रहता है
0: अच्छा
1: कि आपका नेत्रदान का मतलब ये नहीं कि आपके नेत्रदान का मतलब ये होता है जैसे आपकी जब डेथ हो जाएगी, आपकी मौत हो जाएगी या आप किसी कारणवश इस दुनिया से आप जाने वाले या चले गए, तो आपके मौत के बाद 6 घंटे लगभग 6 घंटे तक कोई भी व्यक्ति अगर डेथ कर जाता है
0: जी,
1: तो उसकी आंख जो होती है मरने के 6 घंटे तक जिंदा रहती है
0: जी, जी, जी।
1: तो अगर उस दौरान 6 घंटे के अंदर
0: जी,
1: अगर उनकी आंख निकाल ली जाए
0: जी,
1: और किसी को लगा दी जाए
0: जी,
1: तो वो आंख जो है काम करना शुरू कर देता है।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ इसमें, लोगों में एक भ्रम रहता है कि आंख निकाली जाती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरी आंख नहीं निकाली जाती है।
0: अच्छा अच्छा,
1: इसका तरीका यह है कि इसमें आंख का एक पार्ट जो कार्निया, जिसको मैंने अभी शुरू में बताया कि ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी होती है, बस उसी कार्निया को ही काट करके निकाल के एक लिक्विड होता है उसमें उसको रख दिया जाता है
0: जी जी,
1: आई बैंक में।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: उसी को जिसको जिसको जरूरत है उसका एक समय होता है एक्सपायरी का, समय के अनुसार उसको बुला के लगा दी जाती है। तो पहली बात ये भ्रम कोई भी व्यक्ति निकाल दे कि हाँ भाई पूरी आंख
0: नहीं निकाली
1: जाती है,
0: मतलब
1: बस कॉर्निया को निकाला जाता है
0: जी, जी,
1: जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे आंख का और जिसको आज तक दुनिया में कोई आर्टिफिशियल नहीं बना पाया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और जहाँ
1: आर्टिफिशियल आज तक न बना है, कई बार लोगों ने बनाया, बहुत सारे वैज्ञानिक बोले सफल नहीं हुआ। तो हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉर्निया, इसी कॉर्निया को ही आंखों में से निकाल के आई बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। इसी पार्ट को मरने के बाद, मरने के 6 घंटे के अंदर इसी पार्ट को निकाल के रखा जाता है, फिर जिसको जरूरतमंद को लगा दी जाती है।
0: क्या बात है।
1: ये तो हो गया आपका लगाने का और प्रोसीजर निर्धारण का।
0: जी जी जी, तो डॉक्टर साहब आपको रेडियो के माध्यम से बहुत लोग सुन रहे हैं
1: जी जी,
0: तो अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आमजन को?
1: जी आमजन को मैं नेत्र के बारे में यही, आंखों के बारे में यही कहूंगा कि आंखें बड़ी अनमोल हैं
0: जी,
1: आप दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन आंख नहीं खरीद सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आंखें आपको बाजार में भी नहीं मिलेगी, आंखों का आर्टिफिशियली नहीं कुछ है
0: जी,
1: कि
0: जी।
1: कोई बना है कहीं से कुछ लगवा ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको बड़ा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, अच्छे से अच्छे इसका देखभाल करें
0: जी,
1: और देखभाल करने के लिए मैं 2-3 चीजें बता दे रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आंखों के देखभाल के यही 2-3 चीजें कर दे, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उस व्यक्ति की आंख जल्दी खराब नहीं होगी। पहला काम उसको ये करना है, जैसे ही सुबह उठे सबसे पहले ताजा पानी से, साफ सुथरा पानी से आंख को बढ़िया से धुल दे।
0: बिल्कुल,
1: और धुलने के बाद जो है कुछ देर के लिए आँख कोई एक शुद्ध वातावरण में सुबह के समय, ज्यादा नहीं 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा घूम टहल ले, एक काम ये करना है। और दूसरा काम ये करना है कि जैसे आपको कहीं भी जाते हैं जहां हवा चलता है, धूल डस्ट उड़ता है, तो उसके लिए एक सेफ्टी ग्लास यूज करें। सेफ्टी ग्लास का मतलब जैसे आजकल ऑटोमेटिक ग्लास आते हैं, इस तरह के चाइना वाला ग्लास नहीं, जो मार्केट बिकते हैं सब ग्लास नहीं। और तीसरा की कोशिश करें कि आप हर 6 महीने में एक बार आंख चेक कराएं।
0: बिल्कुल,
1: इसका प्रोसीजर है कि 6 महीने में अगर आपने एक बार भी आंख चेक करा लिया तो आपकी आंख में क्या कमी क्या नहीं पता चल जाता है, और वो समय उसी समय ठीक भी हो जाता है, और आंखों के लिए कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसके लिए
0: तो श्रोताओं देखें, ये डॉक्टर एस के गुप्ता जी थे, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी से नेत्र चिकित्सक। इतना अच्छा जानकारी दिया आपने कि नेत्र दान महादान, और उसमें ये कोई सोचता है कि जो अपना नेत्र या चेहरा खराब हो जाता है वो भी नहीं, केवल कार्निया से मतलब है, और लगभग आपने बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास किया, आपने सुना। इतनी अच्छी जानकारी के लिए श्री एस के गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भोला भैया।
0: हाँ भैया।
2: भैया देखा, डॉक्टर एस के गुप्ता भैया जो आंखी का डॉक्टर है भैया,
0: हाँ, हाँ,
2: ना फरियाए फरियाए भैया बतियोला, और डॉक्टर भैया भी खूब फरियाए फरियाए बतौना। देखा नेत्रदान महाअभियान है, अभियान भी है दान भी है, और भैया आंख है तो जहान है। तो भैया के जानकारी सुनल गल, लेकिन भैया देखत हुआ न मौसम का क्या स्थिति चल
3: रहा है। हाँ भैया, मौसम के अनुसार खेती किसानी भी कर देखो हम लोग की जरूरी है। मौसम के अनुसार जो बाकी हर प्रकार के रोग व्याधि भी आवला पौधन में फसल में ओकर भी हम लोग जो बाकी देख रेख कर ले। लेकिन आज
2: देखा हमारे पास जानकारी आई गिल शिवमंगल सिंह भैया जो मौसम वैज्ञानिक भी अचू कहूँ
3: भैया
2: कुछ जानकारी दे तू हम चुप हो जाए गंभीरता से भैया सुनल जाए।
4: पंचमिया लोग देखे हैं हम लोग खेती बाड़ी से जुड़ल है देखे हैं आज हमारे संपर्क हो गल बा शिव मंगल सिंह साहब से जो उनकी तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भू भौतिकी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आप हम और आपसे ही हम लोग जानल जाये कि अगले 5 दिन तक जो आवे वाला मौसम बा वो खास तौर से कैसन रही। डॉक्टर साहब नमस्कार।
5: नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा आप लोगों ने देखा है कि पिछले 2-3 दिनों से कहीं कहीं उमस वाली गर्मी तेज धूप और उसके बीच में कुछ जगहों पर जो है अच्छी से बहुत अच्छी बारिश हुई है और हम बात कर ले आने वाले अगले 2-3-4 दिनों की तो मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों आसमान में बादल छाए रहेंगे
4: जी जी
5: हल्की से मध्यम वर्षा होने तथा हवा की गति जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम तक रहने की संभावना है। ठीक है
4: जी जी।
5: और इस दौरान अगर हम तापमान की बात कर लें किसान भाइयों तो न्यूनतम तापमान जो है वो 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहने का अनुमान है
4: जी।
5: और अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे मौसम में क्या होता है कि अधिक नमी और तापमान कम होने से क्या होता है कि फसलों में कीट एवं रोगों का प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं। ठीक है
4: जी, जी, जी।
5: ऐसे में अगर हम धान के खेत की बात कर लें क्योंकि अभी धान मुख्य फसल है
4: जी,
5: तो
4: जी।
5: धान में किसान भाइयों विशेष ध्यान दें कि पत्तियों का रंग देखकर ही यूरिया दें।
4: जी, जी, जी।
5: अगर गहरे रंग के पत्ते हैं तो अतिरिक्त यूरिया दे देते हैं अभी तो क्या होता है कि पूरा पौधा लगने का डर रहता है। एक कीट है ये जो
4: जी जी।
5: बहुत वो क्या होता है कि पत्तियों की नसों में से रसों को चूस लेता है और पत्तियां जो है कमजोर पड़ जाती हैं।
4: जी
5: ठीक है
4: जी।
5: और
4: जी।
5: एक विशेष ध्यान किसान भाई दें जो कि छोटी छोटी बातें होती हैं कि क्या होता है कि बारिश के बाद खेत की मेड़ों पर जो चूहे बिल बना लेते हैं उसको किसान भाई तुरंत बंद कर लें क्योंकि इसी समय उनकी सक्रियता बढ़ जाती है और वे जड़ों और बालियों को नुकसान पहुंचाते हैं।
4: जी जी।
5: क्योंकि बालियां बढ़ती हैं अभी और जड़ भी विस्तार करता है तो अगर वो पूरा अंदर से खोखला रहेगा तो कहीं ना कहीं वो किसान भाई उत्पादन को ही प्रभावित करेगा आपके। और इसी क्रम में हम सब्जियों की बात कर लें अगर बरसात रुकती है किसान भाइयों अभी तो बरसात होने का संभावना है लेकिन अगर जैसे कि बरसात रुकती है पानी खेत में कम रहता है तो सब्जियों में हल्की गुड़ाई मतलब इसे जो होता है ना कि मिट्टी की एक ऊपरी परत बन जाती है पपड़ी बन जाती है
4: जी जी जी जी
5: जिससे क्या होता है कि हवा जो है जड़ों तक नहीं पहुंच पाती है और ऑक्सीजन की कमी होने से पौधों की बढ़वार और जो उत्पादन होता है वो प्रभावित होता है। ये मालूम नहीं चलता है लेकिन ये होता है। पशुओं के लिए बात किया जाए किसान भाइयों गीला चारा खिलाने से उनकी पाचन शक्ति कमजोर होती है और खुर अगर साफ नहीं करेंगे तो खुर गलने की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है तो कहीं ना कहीं आपके जो उत्पादन है उसको प्रभाव पड़ सकता है।
4: बिल्कुल
5: इन सब चीजों का बातों का ध्यान रखें किसान भाई अगर खेती बाड़ी करते हैं तो निश्चित रूप से जो है उनका जो मौसम जनित नुकसान होने वाला है कहीं ना कहीं उसमें कमी जरूर आएगी।
4: बिल्कुल डॉक्टर साहब आज आपसे संपर्क भल और इतनी अच्छी जानकारी मिलल एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
5: बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।
2: मौसम का जानकारी सुनल गल गुनल गल और एक बहुत अच्छी बात कहना भैया बरसात रुके और मौसम खुले तो भैया सब्जियन के आसपास गुड़ाई जरूर कर दे ताकि ऑक्सीजन का मात्रा जो है मिट्टी के मिले।
3: और सबसे महत्वपूर्ण ये में जो मिट्टी के बात आपकी ना तो ये जो बाकी प्राकृतिक खेती के और बाकी किसान भाई लोगन के जो मुड़े के बातचीत कल जा रहा है निश्चित रूप से एक तो सस्ती किसानी हो भैया और उससे हवा की खेत की उर्वरा शक्ति बनी ये के हम लोग के ध्यान देने की जरूरत है। और इसने एक वार्ता भी हो भोला सिंह गोड़ जो आदिवासी किसान हम भैया इनकर कहना हो कि मृदा के खराब कर रहा है रासायनिक खाद।
2: भैया बड़ा अच्छी बात कहना
3: तो इनसे बात कही हुई
2: तो हम तो यह कह एकदम भैया ले ले हुआ पोटरी खोल के भैया हमके सुनवा हमन के।
3: किसान भाइयों बहनों, देखिए प्राकृतिक खेती की बात हम लोग करते हैं।

0: और लगभग आज ज़्यादा लोग इसी विषय पर चर्चा करने लगे हैं कि हम लोग कैसे बचत करें। लागत बहुत लग जाती है खेती करने में, लेकिन उत्पादन बहुत कम हो पा रहा है। उत्पादन हो भी रहा है तो उसमें जो है कि पौष्टिकता नहीं रह रहा है। तो आज जो है कि ऐसे ही एक प्राकृतिक खेतिहर श्री भोला सिंह से मुलाकात हो रही है। आप दुधी ब्लॉक के जाबर गांव के निवासी हैं और बिल्कुल परंपरागत खेती करने का आपका तौर तरीका है। अगर इसमें ये बात की जाए मोटे अनाज के, तो कोदो, मेड़ो, मिझरी, सामा, इस सब के साथ साथ जौन मकई की जो घरेलू बीज बोने के बात आती है, तो ये आज भी ये लोग सेवन कर रहे हैं और अच्छा खासा आमदनी कर पा रहे हैं। क्या इनका तौर तरीका है, इन्हीं से ही बातचीत होगी। तो भोला सिंह गुण जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो खेती करने के तौर तरीका है, तो ये हर बैल से ही जोतते हैं?
1: हाँ, हर बोलते हैं।
0: अच्छा, तो आज ये जोन बाकी मार ले प्लास्टिक में बंद बंद करके जोन बाकी बीज लाना ला लोग
1: हाँ,
0: जो है कि बाजार से,
1: बाजार से
0: तो आप वो बाजारे से बीज लाते हैं
1: नहीं, हम लोग अपने घर के डालते हैं।
0: घर के?
1: हाँ, लेकिन 2 साल देखे ना, बीज नहीं जमता है।
0: अच्छा, कौन बीज नहीं जमता है,
1: वो है मक्का।
0: मतलब बाजार के लाना?
1: हाँ,
0: अच्छा, तो वो वाला खाद आप नहीं डालते होंगे?
1: नहीं
0: कौन खाद, ये रासायनिक खाद नहीं डालते
1: नहीं
0: हैं,
1: डालते
0: यूरिया
1: हैं,
0: डीएपी वाला?
1: उन्हें डालते हैं।
0: अच्छा, हाँ, ये गोबर के खाद में खाली उत्पादन होला।
1: हाँ,
0: चलो हम लोग खेती बारी बार बात कर लीजिए हैं। तो ये जौन आप कहत हन कि हम घरे के बीज बोइला मकई,
1: हाँ, मकई हो, धान हो, धान तो मतलब बलाकर से सब कर रहे हैं।
0: हाँ
1: घरे का जो पहले से रहा है वो
0: हाँ
1: तो सब नठवा दिए बीज।
0: अच्छा, तो उसे कुछ नुकसान बा?
1: नुकसान तो नहीं है।
0: जैसे पहले कौन कौन बीज रहे आपके यहाँ, सेढ़ी मिलला?
1: सेड़ तो नठवा दिए, देसी खत्म कर दिए ना,
0: अच्छा, देसी खत्म हो गए,
1: खत्म हो गया देसी वाला।
0: तो
1: अब
0: देसी के कहाँ से लाना जाए, जुगाड़ कर लिया
1: कहाँ सा,
0: है?
1: ये तो दिक्कत हुआ।
0: तो देसी कौन कौन रहे, कुछ याद बा?
1: सेड़ी रहे, बाकर रहे, कुंवारी रहवा,
0: हाँ हाँ हाँ
1: हलगन चीज वाला,
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: पहले
0: हाँ
1: हो जाते रहे
0: कमे दिन में
1: कमे दिन में।
0: लेवारो लगा दे तब वो
1: हाँ,
0: बढ़िया।
1: तब वो बढ़िया।
0: हाँ,
1: हाँ, एक कुंवारी उधान वह होता रहे। हाँ,
0: कुंवारी?
1: वो तो खत्म हो गया। हाँ, तो सब बलाकी वाला भाग गए कि
0: हाँ,
1: बलांग सलाम पैदा ज्यादा होगा,
0: और वही के अनुसार खादो डाले
1: खाद
0: पड़ी।
1: डाल पर अनुसार से।
0: हाँ,
1: हाँ,
0: तो आप कहते हो कि खाद हम डाली नहीं वैसन बहरे वाला,
1: नहीं,
0: तो खाली गोबरे खाद पे।
1: खोबर घास।
0: अच्छा, तो मकई बढ़िया हो जाला?
1: हाँ,
0: आप कहते हो ब्लाक वाला नहीं जमल और तो यहाँ वाला जाम गई
1: जाम गल का थी तो
0: अपन घरे वाला,
1: हाँ,
0: वो बीज कैसे रखा लाना आप,
1: पर छिल कर रख दो, चुपचाप
0: कैसे
1: छिल कर कर रख दो, कुछ नहीं होगा।
0: छिल करके? तो
1: हाँ,
0: घुनने लगे हैं,
1: नहीं
0: तो घुनने लग जाला लोग कहला।
1: कहीं पे जैसे ये सब बाल है ना,
0: हाँ
1: उसको तोड़ कर
0: हाँ
1: जो जिधर घुआ निकलता है
0: हाँ
1: उसके 2 आंगुल छोड़ दो।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: हाँ
1: इधर वो सब छील दो।
0: इधर वाला छील दें।
1: हाँ, इधर और अलग कर दो। हाँ,
0: हाँ, और वो जो है कि पखनी सहित नहीं
1: नहीं पकने थे सही, तब वो सही रहेगा।
0: तब वो सही रहला।
1: तब
0: कितना
1: सही।
0: लोग तो जोनवा कि आंगन में खूटा गाड़ के
1: हाँ, रख देते
0: उसी
1: हैं।
0: टांग देला,
1: हाँ,
0: तो उससे का फायदा होला?
1: कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन छुसी तुम अपना लड़हा लो, जो जगह नहीं के तुम बाहरी रखलन।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: मतलब ये
1: लोअर गाँथ के
0: लोर गांठ के? हाँ
1: खुटम नहीं टांग देते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ
1: हाँ, यह जा देखा का करना, रानी तल तरफ,
0: हाँ हाँ
1: बरहुआ तरफ
0: हाँ हाँ हाँ
1: घर मनाने देखबा,
0: हाँ
1: ऐसे खुटा गाल दे, वो लोटा करे पानी बरसते ऐसे गिरते रहते।
0: ये गोबर के खाद कब डालना आप मकई में?
1: मकई में हाल जैसे बैसाखी पूजा ये करते हैं,
0: हाँ
1: पूजा हो जाएगा ना,
0: हाँ
1: उसके बाद पूरा खाद उठा के खेत में डाल देंगे,
0: अच्छा,
1: उसके बाद जुताई कर दो, सब
0: हाँ
1: मिक्सचर हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो हर पूरी तब ना
1: जितना पूरे उतना, 1 साल खाद डाल दो, 5 साल की छुट्टी, उसमें खाद को जरूरत नहीं
0: हर साल
1: पड़े।
0: नहीं डाले पड़े गोबर
1: जब
0: वाला?
1: है तो डाल दो, ऐसा बात है कि जाए तो कहाँ रखेंगे।
0: हाँ हाँ हाँ
1: है
0: लेकिन नहीं हो डालेंगे तो कोई बात नहीं,
1: कोई बात नहीं,
0: उतना 5 साल तक असर करेगी।
1: असर करेगा। हाँ
0: अरे वाह, ये तो बढ़िया ना बात बा।
1: हाँ
0: अब हमें तो कई चक्कर डाले पड़ा।
1: वो यूरिया डाला तो DAP बार, फिर उस पर दवाई डाला।
0: हाँ
1: है,
0: हाँ खर्चे पर खर्चा।
1: खर्चा पर खर्चा।
0: हाँ, और वो में जोन बाकी एक बार डाल दा,
1: बस उसका कुछ चिंता नहीं।
0: वाह वाह, तो आप उसने खेती कर लें।
1: हाँ
0: तो वो में जिसे अनाज अभी मान लो बो दिलाए आप,
1: हाँ
0: मकई

0: अच्छा
1: पूरा निकल जाए घास ना, उसका बाद फिर माटी जाते थला बांध पूरा
0: हाँ पूरा थला भर मूंगफली बढ़ जाए
1: बढ़ जाए बस। ओकरे बाद कोई जरूरत नहीं पड़ी। ओकरे बाद जब पके बादाम मूंगफली उसको कड़क निकालो।
0: तो ये जौन यानी कि आपके खेत में पेहटा भी होत हुई?
1: हाँ पेहटा वाला।
0: तो जौन खेत में गोबर खाद बा
1: हाँ
0: भाई यूरिया डीएपी डाली तब तो पेहटा जर जाई
1: हाँ,
0: लेकिन जौना में गोबर खाद पड़ी ओमे तो पेहटा खूब
1: खूब हाँ
0: खीरा भी हुई
1: खीरो भी हुआ।
0: अरे तब तो आपके बड़ा बढ़िया जुगाड़ बा। संगे संगे जौन बाकी बारीक भात बनाला कि रोटी भर खाली?
1: रोटी भात दोनों बनेगा।
0: बारी बनी
1: बारे हम लोग नहीं खाते हैं।
0: ओके डर के नहीं?
1: नहीं।
0: अच्छा
1: मकई जितना होगा ना खाए रोटी बनेगा।
0: अच्छा फिर भुजना?
1: अच्छा भुजना वो रोटी हम बस दुए चीज।
0: चल ये जन बाकी कोड़ला के बाद फिर का ध्यान देवे पड़ला? ओके
1: बादाम में
0: नहीं मकैया में?
1: मकैया को ध्यान उसके बाद पक जाएगा तोड़ लो। उसके बाद तोड़ के लेके बाद फिर जावा गेहूँ बुन दो।
0: सिकटा वगैरह नहीं खाए?
1: सिकटा कितना खाएंगे धा धूत करेंगे नहीं
0: तो कैसे टीना उना बांध के कैसे?
1: ऐसे सिकटा आई भी नहीं कर रहा
0: आप? नहीं आप
1: नहीं।
0: और सुअर?
1: सुअर कभी आते हैं लेकिन इधर गांव के बीच में नहीं घुसन।
0: अच्छा
1: उधर रह जाता है जंगल किनारे।
0: हाँ हाँ
1: पीपर डिग गा।
0: हाँ पीपर डिग
1: था। हाँ उधर
0: मैंने कुल मिला करके सुरक्षित बा
1: सुरक्षित बा
0: और बचत ही बचत बचत
1: आ कभी जब भी आ जाएंगे ना तो दूधी के जो डुमन बना उन कभी जब भी आ जाएंगे नहीं तो नहीं आते हैं।
0: अच्छा वो पालतू वाला?
1: पालतू वाला।
0: हाँ तो पालतू वाला तो थोड़ा धापो धीपो के लिए भाग जी
1: तब भाग तब नहीं है।
0: हाँ वो ज्यादा क्षति नहीं पहुँचा?
1: नहीं पहुँचा। हाँ
0: तो ये जो बाकी मकई मान ला पक गई
1: हाँ
0: तो के तुड़ाई करे
1: हाँ
0: तुड़ाई के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बाकी ओकर रख रखा गदरी तो शुरू हो जाए जल्दी है?
1: हाँ
0: तो ओके भुट्टा
1: भुट्टा खा
0: तो भुट्टा जो बाकी देसी और मकई के और हाइब्रिड वाला तो खा के देखे हैं?
1: खा के देख हाँ अंतर पड़ेगा।
0: का अंतर पड़ता है?
1: सीठ लगेगा हाइब्रिड वाला।
0: अच्छा
1: देसी वाला मीठा लगेगा।
0: हाँ
1: रोटियों खाएंगे तब देसी वाला मीठा लगेगा वो सीठ लगेगा।
0: अच्छा
1: सब्जी ज्यादा उसमें खो जाएगा हाइब्रिड में
0: हाइब्रिड वाला एमें तो मिठास लगेगा।
1: मिठास लगेगा नमक रोटी भी खा सकते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ ये बात है वास्तव में देसी तो देसी है।
1: हाँ
0: और जन बाकी
1: उसका दाना भी बड़ा बड़ा होता है।
0: हाँ कौन के
1: हाइब्रिड वाला?
0: हाइब्रिड वाला। तो दूधा मकई अगर भुट्टा बना के खाए तो बहुत मीठा
1: एकदम मस्त लगे।
0: इस बार तो आपके यहाँ पहुँचे की जरूरत बा?
1: पहुँचेंगे ना।
0: हाँ
1: पहुँचेगा गादा हो गया तो नंबर होते दे देना हम।
0: हाँ
1: गादा हो गया
0: बिल्कुल बिल्कुल कितना बढ़िया बात। अच्छा ये तुड़ाई के समय फिर का ध्यान दे कोई
1: का ध्यान
0: दे? मान लो पानी बरसत रहला कभी और पानी खुला बा तो एक खातिर जो बाकी ये पानी जैसे बरस रहा है तो पानी बरसते समय में तुरंत ठीक होला कि खुल जाए तो?
1: खुल जाए तो
0: खुल जाए तो
1: खुल जाए
0: गजा जाए तो नुकसान
1: नुकसान है भाप आ जाएगा ना
0: भाप आ जाएगा।
1: हाँ
0: मैंने ये सबसे महत्वपूर्ण बात।
1: हाँ
0: छिलाई कब करें होकर?
1: बस घमाने होगा बस छिल छिल घाम रख दो
0: सुखवाना पड़ेगा
1: सुखवाना पड़ेगा।
0: तो लड़ुए सब रहला कि लोर भी बनाते हैं?
1: लोर भी ज्यादा है तो लोर बना देते हैं इसी छिल देते हैं।
0: तो देखिए किसान भाई लोग ये प्राकृतिक खेती पे आश्रित हैं भोला सिंह गोड़ जी। अब आप दुधी ब्लॉक के जावर गांव से हैं आप बहुत ही नज़दीक से देखे हैं कि जैविक खाद और रासायनिक खाद में कितना अंतर है। प्रति वर्ष जो है कि अगर जैविक खाद डालिए या 5 साल में डालिए तभी भी बराबर काम करेगा लेकिन रासायनिक खाद एक बार में 1 साल में कई बार डालना पड़ेगा उससे परत दर परत पत्थर की तरह कड़ा जमीन होते जाता है। तो हम लोग को भी प्राकृतिक खेती की ओर जुड़ना चाहिए। इतना अच्छा जानकारी दे रहे थे भोला सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया देखा ही रहा हम लोग के जौन बाकी मकई सहित जौन बाकी मृदा के रख रखाव करे के बातचीत।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: और निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती अगर करी है तो वही में जौन बाकी हम लोग के जमीन मिट्टी सुरक्षित रही। भैया
2: बिल्कुल सही बात कहला और कहल जला भैया एक आंख खेते पर है दूसर बाजारी में।
0: बिल्कुल भैया तो
2: और भैया देसी एकदम तो कहाँ का मंडी भाव आयल है भैया?
0: दूसरी मंडी के हो भैया कुंतल में संतोष कुशवाहा भैया भेजले हूँ। आलू आज वहाँ के मंडी में रहल जनबा की 101,000 रूपया कुंतल और टमाटर 3,000 रूपया कुंतल नेनुआ 1200 से 1600 रूपया कुंतल लौकी 1800 से 2000 रूपया कुंतल कोहड़ा 1200 से 1500 वही धनिया रहा 15,000।

0: रुपया कुंतल, और प्याज 4,000 से 4,200, करेला रहल भैया 300 से 3,000 से 3,500 रुपया कुंतल, हरी मिर्च 3,500 से 4,000 रुपया कुंतल, और अरुई रहल 1,000 से 1,200, बंडा 2,000 से 2,500, बैगन 800 से 1,200 रुपया कुंतल, और खेक्सा भी पल रहल भैया 4,000 से 4,500, तरोई 3,000 से 3,500, मूली 1,500 से 2,000, और भिंडी 1,000 से 1,200। वहीं आज नींबू भी पड़ रहे 150 से 200 रुपया सैकड़ा भैया।
1: ए भोला भैया देखा ये दुधी के बाजार भाव रहल है भैया, देखा बचला फरियाए के, लेकिन देखा अब हमारा मन अकबकाए लगल
0: भैया। मन फेर कराई का
1: एकदम बात तो पते का कहला भैया,
0: मौसम के अनुसार कजरी गावत है मुनिका, सुन लो जाए।
1: सुन लिया।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: शाम के 6:50 हुए और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद। अब शेख भैया
0: हालत नवीन।
1: देखो, इस जो है बरखा बूंदी में या का होता है कि अपने खेते में यह पानी भर जाता है, तो बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं कि जिनका पानी कम चाहे हो तो बुड़न चली जाती है और नुकसान हो जाती।
0: रत्ना बहिनी, अगर पंच भैया अपनी खेती पाती के लिए साथ में कृषि विविधीकरण का अपनावत हैं और खेती पाती के साथ में होए वाले काम जैसे डेयरी है, बागवानी है, या इनके साथ में कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, इतन के सब काम करते हैं, तो वही होए वाली नुकसान तेने बच सकते हैं और 2 पैसा जो नगदी के रूप में अपने हाथ में आवत है, तो इसे किसान पंच भैया अपन आमदनी 2 गुनी कह सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात कहा थो। और दुई गिनी हमेशा बनी रहे, एक खातिन जो है हम पंचन का जो रोज की खबरें हैं वही जरूर मालूम रहे चाहिए, तो सुन लीन जाए आज की खबरें।
2: देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। वर्ष 2025-26 में देश में दलहन का उत्पादन बढ़कर लगभग 274 लाख टन पहुंच गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में करीब 17 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू उत्पादन बढ़ने का असर दलहन के आयात पर भी पड़ा है। वर्ष 2024-25 में करीब 73 लाख टन दलहन का आयात हुआ था, जो 2025-26 में घटकर करीब 60 लाख टन रह गया है, यानी आयात में लगभग 13 लाख टन की कमी आई है। वहीं दलहन की खेती का रकबा भी बढ़ा है और उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। सरकार का लक्ष्य देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत बेहतर और जलवायु अनुकूल बीजों को बढ़ावा देने, खेती का रकबा बढ़ाने और किसानों को तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दलहनी फसलों की सुनिश्चित खरीद उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। यानी बढ़ता उत्पादन और घटता आयात दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदम का संकेत है।
0: तुमचो ही तो रही आज की खबरें और बारी है आज की बातें सुने के। तो आज है खरीफ फसलन में पोषक तत्व कमी के लक्षण, उपचार और इनके बारे में बता रहे हैं जसवीर सिंह भैया, तो चलो सुना जाए।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से धान, मक्का, मोटे अनाज, दलहनी फसलों में अरहर, उड़द और मूंग, और तिलहनी फसलों में मूंगफली, तिल और कहीं कहीं सोयाबीन की फसल खेत में खड़ी है। जहां फसल खेत में है तो कई बार जो छिपी हुई भूख है पोषक तत्वों की, उसकी कमी के लक्षण दिखते हैं, तो इनका उपचार कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं जसबीर सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। सिंह साहब, ये बताएं कि जो खरीफ फसलें हैं उनमें

0: प्रदेश में बोई जाती हैं। तो धान्य फसलों की अगर हम बात करें तो धान, मक्का, ज्वार और बाजरा। दलहनी फसलों की बात करें तो अरहर, उड़द, मूंग और लोबिया। तिलहनी फसलों में तिल है, मूंगफली है और सोयाबीन है। इसके अलावा कुछ किसान भाई जो हैं वो सब्जियों की खेती करते हैं। अधिकतर फसलों में जो है किसी न किसी पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। अगर उस कमी को हम पूरा ना करें तो उसकी वजह से हमारी फसल की उपज और किसान का आर्थिक लाभ जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है।
1: अक्सर किसान भाई बहन कुछ खास उर्वरक हैं जैसे यूरिया है, ज्यादा से ज्यादा डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं, जो और पोषक तत्व हैं उनकी कमी बनी रहती है।
0: किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी विशेष रूप से हमारी फसलों में पाई जाती है। तो पहला मुख्य तत्व हमारा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी को किसान भाई बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पुरानी और जो नीचे की पत्तियां होती हैं उसमें पीलापन आने लगता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है। और अगर भारी कमी अगर हो गई तो पूरा पौधा ही पीला हो जाता है। दूसरा तत्व तो हमारा फास्फोरस आता है। फास्फोरस में क्या होता है कि पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है, पौधों में वृद्धि और विकास रुक जाता है, जिससे हम पहचान जाते हैं कि फास्फोरस की कमी इसमें आ गई है।
1: और पोटास की
0: पोटाश की कमी में क्या होता है किसान भाइयों कि किनारे से जो नीचे के पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये पत्ते सूख रहे हैं किनारे से या जो है झुलस रहे हैं। इसी तरह से जिंक है। जिंक में क्या होता है किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि धान की फसल में खैरा रोग लगता है, मक्के की फसल में जो है सफेद धारी रोग लगता है, तथा दलहन और तिलहन की फसलों में आपने देखा होगा कि जो ऊपर की पत्तियां होती हैं उनमें पीलापन आता है और लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। जैसे मूंगफली और सोयाबीन की फसल में विशेष रूप से आपने देखा होगा कि लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं। फिर आता हमारा एक तत्व गंधक, इसको सल्फर बोलते हैं। सल्फर की कमी से क्या होता है कि ऊपर की पत्तियां पीली हो जाती हैं और नीचे की पत्तियां हरी बनी रहती हैं। फिर आता है बोरोन। बोरोन में क्या होता है कि पत्तियां कटोरी नुमा साइज में यानी कि सिकुड़ने लगती हैं,
1: जी
0: और उनको अगर हम छूके देखते हैं तो उनकी सतह जो है सामान्यतया कठोर दिखाई देती है। फल जो हैं जैसे खीरा आदि हैं सब्जियां, उनमें टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, और खासकर ये टेढ़े मेढ़े होने वाली समस्या जो सब्जियों और फलों में ज्यादातर पाई जाती है।
1: तो खरीफ फसलों में जहां नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिख रहे हैं सिंह साहब, तो इसका उपचार इस समय कैसे हो?
0: किसान भाइयों, अगर इन लक्षणों को जो हमने अभी बताए उनको हमने समझ लिया, तो नाइट्रोजन अगर हमें पूरी करनी है तो नाइट्रोजन के लिए हमें यूरिया दानेदार जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर हमने फास्फोरस की कमी को पहचान लिया है तो डीएपी का प्रयोग करना चाहिए। पोटैश अगर हमने कमी को पकड़ लिया है तो पोटैश जो है बुवाई के समय तो हम 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करते हैं,
1: जी
0: और सल्फर का अगर प्रयोग करना है तो 8 से 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करते हैं। और लेकिन जो तिलहन वाली फसलें हैं उनमें हमें ये सल्फर की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, 12 से 15 किलोग्राम करनी चाहिए,
1: 12 से 15 किलोग्राम प्रति
0: प्रति
1: एकड़
0: एकड़ के हिसाब से प्रयोग
1: बेसल
0: करना
1: रोज।
0: चाहिए। जी
1: और जैसे आपने नाइट्रोजन की कमी के लक्षण बताएं और इनके उपचार के लिए दानेदार यूरिया या नैनो यूरिया प्लस का अगर खड़ी फसल में छिड़काव करना है तो
0: अब किसान भाइयों, हम इस बात पे आते हैं कि हमारी फसल खड़ी हुई है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम बेसल डोज में ही डालते हैं, उन्हें हम नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना है तो यूरिया दानेदार का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे नैनो उर्वरक भी बाजार में इस समय उपलब्ध हैं। नैनो उर्वरकों का प्रयोग करके भी हम जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। एक बोतल होती है 500 मिलीलीटर की, उस 500 मिलीलीटर की बोतल को 125 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ में हमें इसका स्प्रे कर देना चाहिए 35 से 40 दिन की अवधि में।
1: और जहां फास्फोरस की कमी के लक्षण दिख रहे हैं खड़ी फसल में
0: फास्फोरस की कमी के लिए शुरुआत में हमको बुवाई के समय फास्फोरस का प्रयोग करना चाहिए, और अगर खड़ी फसल में हमको लक्षण दिखाई देते हैं तो नैनो डीएपी जो है 500 मिलीलीटर उसको 125 लीटर पानी में उसी प्रकार से जैसे मैंने नैनो यूरिया का प्रयोग विधि बताई है उसी प्रकार से प्रयोग करके हम फास्फोरस की कमी को दूर कर सकते
1: किस
0: हैं।
1: अवस्था पर सिंह साहब?
0: नैनो डीएपी है उसको, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों को एक साथ मिला के 35 से 40 दिन पे हम पहला छिड़काव कर सकते हैं।
1: और दोबारा
0: दोबारा अगर करना है तो हम 20 दिन के बाद दूसरा छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए जो फूल आने से पहले की अवस्था पे हमको नैनो उर्वरक।

0: उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। आपने कहा कि पोटास का बेसल डोज में प्रयोग हो, लेकिन कई बार किसान भाई बहन अपनी खरीफ फसलों में पोटास का प्रयोग नहीं कर पाए हैं और खड़ी फसल में उसके लक्षण दिख रहे हैं, तो खड़ी फसल में इस समय क्या करें?
1: किसान भाइयों, खड़ी फसल में अगर पोटास के और सल्फर के इन दो तत्वों की कमी के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं, तो सल्फेट ऑफ पोटास एक आता है 0050, उस पर लिखा होता है, 1 किलोग्राम पैकिंग का ये होता है
0: जी।
1: इसका प्रयोग हमको जो है 1 किलोग्राम के पैकेट को 1 एकड़ में 100 लीटर पानी में मिला के करना चाहिए, यानी कि 1% का घोल बना के हमको इसका खड़ी फसल में छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे हमारी सल्फर और पोटास दोनों ही तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि इसमें 50% जो है पोटास होता है और 17.5% जो है वो सल्फर पाया जाता है। और इसके अलावा जो है अभी हमारे दो तत्व और जो हमने जिनकी पहचान के लक्षण बताए थे, जस्ता में 5 से 8 किलोग्राम मोनोजिंक आती है, उसका हमको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। बोरोन की अगर हम बात करें तो इसका 5 किलोग्राम बोरोन 14.5% वाला, उसका 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, बाजार में जिंक और बोरोन दोनों ही नैनो उर्वरकों के रूप में भी आ गए हैं
0: जी,
1: तो इनको हम जो है दोनों ही तत्वों को पानी में मिला के 1 एकड़ में अगर छिड़काव कर देंगे तो हमारे जिंक और बोरोन दोनों से संबंधित जो लक्षण है उनका उपचार भलीभांति किया जा सकता है।
0: सिंह साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और उपचार के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके इफ्को कार्यालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 99 56 39 12 43, 99 56 3 91 243, 99 56 39 12 43।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और उपचार के बारे में? सिंह साहब,
1: किसान भाइयों हमारा यही कहना है कि हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो उर्वरकों की सही मात्रा का सही समय पर प्रयोग करना चाहिए, उनके लक्षणों को खेत में जाकर देखना चाहिए और जो उनके लिए समुचित उर्वरक हैं सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करके हम बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
0: जसवीर सिंह साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रत्ना भाई ने देखो जानकारी की बातें हुई और पंच इंतजार कर रहे थे कि लोकगीत जरूर सुनावा जाए उनका, तो आज लोकगीत है खेमटा चांद कबले लुकाई, और स्वर है हीरालाल सैनी व साथी भयंकर, तो सुना जाए यू लोकगीत खेमटा।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: रत्नबहिनी, तमाम पंच भैया अपन खेती पाती करते हैं, खेते में काम करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, जिसे उनका यह आशा रहता है कि हमार जो खेती होए, जौन हमार फसल होए बहुत बढ़िया होए, इससे उनका मुनाफा मिल सके। मतलब कुछ पंच भैया ऐसे होते हैं जो नई नई तकनीकें अपनाए के हैं, नई नई चीजन का इस्तेमाल करके अपनी खेती का बहुत नीचे स्तर पर ले जाते हैं, जीते उनकी आमदनी दुगनी हुई जाते। यह तन की एक किसान अपने बीच में है, आज हैं भंवर पाल सिंह भैया, जो उन बता रहे हैं मिर्चा और करेला उत्पादन के बारे में। यहाँ इनसे सब पंच भैया सीख लें कि तनातनी अपनी खेती में नए नए तकनीकन का इस्तेमाल करके एक अच्छे किसान के रूप में यहाँ उभरे हैं। तो सुना जाए आज के किसान।
7: आज हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, कानपुर नगर जनपद के सरसौल ब्लॉक के महुआ गांव के भंवरपाल सिंह भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आप सब्जी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, इस समय कौन कौन सी सब्जियां आपके खेत में हैं?
8: इस समय ना सब हमारे खेत में 5 एकड़ पे मिर्च लगी हुई है और 10 एकड़ पे करेला, 1 एकड़ पे हमने तुरई लगा रखी है।
7: अच्छा
8: जी,
7: तो मिर्च की कोई खास वैरायटी जो बाजार में डिमांड अच्छी हो?
8: मिर्च में हम ना सब कुछ एरिया में हाइब्रिड वैरायटी करते हैं और ज्यादा एरिया में हम देसी प्रजातियां करते हैं मिर्च की।
7: कौन कौन?
8: एक काशी अनमोल है और एक G4 है।
7: अच्छा, क्या खासियत महसूस करते हैं इसकी?
8: देखिए, जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं उनमें प्रोडक्शन तो अच्छा होता है, मगर उसमें वो टेस्ट नहीं होता है जो हमारी देसी वैरायटियों में है।
7: और बाजार में उनकी डिमांड?
8: और देसी जो प्रजातियां हैं, देसी मिर्च है, उसकी बाजार में मांग हाइब्रिड मिर्च से ज्यादा अच्छी होती है और उसके रेट भी ज्यादा अच्छे होते हैं।
7: तो कब आपने नर्सरी डाली और कब रोपाई की और फसल किस अवस्था में है?
8: हमने सब नर्सरी अपनी डाली थी 20 मई को और हमारी जो ट्रांसप्लांटिंग हुई है वो हुई है 1 जुलाई से मिर्च की।
7: अच्छा,
8: और करेले की जो ट्रांसप्लांटिंग की है वो 10 जुलाई से की है।
7: तो सीधे बुआई करेले की?
8: हाँ, करेले की ना सब थाले बना करके 6x6 पे हमने सीधे उसमें एक हर थाले में 3 या 4 बीज की रुपाई कर दी है।
7: अच्छा, और मिर्च करेला के अलावा एक सब्जी भी आपने?
8: एक तुरई करते हैं ना सब।
7: अच्छा,
8: वो भी मचान बीज से।
7: तो मचान पर करेला और तुरई?
8: ये मचान पे होता
7: बरसात
8: है,
7: बरसात की वजह से।
8: और उसमें ना सर उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है और फ्रूटिंग फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है।
7: ये बताएं कि मिर्च की फसल कैसी चल रही है?
8: मिर्च की हमारी फसल लगभग 1 महीने की हो गई है, उसमें अभी निराई गुड़ाई चल रही है और फ्लावरिंग 10 दिन बाद आना शुरू हो जाएगा।
7: मिर्च का अंतरण कितना रखते हैं, लाइन से लाइन की दूरी, पौध से पौध की दूरी?
8: मिर्च का जो देसी प्रजातियां हैं उनका हम रखते हैं लाइन से लाइन 2 फीट और हाइब्रिड का रखते हैं 2 से 2.5 फीट और पेड़ से पेड़ की दूरी रखते हैं 1 फीट और हाइब्रिड की 1 से 1.5 फीट के बीच में रखते हैं।
7: अच्छा, फसल की भूख मिटाने के लिए क्या क्या आपने दिया बुआई के पहले, रोपाई के पहले और खड़ी फसल में?
8: हम लोग सब मिर्च है, करेला है, तुरई है या जो भी अन्य फसलें करते हैं, हम 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की सड़ी खाद डालते हैं,
7: यानी 100 कुंतल
8: 100 कुंतल पर एकड़। और इसके बाद जो है कुछ है एनपीके, अब एनपीके की हमने मात्रा थोड़ी कम कर दी है, जो अब स्मार्ट फर्टिलाइजर है, नैनो है, इनका प्रयोग अब ज्यादा करते हैं। फिर भी हमने करीब 1 एकड़ में 25 kg DAP, 20 kg पोटास और 25 kg यूरिया बेसल डोज में और 5 kg सल्फर
7: जी दिया है।
8: दिया है मिर्च और करेले दोनों में ही।
7: और तुरई में?
8: तुरई में भी सब यही है, रेशियो
7: रेशियो एक ही है।
8: रेशियो एक ही है।
7: तो फिर आगे भी खड़ी फसल में कुछ?
8: खड़ी फसल में 30 दिन बाद एक मिसल डोज और देते हैं 20 kg पर एकड़ का यूरिया का, और उसके बाद जब हर तुलाई होती है उसके बाद देते हैं। और इसके बाद हम इस समय जो सल्योबल फर्टिलाइजर है NPK 52-34-19-19 NaNoDAP नैनो यूरिया इनका ज्यादा उपयोग करते हैं, ब्लास्ट कास्टिंग यूरिया का कम करते हैं,
7: यानी पानी छिड़काव करते हैं,
8: पानी छिड़काव ज्यादा करते हैं।
7: स्मार्ट उर्वरकों में नैनो यूरिया प्लस और NaNoDAP।
8: जी,
7: करेला और तुरई की बुआई कब आपने की और कौन सी वेराइटी आपने चुना?
8: देखिए, करेला में हमने ईस्ट वेस्ट की प्राची है, और तुरई में एक हमारी BNR की तुरई आती है, उसी को हमने डाला है।
7: इनकी खासियत क्या है, जिन प्रजातियों को आपने?
8: करेले में नक्शा होता है कि जैसे हमारे यहाँ जो डिमांड है वो चिकने करेले की ज्यादा है, कहीं पे जैसे हमारा प्रयागराज का एरिया है, कुछ एरिया जहाँ पे कांटे वाला ज्यादा चलता है, हमारे यहाँ चिकने करेले की डिमांड ज्यादा है, तो हमने चिकने डाला है, और इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, और इसकी हमारा जो कानपुर लखनऊ सराउंडिंग मार्केट है या दिल्ली, वहाँ इसकी डिमांड ज्यादा है।
7: इसकी बुआई आपने कब की, करेला और तुरई की?
8: करेला की बुआई हम जुलाई के पहले हफ्ते में, करेला और तुरई की दोनों की बुआई एक साथ ही की है, ये हमने 7 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में की है।
7: इस समय क्या स्थिति है और क्या कर रहे हैं करेला और तुरई?
8: इस समय हमारे अपने करेला और तुरई का हमने मचान बना दिया है, और हमारा जो है करेला और तुरई मचान में फैल रही है, तो और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है।
7: जो भी सब्जियां इस समय हैं, चाहे मिर्च है, करेला है, तुरई है, आगे कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करेंगे खड़ी फसल में?
8: इसमें नक्शा, चूंकि बरसात की फसल है तो इसमें इंसेक्ट बहुत आते हैं, फंगस बहुत आते हैं,
7: कीड़ा और बीमारी दोनों?
8: हाँ, कीड़े और बीमारी दोनों आते हैं, तो इसके लिए हम प्रिकॉशन से में ही फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह या नीम ऑयल वगैरह डालते रहते हैं।
7: कितने दिन के अंतराल?
8: ये आप हर 10 दिन, जैसी भी स्टेज हो 10 दिन, या हम देखते हैं कि हमारे पेड़ की स्थिति क्या है
7: जी,
8: अगर कोई उसमें डिसीज नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है, तो वो 10 से 20 दिन भी हो सकता है
7: जी, जैसी निगरानी हमेशा हाँ, करते रहते
8: हैं। इसकी एक निगरानी हम प्रतिदिन करते रहते हैं।
7: चूंकि पिछले कई सालों से आप लगातार सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं, तो ये जो मिर्च है, करेला है और तुरई है, इसमें क्या आंकड़ा लगाए हैं कि कब से कब तक आपको फलत मिलेगी और बाजार भाव अच्छा मिलेगा?
8: मिर्च रेट तो हमको सितंबर से शुरू होती है और जनवरी तक रेट लगभग ठीक मिलते रहते हैं। जहाँ तक हमारा तुरई और करेला का है, करेला के रेट हमको नवंबर तक, जब तक ठंडी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है तब तक करेले के रेट अच्छे रहते हैं, जब ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो

0: करेले का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और मार्केट में उसका कंजम्पशन भी कम हो जाता है। इसलिए नवंबर तक हम करेला रखते हैं और नवंबर तक ही तुरई रहती है, मिर्च हमारी जनवरी तक जाती है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बताते हैं।
0: 94-157-23-975, 94-157-23-975, 94-157-23-975।
1: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में?
0: हर किसान से यही कहते हैं कि खेती को आप एक बोझ के रूप में न लीजिए, एक इंटरेस्ट के रूप में लीजिए। और जब आप इंटरेस्ट से खेती करेंगे, हाईटेक टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, तो खेती में आपको सब कुछ मिलेगा।
1: भंवरपाल सिंह भैया, आज आप कार्यक्रम में आए और जो इस समय सब्जियों में आपके पास मिर्च है, मचान पर करेला और तुरई है और अच्छी स्थिति में है, अच्छी संभावना आपको दिख रही है उत्पादन और बाजार की, और कुल मिला जुला करके आप सब्जी उत्पादन करके खुशहाल हैं आज कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अभिषेक भैया देखो पंच भाई बहनों का मौसम की जानकारी बता दो ताकि मौसम के हिसाब से काम कर सके।
4: घटना बहनी तो हमका यू मौसम का हाल जोन मिला है भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से मिला है के हिसाब से अगले 7 दिन के जो वर्षा पूर्वानुमान है वो हम बतावा जा रहे हैं। 25 तारीख यानी कि आज संभाग में अनेक स्थान पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है और 26 तारीख से लगाए के 27 तारीख तक संभाग में कुछ स्थान पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है। 27 ने लगाए के यहाँ 31 तारीख तक का संभाग में कहूँ कहूँ वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े की संभावना है और यू बहनी दोनों जगह ये तनक हाल रहने वाला है।
3: और साथ ही जो चेतावनी की बात कही जाए तो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह 27 से लगाए के 31 तारीख तक कोई चेतावनी नहीं है। 25 और 26 दो दिन पर संभावना है बरखा होगी।
4: बिल्कुल बहनी तो ये तो मौसम का हाल रहा।
3: देखो पंच भाई अपन बात कुछ कहा चाहते हैं या अपन कोई सुझाव देवा चाहते हैं तो उनके खातिर जो है हमारे पंचन के पता जरूर लिख ले। तो पता है कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन है 226001।
4: पंचो यू तो रहा पता ही के साथ साथ में अगर ईमेल करा चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस जरूर नोट कर लें। हमारे ईमेल एड्रेस है farmandhomealklko@gmail.com।
3: पंच भाई बहनी देखो यू रहा है हम पंचन के पता और वही के साथ साथ अब चलक हो रही बिरिया तो पंच भाई से लीन जाए आज्ञा।
4: जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन बूथ स्तरीय अधिकारियों से किया संवाद। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुँचने का किया आह्वान। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को जारी किए सख्त निर्देश। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में कई जगहों पर बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में कल भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।
6: गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के संबंध में 6 लेन विस्तारित अप टू 8 लेन आज मंत्रिपरिषद ने इसको सहमति प्रदान की है। ये 10,761 करोड़ रुपए की लागत से ये बन के तैयार होगा। इसमें खासतौर से जनपद बिजनौर और उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक जाने के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय मार्ग NH 34 मेरठ बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने से बिजनौर हरिद्वार से सीधे जुड़ जाएगा एवं गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से इसका सुलभ संपर्क प्रदेश की राजधानी से भी होगा।
5: बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत 8 मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए जाने की संस्तुति को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में 7,968 करोड़ रुपए से बनने वाले झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में मिशन रोजगार के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए चयनित 3,446 प्राविधिक सहायक और मंडी परिषद में 126 मंडी सचिवों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में सरकार ने प्रदेश के 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के नौजवानों की दुनिया भर में मांग है।
7: आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इसराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहाँ भेजे, हम भी अपने यहाँ नौकरी। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। आज दुनिया मांग रही है यूपी के नौजवानों को, 17 के पहले तो ये स्थिति नहीं थी।
5: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने का सामर्थ्य रखता है।
7: यूपी में चीनी की कमी नहीं, यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी, हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख क्विंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से, यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, में भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यू रखता है।
5: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। लखनऊ दौरे के दूसरे और अंतिम दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। श्री कुमार ने कहा कि प्रत्येक बूथ स्तरीय अधिकारी अपनी निष्ठा और पारदर्शिता के लिए मतदाताओं के बीच जाने जाते हैं। उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारियों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने की अपील की।
8: बूथ लेवल ऑफिसर्स भारत के लोकतंत्र की आधारशिला है। हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है, बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं, इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और इतना अच्छा वो काम करते हैं और सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए लखनऊ आए थे।
5: प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को योजना के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि योजना के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा अवैध वसूली, फर्जी बिलिंग और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा है। यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
9: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: निपुण भारत मिशन के अंतर्गत केन्या, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के लगभग 70 सदस्यीय दल ने गाजियाबाद के 11 विद्यालयों का दौरा किया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान FLN सुधारों को समझना और अनुभव साझा करना है। ईद मिलादुन्नबी का पर्व कल पूरी अकीदत के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में जुलूस और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस मौके पर लखनऊ में निकलने वाले जुलूस ए मोहम्मदी को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए आज मोहम्मदी मिशन और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में ADCP वेस्ट धनंजय कुमार कुशवाहा ने कहा कि जुलूस ए मोहम्मदी परंपरागत तरीके और निर्धारित मार्ग से ही निकाला जाएगा। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अयोध्या में सरयू नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए SDM रुदौली विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है

0: और राहत कार्य जारी है।
1: पानी निरंतर घट रहा है, पानी घटने से जो भी संक्रामक बीमारियां होती हैं इत्यादि समस्याएं होती हैं उसके दृष्टिगत जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पशु चिकित्सालय की टीम है, उसको हम लोगों ने एक्टिवेट किया है और वो लगातार गांव में जाकर देखेंगे और लोगों को संक्रामक बीमारियों से होने वाले जो समस्याएं हैं उससे निजात कराने के लिए छिड़काव इत्यादि करेंगे।
0: वहीं मौसम विभाग ने कल प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन बूथ स्तरीय अधिकारियों से किया संवाद। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने का किया आह्वान। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को जारी किए सख्त निर्देश। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में कई जगहों पर बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में कल भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल, डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का पहला गीत हम लेके आए हैं फिल्म काबिल से, जिसे लिखा है नासिर फराज ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने, आवाज़ जुबिन नौटियाल की है।

वजह तुम हो। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत अमाल मलिक और तुलसी कुमार की आवाजों में। शब्द रचना मनोज मुंतशिर की है और तर्ज बनाई है मिथुन ने।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म बेशर्म से, जिसे लिखा है निकहत खान ने, संगीत दिया है जतिन पंडित ने, आवाजें हैं श्रेया घोषाल और सोनू निगम की।

वजही फारूखी और पलक मुच्छल को अभी आपने सुना फिल्म जंजीर में। गीत मनोज यादव का था और संगीत चिरंतन।

भटका। इस गीत के साथ ही जबरस कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

मिताली सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। सुगम संगीत कार्यक्रम आप आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम लेके आए हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में, ये गाना फिल्म मैंने प्यार किया से, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

कभी खुशी कभी गम। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार थे समीर और संगीतकार जतिन ललित। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: सिंह और मिताली सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा, दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: सीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
0: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
6: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी उद्योग उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दो दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
7: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
8: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में दो बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के बिधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि यह प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के

0: पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। UPI का 1 दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest real-time payment system. Prime Minister Narendra Modi hails the platform's remarkable reach and scale, terming it a matter of pride for every Indian. Defence Minister Rajnath Singh says missile technology is developed by DRDO to be used by Indian companies to boost domestic production. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representative talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal pitches the country as a global data center hub, highlights $200 billion investment commitments from global hyperscalers. And in men's cricket, host Sri Lanka trailed by 238 runs against India in first innings as rain forces early stumps on day 3 of Colombo Test. The Unified Payments Interface, UPI, has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना फिल्म आदमी में। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म मर्यादा का ये गीत मुकेश की आवाज़ में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

इंदेवर के लिखे इस गीत को राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। फिल्म थी जुर्म। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म खाकी से उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत समीर का और संगीत राम संपत का।

प्रतिज्ञाबद्ध, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत अनवर और साधना सरगम की आवाज़ों में। गीतकार हैं हसन कमाल और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

यारा दिलदारा। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था जतिन ललित ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म परिंदा का गीत, जिसको लिखा है खुर्शीद हल्लौरी ने, संगीत तैयार किया है आर डी बर्मन ने, आवाज़ें हैं आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की।

अलका याग्निक को भी आप सुन रहे थे फिल्म क्रिमिनल में। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार M.M. क्रीम। इसी के साथ आपके लिए कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम प्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: रात के 10 बजे हैं और अब कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: श्रोताओ नमस्कार, खेल दर्पण के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ देवराज। श्रोताओ, खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। ये हमारे सामाजिक ताने बाने को मजबूत रखते हैं और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इन खेलों का बड़ा योगदान होता है। यूं तो भारत में खेलों के कई प्रकार सदियों से प्रचलित रहे हैं और आज जिन आधुनिक खेलों को हम देखते हैं वे हमारे पारंपरिक खेलों का ही बदला हुआ स्वरूप है। कैसे हमारे पारंपरिक खेल परिवर्तित होकर नए कलेवर में बदल गए, बता रहे हैं आलोक सिंह।
2: प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा की परंपरा थी, जिसमें बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे अपने गुरु के साथ जंगलों में आश्रम में रहते थे। वहां इन बालकों को वेदों आदि के अध्ययन के साथ ही विभिन्न शारीरिक क्रियाएं भी कराई जाती थीं। इनमें प्रमुख घुड़सवारी, तलवारबाजी, शारीरिक क्रियाएं भी कराई जाती थीं। पहलवानी, भाला फेंक, योगासन आदि थे। इन खेलों का उद्देश्य बालकों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के साथ ही युद्ध के लिए तैयार करना था। यही पारंपरिक खेल आज वर्तमान युग में आकर्षक एवं मनमोहक कलेवर में है। पहले का घुड़सवारी आज हॉर्स राइडिंग, धनुर्विद्या, तीरंदाजी, पहलवानी, कुश्ती, योगासन, जिम्नास्टिक तथा भाला फेंक, एथलेटिक्स आदि पारंपरिक खेल नए अवतरित रूप में है हमारे बीच में। पहले यहाँ अखाड़ों में पहलवानों का जमघट शक्ति प्रदर्शन के लिए लगाया जाता था, वहीं आज कुश्ती की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सबसे अधिक तो जिम्नास्टिक ने अचंभित किया है। कैसे कैसे ये पारंपरिक योग एक खेल के रूप में ढल गए। पहले जहां योग आसनों से शरीर को स्फूर्ति एवं लचीला बनाया जाता था, वहीं आज का जिम्नास्टिक लचीलेपन तथा ग्लैमर का मिश्रण हो गया है। तीरंदाजी जहां पहले शिकार करने एवं युद्ध में दुश्मनों को परास्त करने के काम आती थी, वहीं आज यह डार्ट पर निशाना लगाने के लक्ष्य किया जाता है। आज का पोलो भी पारंपरिक राजघरानों का मनपसंद खेल था। तब इसकी स्टिक एवं गेंद में काफी अंतर था। डिस्कस थ्रो एवं हाई जंप भी पारंपरिक खेलों का नया अवतार है। भारत में सदैव ही खेल प्रेमी रहा है। यहाँ खेलों का जुनून ऐसा है कि उचित साधन न होने पर भी लोग अपने पास से उपलब्ध साधनों से ही खेल का मजा ले लेते हैं। कुछ एक पारंपरिक खेल उचित ध्यान न मिलने से बहुत ही निम्न दशा में है। ऐसे खेल जो गाँव की गलियों से निकलकर शहरों तक पहुंचे हैं, इनमें कबड्डी मुख्य है। पश्चिम का क्रिकेट भारत की गिल्ली डंडे से काफी मिलता है। समय के परिवर्तन के साथ ही साथ खेलों के स्वरूप बदलते गए। भले ही आज इनका उद्देश्य भिन्न हो, परंतु इस प्रकार से हमारे पारंपरिक खेल संरक्षित तो हैं, परंतु आवश्यकता है आज भी इसके उचित संरक्षण की। भारतीय पारंपरिक खेल का एक अति उज्ज्वल समय था, तब इसी कारणवश भारत का वर्तमान खेल परिदृश्य इतना सुदृढ़ बन पाया, पर यह प्राचीन खेल की नई पीढ़ी का संज्ञान में तो है।
1: श्रोताओं, जब कोई भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने प्रदर्शन से तिरंगे का मान बढ़ाता है तो प्रत्येक भारतवासी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि खिलाड़ी न केवल अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए पदक हासिल करता है और अपने देश का गौरव बढ़ाता है। ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स के रूप में, जिसमें भारत ने कुल 39 पदक जीतकर विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया। भारत की उपलब्धियों के विषय में बता रहे हैं हेमेंद्र कृष्ण शर्मा।
3: राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम दुनिया का एक प्रमुख बहु खेल आयोजन है, जिसमें मुख्य रूप से वे देश भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे थे। इन खेलों की सबसे पहली अवधारणा 1891 में एस्टली कूपर ने सद्भावना और भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। इसका पहला आधिकारिक आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ, जिसकी नींव खेल पत्रकार मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन ने रखी थी। पहले संस्करण में 11 देशों के 400 एथलीटों ने 6 खेलों में भाग लिया था। समय के साथ इन खेलों के नाम 4 बार बदलाव किए गए। साल 1930 से 1950 तक इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रखा गया। 1954 से 1966 तक इस खेल को ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स नाम रखा गया, लेकिन 1978 से इसे कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल नाम दिया गया, जो वर्तमान में भी इसी नाम से चल रहा है। यह दुनिया का पहला ऐसा खेल आयोजन है जहां पुरुष और महिलाओं के लिए समान संख्या में पदक दिए जाते हैं। ओलंपिक मशाल की तर्ज पर इन खेलों में 1958 से बंकिंगम पैलेस से क्वीन वेटम रिले की शुरुआत की गई थी। यह खेल प्रतियोगिता दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन बन चुका है, जिसमें ओलंपिक और एशियाई खेलों की तरह हर 4 साल में दुनिया भर के एथलीट भाग लेते हैं। आज कॉमनवेल्थ गेम्स केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खेल नवाचार और लैंगिक समानता का वैश्विक प्रतीक बन चुका है। इन खेलों का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिता आयोजित करना नहीं, बल्कि सदस्य देशों के बीच मित्रता, सहयोग, समानता, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा खेल भावना को बढ़ावा देना भी है। इन खेलों में एथलेटिक्स, तैराकी, मुक्केबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, निशानेबाजी और अन्य खेल शामिल होते हैं। खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे किसी राष्ट्र के आत्मविश्वास, अनुशासन, परिश्रम और सामूहिक संकल्प का प्रतीक भी होते हैं। जब कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराता है और राष्ट्रगान की धुन बजती है, तो वे क्षण केवल खिलाड़ी का नहीं बल्कि पूरे देश के गौरव का क्षण बन जाता है। ऐसे ही गौरवपूर्ण क्षण को बार बार भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में प्राप्त किया है। भारत को पहली बड़ी सफलता 1934 के खेलों में मिली, जब भारतीय पहलवान रशीद अनवर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतकर पहला पदक दिलाया। यह भारतीय खेल इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण था। भारत को अपने पहले स्वर्ण पदक के लिए 1958 में वेल्स के कार्डिक में आयोजित खेलों के महान धावक 440 गज दौड़ में मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुश्ती, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, हॉकी और टेबल टेनिस जैसे खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय पहलवानों ने हर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाया। निशानेबाजी में भी भारत ने विश्व स्तर की पहचान बनाई और अनेक स्वर्ण पदक अपने नाम किए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि 2010 में रही। पहली बार भारत की राजधानी नई दिल्ली को इन खेलों की मेजबानी मिली। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 101 पदक जीतकर नया इतिहास बनाया। इसमें 38 स्वर्ण पदक, 27 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल थे। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। यह आज भी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। 2010 के बाद से भारत में खेल संस्कृति को नई गति मिली। भारत में खेलो इंडिया के कारण भारतीय खिलाड़ियों में नई ऊर्जा मिली। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने चुनौतियों के बावजूद शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। कुश्ती, निशानेबाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी जैसे भारत के पारंपरिक पदक दिलाने वाले खेलों को हटाए जाने के कारण यह आयोजन भारत के लिए काफी सीमित था। इसके बावजूद भारतीय एथलीटों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद भारत का ये चौथा स्थान रहा। सीमित खेलों के बावजूद 2026 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के खेल कौशल, विविधता और उभरती नई प्रतिभाओं के दृष्टिकोण से बेहद सफल रहे। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में प्रतीकात्मक राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और बैटन औपचारिक रूप से भारत को सौंप दी गई। इसे भारत की ओर से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक की अध्यक्ष पीटी उषा ने प्राप्त किया। अब यह झंडा मशाल गुजरात पहुंच चुके हैं, जिससे शताब्दी संस्करण अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2030 के आयोजन में भारत को अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला, विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और अधिक मजबूत होगी। विभिन्न खेलों के अधिकारी, खिलाड़ी, पत्रकार और पर्यटक भारत आएंगे। इससे भारत की संस्कृति, परंपरा, पर्यटन और अतिथि देवो भव का भाव व्यापक प्रचार प्रसार होगा। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन से होटल उद्योग, खेलों से जुड़े निर्माण कार्य, परिवहन, संचार, सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। स्थानीय उद्योग व छोटे व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
1: श्रोताओ, प्रत्येक चार वर्ष की अवधि में एक बार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में ओलंपिक खेलों का विशेष स्थान है, जिसमें दुनिया भर के खेल महारथी भाग लेते हैं और अपने जौहर दिखाते हैं। ओलंपिक खेलों में जीता हुआ एक पदक खेल की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, और इन खेलों का आयोजन अपने देश में होना अर्थात ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना किसी भी देश की प्रतिष्ठा और गौरव को बढ़ाने का अवसर देता है। क्या भारत वर्ष 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अपना दावा पूरा करने में समर्थ होगा? क्या संभावनाएं हैं? क्योंकि प्रत्येक भारतवासी के लिए अपने देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना गर्व और सम्मान की बात है। भारत में इस मिशन ओलंपिक 2036 की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं शरद श्रीवास्तव।
4: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इन खेलों के आयोजन के लिए किसी देश के दावे को स्वीकृति तभी प्रदान की जाती है जब समिति उस राष्ट्र की आर्थिक क्षमता, वहां के सुदृढ़ खेल ढांचे और इतने बड़े आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कर पाने की उसकी योग्यता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो जाए। ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अवसर एक राष्ट्र की विश्वव्यापी प्रतिष्ठा को कई गुना बढ़ा देता है। वर्ष 2036 के ओलंपिक के मेजबानी के लिए भी भारत के अलावा इंडोनेशिया और टर्की भी दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों प्रतिद्वंदी दावेदारों के मुकाबले भारत का दावा कहीं अधिक मजबूत है। आर्थिक संसाधनों के लिहाज से देखें तो भारत विश्व में आज पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और वर्ष 2030 तक इसके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मेजबानी का फैसला करते समय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा एक और पहलू को दृष्टिगत रखा जाता है कि दावेदार राष्ट्र की सामान्य जनता ओलंपिक आयोजन को लेकर कितनी उत्साहित है। इस कसौटी पर भी हमारा देश पूरे अंक हासिल करता है, क्योंकि लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या वाले हमारे देश में हर नागरिक ओलंपिक आयोजन को लेकर बेहद उत्सुक, सजग और उत्साहित है। हर्ष का विषय है कि हमारे अहमदाबाद शहर को वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है, और यह विशाल आयोजन एक प्रकार से ओलंपिक 2036 की मेजबानी का पूर्वाभ्यास माना जा सकता है। इन दिनों अहमदाबाद और गांधीनगर क्षेत्र में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी हैं। सरकार का प्रयास है कि आयोजन की सभी व्यवस्थाएं, चाहे वह नए खेल परिसरों का निर्माण हो या फिर आवागमन और रिहायश सुविधाओं का विस्तार, ये सारे कार्य समय रहते पूरे कर लिए जाएं, ताकि राष्ट्रमंडल खेलों को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। गौर करने की बात यह भी है कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की सफल मेजबानी करके भारत पूरे विश्व को यह संदेश देने में भी कामयाब होगा कि वह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी और वर्ष 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन भी भारत में हो चुका है। यह दोनों आयोजन राजधानी नई दिल्ली में हुए थे, लेकिन अब गुजरात का अहमदाबाद शहर देश में खेल संस्कृति के नए केंद्र के रूप में दुनिया के सामने आने जा रहा है। जैसा पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार अहमदाबाद को देश की खेल राजधानी के रूप में विकसित करने को प्रयासरत है। राष्ट्रमंडल खेलों से पूर्व वर्ष 2029 में अहमदाबाद में ही यूथ ओलंपिक का आयोजन भी प्रस्तावित है, जिसमें विश्व भर से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के एथलीट भाग लेंगे। यूथ ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के दृष्टिगत इन दिनों अहमदाबाद और उसके निकटवर्ती इलाकों में युद्ध स्तर पर निर्माण और विस्तार कार्य जारी हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का निर्माण और विकास, जो कि आने वाले वर्षों में गुजरात प्रांत के खेल ढांचे की आधारभूत संरचना बनने वाला है। इस विशाल परिसर में विभिन्न खेलों के मैदान, टेनिस कोर्ट, प्रशिक्षण केंद्र और खेल गांव समाहित होगा। ये सारी सुविधाएं राष्ट्रमंडल खेलों के संपन्न हो जाने के बाद राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं और खिलाड़ियों के लिए काफी मददगार साबित होंगी और इनमें विस्तार तथा नवीनीकरण करके इन्हें ओलंपिक 2036 के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ओलंपिक खेलों की मेजबानी काफी दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करने वाली होती है। ऐसे आयोजन न सिर्फ देश में खेलों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक होते हैं बल्कि युवा खेल प्रतिभाओं के लिए भी यह प्रोत्साहन और प्रेरणा का एक बहुत बड़ा जरिया बनते हैं। साथ ही ऐसे आयोजनों के माध्यम से मेजबान शहर या देश में नए स्टेडियमों, खेल मैदानों तथा अन्य सुविधाओं का एक ऐसा विश्व स्तरीय ढांचा उपलब्ध हो जाता है जो कि खिलाड़ियों की आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए मददगार साबित होता है। ऐसे विश्व स्तरीय आयोजनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ भी कम नहीं है। रोजगार, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी जैसे कई क्षेत्रों में इन आयोजनों का विशेष लाभ मिलता है। वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक अनुमान के अनुसार अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में लगभग 20,000 अतिरिक्त होटल रूम्स की जरूरत पड़ेगी। इसका अर्थ है कि 2030 तक इस क्षेत्र में होटल सुविधाओं का विस्तार होना अनिवार्य है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव रोजगार सृजन के रूप में भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन से उस देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखर जाती है और भविष्य में उसके लिए इस प्रकार के अन्य आयोजनों की मेजबानी हासिल करने का रास्ता भी खुल जाता है। खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर हमारी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने गंभीर हैं, यह किसी से भी छिपा नहीं है। इस गंभीरता का ही परिणाम है कि हमारे देश का खेल बजट वर्ष 2014 तक मात्र 800 करोड़ रुपए का था जो कि आज 3,800 करोड़ रुपए का हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में खेलो इंडिया जैसे अभियान शुरू किए गए हैं जिनका सकारात्मक असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर स्पष्ट रूप से दिखता है। विश्व स्तर की स्पर्धाओं के अपने देश में आयोजन का प्रभाव खिलाड़ियों की सफलता और प्रदर्शन पर भी पड़ता है क्योंकि अपनी धरती पर अपने दर्शकों की मौजूदगी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने को प्रेरित करती है और वे मैदान में जाकर बढ़ चढ़ कर अपने जौहर दिखाते हैं। 1978 में बैंकॉक एशियाड में भारत ने कुल 28 पदक जीते थे लेकिन इसके चार वर्ष बाद वर्ष 1982 में जब यह स्पर्धा नई दिल्ली में हुई तो भारतीय एथलीटों ने इसके दोगुने से भी ज्यादा कुल 57 पदकों पर कब्जा जमाया जिनमें से 13 स्वर्ण पदक थे। इसी तरह राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो वर्ष 2006 में मेलबर्न में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल ने 50 पदक जीते थे लेकिन चार वर्ष बाद 2010 में जब यह स्पर्धा भारत में हुई तो हमारे एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदकों का शतक जमा दिया और कुल 101 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। यदि भारत को 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अवसर हासिल होता है तो इन खेलों के सफल आयोजन के जरिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में तो निखार आएगा ही, साथ ही हमारी खेल प्रतिभाओं के लिए भी सर्वोच्च स्तर पर अपने जौहर दिखाने का यह एक सुनहरा अवसर होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि विश्व के इस सबसे बड़े खेल मंच पर पदकों का अंबार लगाकर हमारे खिलाड़ी देश की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।
1: और श्रोताओं, अब खेल की सुर्खियों के साथ हैं विजय यादव।
5: 16 जुलाई 2026 को भारतीय टेबल टेनिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में पुरुष, महिला और मिश्रित युगल वर्ग में भारत की तीन जोड़ियां विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंच गईं। ये तीन जोड़ियां थीं पुरुष युगल में मानव ठक्कर और मानु शाह, महिला युगल में दिया चितले और यशस्विनी घोरपड़े तथा मिश्रित युगल में मानुष शाह और दिया चितले। एकल रैंकिंग में मानव ठक्कर 38वें स्थान पर भारत के शीर्ष रैंक वाले पुरुष खिलाड़ी हैं जबकि मानु शाह उनसे दो पायदान पीछे 40वें स्थान पर और मनिका बत्रा नंबर 51 पर भारत की शीर्ष रैंक वाली महिला एकल खिलाड़ी बनी हुई हैं। पूर्व राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन को 2026 एशियाई खेलों के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में भी शामिल किया गया था। रैंकिंग में यह बढ़ोतरी एशियाई खेल 2026 से ठीक दो महीने पहले हुई है जो 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आईची नागाया में होने वाले हैं। यह उपलब्धि इसलिए भी अहम है क्योंकि टेबल टेनिस के पावर हाउस चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और चीनी ताइपे के खिलाड़ियों की चुनौती तोड़कर भारतीय खिलाड़ियों ने यह सफलता हासिल की है। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी के महिला वर्ग में शानदार प्रदर्शन करके 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। अंडर 19 महिला वर्ग में भारत ने 2 स्वर्ण और 6 रजत पदक जीते। चंद्रिका भोरेस पुजारी 51 किलोग्राम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान की नाजोगत मार्डोनोवा को 5-0 से हराकर, जबकि प्राची ने इंडोनेशिया की दरा अर्टिका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। अंडर 19 में भारत के अन्य फाइनलिस्ट ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंडर 23 महिला वर्ग में भी भारत ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। निशा ने 54 किलोग्राम भार में जापान की कोइन कोकुफू को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। जापान में हुए जापान ओपन मुकाबलों में टोक्यो में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने रविवार को जापान ओपन बैडमिंटन में इतिहास रच दिया। उन्होंने आक्रामक खेल के दम पर मेजबान खिलाड़ी अकाने यामागुची को हराकर पहली बार इस सुपर 750 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। इसके साथ ही वह यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गईं। 31 वर्षीय सिंधु ने लगातार आक्रमण के साथ साथ बेहतरीन प्लेसमेंट और अहम पलों में संयम रखते हुए 3 बार की विश्व चैंपियन यामागुची को 21-17 से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का समापन स्पेन की ऐतिहासिक जीत के साथ हुआ। न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 16 साल बाद दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मैच का इकलौता गोल फॉरेन टोरेस ने 106वें मिनट में दागा। इस बार स्पेन ने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं जीती बल्कि व्यक्तिगत अवार्ड्स पर भी अपना दबदबा कायम रखा। टीम के कप्तान और मिडफील्ड के मास्टर रोड्री को पूरे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और उन्हें गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। वहीं फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे भले ही अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने 10 गोल दागकर गोल्डन बूट अपने नाम किया। इसके साथ ही वह लगातार दूसरी बार विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। स्पेन की गोलकीपर उनाई सिमोन को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। उन्होंने पूरे विश्व कप में 7 क्लीन शीट रखी और कई महत्वपूर्ण मौकों पर टीम को गोल खाने से बचाया। उन्हें गोल्डन ग्लव से सम्मानित किया गया। फीफा विश्व कप के समाप्त होने के तुरंत बाद खेल प्रेमियों के लिए 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 23 जुलाई 2 अगस्त तक हुआ। इस बार इसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिताओं के लिए आधिकारिक शुभंकर फिन्नी द यूनिकॉर्न बनाया गया। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में सिर्फ 10 खेलों को ही शामिल किया गया था, जबकि पिछली बार इसमें कुल 19 खेल थे। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, निशानेबाजी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती जैसे खेल इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं थे। बर्मिंगम 2022 में भारत ने इन्हीं खेलों में 30 मेडल जीते थे। बर्मिंगम 2022 में 210 एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि ग्लासगो में कुल 125 खिलाड़ी भारत की ओर से गए थे। ऐसे में इस बार का प्रदर्शन शानदार माना जा रहा है। भारत के लिए 7 स्वर्ण समेत सबसे ज्यादा 10 पदक मुक्केबाजी में आए, जबकि एथलेटिक्स ने भी हमें कुल 10 पदक जिताए। भारोत्तोलन में 8, जूडो में 4 और पैरा खेलों में कुल 7 पदक मिले। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइकिलिंग, लॉन बॉल्स और तैराकी में हमारे हाथ खाली रहे, जबकि नेटबॉल और बास्केटबॉल में हमारे देश से कोई भी खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं गया था। बास्केटबॉल के महिला व्हीलचेयर इवेंट में जरूर हमारी टीम थी, लेकिन ये टीम एक भी मुकाबला जीते बिना ही पहले चरण से बाहर हो गई। 32 सदस्यीय एथलेटिक्स दल में सर्वेश कुमार ऊंची कूद, गुलवीर सिंह 10,000 मीटर, श्री शंकर मुरली लंबी कूद, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, प्रवीण चित्रवेल ट्रिपल जंप ने चांदी जीती, जबकि गुलवीर सिंह 5,000 मीटर, सिल्वा प्रभु ट्रिपल जंप, यशवीर सिंह भाला फेंक, तेजस्विनी शंकर डिकातलान और सीमा कालीरमण चक्का फेंक ने कांस्य पदक जीते, जबकि 14 मुक्केबाजों में से साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिया घंगस, अरंधुति चौधरी, सचिन सिवाच, अंकुश पंधाल ने सोना जीता, जबकि नरेंद्र बरवाल, जादूमणि सिंह, लवलीना बोरगोहाई ने चांदी जीती। 14 सदस्यों वाले जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 12 सदस्यों वाले भारोत्तोलन दल में मीराबाई चानू और ऋषिकांत सिंह ने स्वर्ण, जबकि राजू मुत्तू पांडी, ज्ञानेश्वरी यादव, अजय बाबू, हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह ने रजत पदक और विद्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीता। इनके अलावा पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धनगढ़ ने शॉटपुट F57 में स्वर्ण, जबकि मोहम्मद बासिल 100 मीटर T47 में रजत पदक के विजेता रहे। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार और महिला शॉटपुट F57 में शिल्पा शाइला ने कांस्य पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया 166 पदक लेकर पहले स्थान पर रहा, इंग्लैंड कुल 108 पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहा, कनाडा 61 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। चौथे स्थान की रेस में भारत ने बाजी मारी। भारत ने 39 पदक हासिल किए, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा, जबकि स्कॉटलैंड ने कुल 13 पदक और नाइजीरिया ने 10 पदक जीते। भारत का माइपे ओपन में 18 साल से चल रहा खिताबी सूखा रविवार को 17 साल की तन्वी ने खत्म कर दिया। पंजाब की इस युवा शटलर ने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब महज 36 मिनट में जीत लिया। तन्वी ने ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त शटलर थुए लिन्ह न्यूगेन को सीधे गेमों में 2-0 से एक तरफा मात दे दी। पिछले साल US ओपन सुपर 300 के फाइनल में चूक गई तन्वी के सामने विश्व नंबर 21 किसी भी पल ठहरती हुई नजर नहीं आई। इस जीत के साथ ही तन्वी BWF सुपर 300 टूर्नामेंट जीतने वाली महज चौथी भारतीय महिला बन गईं। केवल 17 साल 222 दिन की तन्वी ताइपे ओपन खिताब जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। वहीं तन्वी ने कोरिया के ली योंग डे का रिकॉर्ड भी तोड़ा, जो 2006 में मेंस डबल्स के फाइनल में खेलते समय 17 साल 287 दिन के थे। इसके अलावा तन्वी एशियाई टीम चैंपियनशिप का इकलौता खिताब जीतने वाली भारतीय टीम में भी रह चुकी हैं। श्रीलंका के गाल में चल रहे विश्व चैंपियनशिप WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए प्रयास कर रही भारतीय टीम ने श्रीलंका दौरे पर 5 दिन अभ्यास किया और 3 दिन अभ्यास मैच खेला, जिसका फल उसे गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 165 रन की जीत के रूप में मिला। 372 रनों के असंभव लक्ष्य को हासिल करने उतरी श्रीलंकाई टीम के लिए कप्तान धनंजय डिसिल्वा 59 और पिछले मैच के शतकवीर सोनल धनुषा 84 ने 5वें विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी करके भारतीय आक्रमण को रोकने की कोशिश की। पहले कप्तान और उसके बाद डिकवेला के आउट होते ही मानव सुथार ने यहां श्रीलंकाई किले को ऐसे ध्वस्त किया जैसे 26 दिसंबर 2004 में सुनामी ने गाल फोर्ट को ध्वस्त किया था। इसी के साथ भारत ने अपने 600वें टेस्ट मैच में शानदार जीत हासिल की। श्रीलंका के विरुद्ध भारत को मिली शानदार जीत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में बूस्टर डोज का काम किया है। श्रीलंका पर जीत के बाद भारत की जीत का प्रतिशत बढ़कर 53.33 हो गया है। हालांकि अंक तालिका में भारतीय टीम की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह 5वें स्थान पर भी है। इस जीत से पहले भारत का जीत प्रतिशत 48.15 था। इस जीत ने भारत की WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जरूर मजबूती मिली है। विश्व कप हॉकी में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह और स्ट्राइकर अभिषेक के 2-2 गोल की बदौलत भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के विरुद्ध अपना एक दशक लंबा अजय अभियान जारी रखते हुए FIH विश्व कप के पूल डी के हाई वोल्टेज मुकाबले में 5-3 से जीत दर्ज की और दूसरे दौर में प्रवेश किया। इस हार के साथ ही पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में अभियान ही समाप्त हो गया है।
1: श्रोताओं, खेल दर्पण के आज के संक को यहीं विराम। आलेख वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का था। प्रस्तुतकर्ता थे OP सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

0: इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म मंजिल मंजिल से, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने, आवाजें हैं आशा भोसले और शैलेंद्र की।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अनुराधा पौडवाल और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कलाकार में। गीत को लिखा था इंदिवर ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अब सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म है रॉकी।

अभी आपने सुना फिल्म कुर्बानी का ये गीत कंचन और आनंद कुमार की आवाज़ों में। गीत को लिखा था इंदीवर ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म जाबाज का ये गीत किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया है आर डी बर्मन ने।

0: इस गीत के साथ ही आपके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़े हुए रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की

0: प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी ये सभा। कल सुबह 5:50 पर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।